मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत

1948 की वैशाख मास की 24वीं तिथि तदनुसार 14 मई 2026 इस समय प्रातः के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा

0: करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी पूछते जिन्हें दुनिया सारी, ऐसी है लीला मेरे घनश्याम की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर्थी चंद्रू आत्मा, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार।
1: उम्र और थकान का विचार केवल उन्हीं पुरुषों पर छा जाता है जिनमें कार्य करने की लगन और उत्साह का अभाव हो, नहीं तो सभी आघातों को झेलने की क्षमता उसमें स्वयं ही आ जाती है और कार्य की लगन उसमें जीवन को गति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है। जन समूह के मध्य रहने वाला व्यक्ति ही उनकी पीड़ाओं को समझता और पहचानता है और फिर उसका मन उसको उन पीड़ाओं से मुक्ति प्रदान करने को झकझोर देता है। आवश्यकता है सत्य वस्तु एवं निष्ठा की। जीवन में कार्य को पूर्ण करने का सौभाग्य आदर्शों को कार्य रूप में परिणित करने पर ही प्राप्त होता है, नहीं तो हृदय संतोषहीन हो जाएगा और उसमें अंतर्वेदना के अतिरिक्त कुछ भी ना होगा। सुदूरवर्ती पर्वत सुगम्य और उस पर चढ़ना सरल प्रतीत होता है। शिखर मानो आह्वान करता दिखाई देता है, लेकिन जो जो हम उसके निकट पहुंचते हैं कठिनाई दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे ऊंचे चढ़ते जाते हैं चढ़ाई अधिक अधिक मालूम होने लगती है और शिखर बादलों में छिपता दिखाई देने लगता है। फिर भी चढ़ाई

प्रयत्न का एक अनोखा मूल्य रहता है और उसमें एक विचित्र आनंद और संतोष स्वतः ही मिलता है। शायद जीवन का मूल्य पुरुषार्थ में है, फल में नहीं। कौन सा रास्ता सही है, इसकी अपेक्षा ये जानना आसान है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है और फिर उससे बचकर रहना ही श्रेयस्कर सिद्ध होता है। मनुष्य का अतीत विश्लेषण करने के पश्चात उसे प्रगति में बाधक बुराइयों का ज्ञान कराता है। उसे लौटाना भले ही संभव न हो, परंतु भूलों का सुधार व संभव को आगे बढ़ाते रहना ही पर्याप्त होगा। यहाँ हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि हम सार्वजनिक हित के कार्यों में किसी प्रकार के भी फेरबदल न करें। शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग पतन की ओर ले जाता है, साथ ही जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया हो वो अपमानित और पतित हो जाता है, जबकि वो अधिक दिन जीवित भी नहीं रहता। और यदि उससे मुक्ति न मिले तो बौद्धिक पतन से ग्रस्तता अवश्यंभावी है। दलित वर्गों के उत्थान में बड़े से बड़ा बलिदान भी कम नहीं। स्वतंत्रता की कसौटी सबसे छोटे की स्वतंत्रता से होनी चाहिए। भय लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में पीड़ितों की समस्याएं रुकावट न बन जाएं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि धर्म को बीच में न डालें। संविधानकारों ने देश की राजनीतिक संरचना धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही तो तैयार की। इससे यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता होगी तथा सार्वजनिक व्यवस्था एवं नैतिकता की सीमाओं के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुपालन करने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान माना जाएगा, चाहे उसका धर्म, जाति अथवा लिंग कुछ भी हो। किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता सदैव देश को बर्बादी की ओर ले जाती है। धार्मिक रूढ़िवादिता व धर्म का राजनीतिकरण देशोत्थान में सदैव बाधक होता है, और इसी प्रकार संगठित धर्म भी देश के निर्माण में घातक ही सिद्ध होता है। वास्तविक व आदर्श राष्ट्रवाद का निर्माण धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाकर ही संभव है। सांप्रदायिक समस्या मूलतः निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए पैदा की जाती है और धर्म को इसका माध्यम बनाया जाता है। जातिवाद से ग्रसित समाज भी धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। हमें किसी की आस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आस्थाएं जब जातिगत संभागों में बढ़ जाती हैं तो निसंदेह राज्य की सामाजिक संरचना पर उसका दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता है, और फिर समानता के आदर्श को प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। देशोत्थान हेतु जनता का राजनैतिक शिक्षण अवश्य होना चाहिए।

कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्रीरामचरितमानस का कार्यक्रम। खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी पशुओं में अफरा रोग के कारणों निवारण के विषय में डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता।

प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अकील अहमद खां का राग तानसेनी बिलावल में ख्याल गायन। श्रोताओ 11 बजे आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ। चर्चा के विषय होंगे ग्रीष्म ऋतु में संतुलित आहार से स्वास्थ्य रक्षा। एक और विषय पर चर्चा होगी, विषय होगा शांति सहयोग और आपसी विश्वास आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी। और 12 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में आप सुनेंगे अनुराधा तुली की वार्ता जिसका विषय होगा गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ हम चर्चा करेंगे हरित जीवन शैली के विषय में। राजेंद्र मेहता नीना मेहता की गायी गजलें हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। दिन में 3:30 पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के अंतर्गत सुनी जा सकेगी डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के विषय में डॉक्टर बीके अग्रवाल से श्रीनिरज जैन की बातचीत। हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सो संध्या प्रस्तुत किया जाएगा 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में 5:30 पर आप सुनेंगे प्रेरणा वशिष्ठ की वार्ता जिसका विषय होगा समाज में हर कोई है सम्मान और बराबरी का हकदार। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। चर्चा का विषय होगा 1 और 1 11 और क्वेस्ट वर्ल्ड में हम जानकारी देंगे जनहित याचिका के बारे में। 6 बजे ग्रामीण लोक कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी डॉक्टर सतेंद्र कुमार की वार्ता जिसका विषय होगा स्वस्थ मृदा से ही संभव है स्वस्थ जीवन। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा का विषय होगा पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा श्रमिक परिवारों में बचत की आदत। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा सरस्वती पत्रिका और हिंदी जागरण में उसकी भूमिका के विषय में डॉक्टर संध्या द्विवेदी की वार्ता। रात्रि 10 बजे सुनेगा काव्य गोष्ठी आवाज तो हम सब एक हैं।

प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर विशाल गुप्ता दांतों में पायरिया के विषय में जानकारी देंगे। प्रेम तिवारी के गाय लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर

और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विदुषी परवीन सुल्ताना का राग गोरख कल्याण और राग रागेश्वरी में ख्याल गायन। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी की आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

चरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन

वादों को दी है, जिनकी रचना काक भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड, इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसंग। गायक कलाकार थे अनूप जलोटा। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए आपको सुनवाते हैं। पशुओं में अफारा रोग के कारण और निवारण के विषय में डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता।
1: अफारा रोग अक्सर रोमंथ वाले पशुओं में पाया जाता है। रोमंथ वाले पशु जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। रोमंथ आमाशय का पहला भाग है, जिसमें पशु आहार को इकट्ठा कर लेता है, फिर जुगाली के माध्यम से दांतों से चबाकर आहार के मोटे मोटे कणों को छोटा करके वापस रोमंथ में करता है। अफारा को अंग्रेजी में टिम्पेनी तथा ब्लोट कहते हैं। इस बीमारी का प्रमुख कारण

मंथ में अधिकाधिक मात्रा में हवा भर जाना जो पशु के लिए घातक होती है। हवा बनने के कारण हरा चारा की बहुत सी मात्रा खा लेता है। हरा चारा जिसमें पत्तियां अधिक हो उसमें पानी की मात्रा का प्रतिशत 80 से 90 तक होता है। इस प्रकार चारे को कोमल ग्वार लोबिया दूब घास रिजका आज बरसात के मौसम में तथा बरसीम जई या जाड़ों के मौसम में है। जब इन चारों में पानी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तो रोमंथ में भाप बनकर अधिक मात्रा में बनकर उसे गुब्बारे की भांत बना देता है। अतः ऐसी दशा में हरे चारे के साथ गेहूं चना जौ आदि का भूसा अथवा सूखी ज्वार की कड़वी मिलाकर खिलाना चाहिए। सड़े गले पदार्थ जब रोमंथ वाले पशुओं को खिलाते हैं तो उससे भी अफारा होता है।

धान का भूसा अथवा सूखी ज्वार की कड़वी मिलाकर खिलाना चाहिए। सड़े गले पदार्थ जब रोमंथ वाले पशुओं को खिलाते हैं तो उससे भी अफारा होता है। यदि पशु को बाई कोख में थपथपाएं तो ऐसा लगेगा कि हम गुब्बारे को थपथपा रहे हैं, यह अफारा रोग है। यदि थपथपाने से ऐसा लगे जैसे गुथा हुआ आटा भरा हो तो हम पाएंगे दूसरी बीमारी जिसका नाम है इंफेक्शन। अफारा पशुओं का साधारण रोग है जो गलत आहार के कारण होता है। यह छूत की बीमारी नहीं है, जैसे घुरका, पौका, जहरी बुखार आदि। अतः हमको सावधानी पशु के खाने में बरतनी चाहिए कि उसे संतुलित आहार मिले जिसमें ठोस पानी की अनुपात सही हो। सड़ा गला आहार बिल्कुल नहीं दें। यदि पशु बोलता नहीं है तो हमें उसकी दैनीय दशा पर कठोरता से मनमानी नहीं करनी चाहिए। हींग अधिकतर सभी पशुपालकों को घर में मसालों के तौर पर पाई जाती है। अतः अपारे के इलाज में हींग की 8 ग्राम मात्रा, सौंफ की 8 ग्राम और काला नमक 8 ग्राम मिलाकर 4 घंटे के अंतर पर इतनी मात्रा में खिलाएं। पशु धीरे धीरे कुछ समय में ठीक हो जाएगा। अगर अफारा हल्का है तो पशु को 8 ग्राम सौंफ 8 ग्राम 6 घंटे के अंतर पर दी जा सकती है। तारपीन का तेल भी अफारे के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तरुण गाय भैंस को तारपीन का तेल 60 मिलीलीटर, अमोनिया का घोल 60 मिलीलीटर और अलसी का तेल आधा लीटर खूब मिलाकर नाल के माध्यम से मुंह को ऊपर उठाकर पिलाएं। ध्यान रहे यह श्वास नली में नहीं जाना चाहिए, अतः फेफड़ों में पानी भरने से जानवर मर सकता है। इस इलाज में पशु को जल्दी आराम मिलता है। यदि अंग्रेजी दवाइयों की दुकान जहां पशु की दवाइयां उपलब्ध हो तो ऐसी दशा में एल्वोनॉक्स नामक दवाई उपयोग की जा सकती है। यह दवाई आसानी से दी जा सकती है और यह बहुत अधिक कारगर है। यदि आपको लगता है कि पशु अधिक बेचैन है तथा अत्यधिक छटपटा रहा है और अफारे के कारण रोमंथ बहुत फूलता जा रहा है कि पेट फटने की आशंका है अथवा लंग्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से और हृदय पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से पशु की मृत्यु हो सकती है तो ऐसी दशा में वे टोकार कैनुला नाम का औजार पशु के लिए लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए पशु चिकित्सक काबिल है और उसे बुलाना चाहिए। टोकार एक छड़नुमा औजार है जिसकी एक कोने को नुकीला कर दिया जाता है और कैनुला एक खोखला पाइप है जिसमें टोकार फंसा होता है। लगाते समय उसके पशु की बाई कोख में घोंप दिया जाता है, टोकार निकाल लेते हैं, कैनुला फंसा रहता है। इस तरीके से रोमंथ की हवा निकल जाती है, पशु बच जाता है। पशुओं को अक्सर नाले का पानी पिला देते हैं और नाले के पानी में बहुत से पारजैविकी बैक्टीरिया और विषाणु होते हैं, वायरस। इस प्रकार उनसे अनेक बीमारी हो जाती हैं और यह अफारा रोग भी उत्पन्न कर सकता है। और उसमें सीवलचाई एक प्रमुख कीड़ा है और पारजैविकी में फैसियोला, हेपेटिका आदि अनेक पारजैविकी होते हैं। टेप वर्म्स भी उनमें से एक है। इस प्रकार के पारजैविकी भी पशु के लिए खतरनाक होते हैं। विषाणु इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मगर उनको अवस्था जल्दी से खत्म हो जाती है। अतः पानी को हमें साफ सुथरा पिलाना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में होलसम कहते हैं, कि पानी जो है गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी नाली का और गंदे ड्रेनेज का पानी पिला दें वो पशु के लिए खतरनाक है। ऐसा है कि पानी को अगर शहर में रह रहे हैं तो क्लोरिनेटेड वाटर पिलाएं और अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो गंदे पोखर में न पिलाएं जहां स्टैग्नेंट वाटर है।

0: पशु के लिए नुकसानदायक होता है, बहता हुआ पानी पशु के लिए बहुत उपकारी है। इसीलिए बहते हुए पानी को पिलाना चाहिए। और अगर इस पानी से अफारा रोग या कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देने बहुत जरूरी हैं। एंटीबायोटिक में कई ग्रुप हैं, जिनमें एक तो बैक्टीरियोसाइट हो जाता है जो कीड़े मारता है, दूसरा इन कीड़ों को बाहर निकालता है, स्टेटिक कर देता है। तो ऐसे इलाज में खुद नहीं करना चाहिए, पशु की सलाह लेनी चाहिए कि उसे क्योंकि बैक्टीसीडल जो है बीमारी को अगर मान लो उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो जब कीड़ा मरता है तो उसमें से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो पशु के लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए उनकी डोज जो खुराक है वो नियमित करनी चाहिए, क्योंकि ये काम है पशु चिकित्सक का है, किसी ऐसे अतार वगैरह से या किसी ऐसे अनाड़ी से नहीं इलाज कराना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। पशु चिकित्सक जो है आदमी की दवाई वो भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर पशु की दवाई नहीं उपलब्ध है तो आदमियों की दवाइयों को उस डोज में कन्वर्ट करके भी इलाज कर सकता है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी पशुओं में अफारा रोग के कारण और निवारण के विषय में डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनिएगा हिंदी में समाचार, और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आर्थिक विषयिकया मन्त्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय चतुर्दश ग्रैष्मिक सस्यानां एमएसपी इति न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभा सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषां उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यतीति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्य प्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदं च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांक पर्यन्तं यूएई नेदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेश मंत्रालयस्य सचिवः सीबी जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी यूएई अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन सह मिलिष्यति। सः अवदत् यत् उभावपि नेता

0: आरौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रीय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते। सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमंत्री एस जयशंकरः भविष्यति। ब्रिक्स देशानां विदेशमंत्रिणः सदस्यराष्ट्राणां प्रतिनिधिदलप्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहिष्यन्ति। केन्द्रीय अन्वेषण विभागः NEETUG 2026 इति परीक्षायाः विषये अभिकथित अनियमिततायाः प्रश्नपत्रस्य अनियमिततया प्रकाशनेति विषये च पञ्च अभियुक्तान् गृहीतवान्। प्रकरणस्य पञ्च अभियुक्ताः जयपुरतः त्रयः, एकैकौ गुरुग्राम नाशिकतः, अन्ये अनेके च संकिताः सम्प्रति परीक्षमाणाः सन्ति। असम सर्वकारः अस्य मासस्य 26 दिनांके राज्य विधानसभायां यूनिफॉर्म सिविल कोड UGCC इति समान नागरिक संहिता विधेयकं प्रवर्तयिष्यति। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा इत्येषः मुख्यमंत्री रूपेण द्वितीय कार्यकालस्य प्रथम मंत्रिसभायाः अध्यक्षतां कृत्वा प्रसार माध्यमान् संबोधयन् घोषणैः अकरोत्। सर्वकारेण केन्द्रीय अन्वेषण विभागस्य CBI इत्यस्य निर्देशकाय प्रवीण सूद इत्यस्मै एकवर्षस्य विस्तारः दत्तः। उत्तरप्रदेशे धूलि प्रभञ्जनेन सह विद्युत प्रभञ्जनेन वृष्ट्या च गत 24 होरासु 43 जनाः मृताः। भदोही मण्डले सर्वाधिकाः 15 जनाः मृताः इति सूचनास्ति। पश्चिम बंग सर्वकारेण आलुकं, पलाण्डुः, फल शाकानि, तैलबीजादिभिः सह अन्य धान्यानि आवश्यकोत्पादेभ्यश्च अन्ताराज्यस्तरेषु आवागमनाय सर्वे प्रतिबन्धाः उपाहरिताः। अन्ते प्रियाः श्रोतारः क्रीडावार्तायाम्। IPL इति क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ रायपुरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 धर्मशालायां पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस इत्येते दले पुनः क्रीडिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
3: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत

0: क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
4: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
3: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC Bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath.

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं। दांतों में पायरिया रोग के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर विशाल गुप्ता की वार्ता।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज की 21वीं सदी में हमारा जीवन दिन पर दिन व्यस्त होता जा रहा है और अपनी इस व्यस्तता में हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि वो सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए। एक उदाहरण से इस चीज को समझेंगे। एक घर को स्वच्छ रखने के लिए उसके द्वार का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। अगर घर का द्वार स्वच्छ नहीं है तो घर के अंदर गंदगी हमेशा प्रवेश करती रहेगी। इसी तरह शरीर नुमा जो हमारा घर है उसको स्वच्छ रखने के लिए उसके मुख रूपी द्वार का स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है। मुख को साफ रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें आज हम लोग विस्तार में उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से पायरिया बीमारी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पायरिया हमारे मुंह में जो दांत हैं उनको जो चीज सपोर्ट करती है, जो मेन दो चीजें हैं वो हैं हड्डी और मसूड़े। जब ये परेशानी हड्डी और मसूड़े में कोई भी परेशानी होती है उससे जो बीमारी होती है उसे पायरिया कहते हैं। पायरिया क्या होता है सबसे पहले इस चीज के बारे में देखेंगे। जब हमारे मसूड़े और हड्डियां दोनों के दोनों नुकसान होने की वजह से या तो ढीले होते हैं या हड्डी में कमी आती है, इसकी वजह से ये पायरिया की दिक्कत होती है। इसके लक्षण क्या है? अक्सर मसूड़ों से खून निकलना, कुछ भी हार्ड या टाइट चीज खाने में दांतों में दर्द महसूस होना, दांतों का हिलना, दांत जरूरत से ज्यादा लंबे लगना, मसूड़ों का अपनी जगह से नीचे की तरफ जाना, ये सामान्य लक्षण हैं जिनसे कि आप रोज अपने दांतों को आईने में देख के पहचान सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे कारण क्या है पायरिया के। देखिए, हमें अपने दांतों को

0: साफ रखने के लिए दो बार उन्हें ब्रश से साफ करना बहुत जरूरी है। जब हम ये चीज नहीं करते हैं तो जो खाने की पदार्थ है, जो चिपकने वाली चीजें हैं दांतों में, वो अक्सर दांतों से चिपकी रह जाती हैं, जिसकी वजह से वहां सड़न होती है। सड़न की वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि मसूड़े और हड्डियों को खराब करता है, हड्डियों को घोलता है, मसूड़ों को खराब करता है, मसूड़ों में सड़न आती है, सूजन आती है, मसूड़ों में से खून का रिसाव होता है। इसके और कारण है ऐसी चीजों का सेवन करना जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, जैसे मीठी चीजें ज्यादा खाना, उसको खाने के बाद पानी से कुल्ला नहीं करना। ये सारे कारण हैं जो साथ में आकर के हमारे मसूड़ों को और हड्डियों को खराब करते हैं। अब उसको पहचानने के तरीके दो हैं। एक तो पहचानने का तरीका ये है कि आप दोनों टाइम डेली ब्रश करके अपने मुख को जरूर देखें, जिससे कि अगर आपको ऐसा लगे कि मसूड़ों में से खून का रिसाव हो रहा है तब आप उसे चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाएं। पायरिया से बचने के लिए सबसे अच्छा और असरदार उपाय है दो बार पेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल करना। इसके अलावा नियमित रूप से हर 6 माह से 1 साल के अंदर अपने जो दंत चिकित्सक हैं उनके पास जरूर जाएं और छोटी सी भी परेशानी को वहां चेक जरूर कराएं। इसके अलावा मीठी चीजों का सेवन कम से कम करें। ऐसी चीजों का सेवन बार बार ना करें जो कि दांतों से चिपकते हैं, जिनकी वजह से दांतों में आपको किसी टूथपिक या किसी चीज से उसे कुरेदने का जरूरत पड़ती है, और दो बार ब्रश जरूर करें। इसके अलावा मसूड़ों की मालिश नियमित रूप से करें। जब आप ब्रश कर लेते हैं उसके बाद उंगली से बहुत ही आराम से धीरे धीरे मसूड़ों की मालिश जरूर करें। इसके अलावा एक जो कि बहुत जरूरी चीज है वो है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन चीजों के अंदर निकोटीन होता है, एक पदार्थ जो कि हमारे मसूड़ों की सड़न को बहुत बढ़ाता है और हमारे मसूड़ों के जो घाव भरने की प्रक्रिया है उसे काफी धीमा कर देता है। इसकी वजह से मसूड़ों के जो घाव हैं वो भर नहीं पाते और उनकी सड़न और ज्यादा होती है। इस तरह अगर हम नियमित रूप से कुछ चीजों का पालन करें और उनको अपनी दिनचर्या में अगर हम शामिल करें तो हम इस पायरिया जैसी बीमारी से बड़े आराम से निजात पा सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको उपाय बताऊंगा जो आपको अपनी दिनचर्या में पालन करना है। जिन चीजों का सबसे जरूरी है कि सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले पेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल जरूर करें और थोड़ा समय दें। बहुत ज्यादा दबाव डाल के ब्रश नहीं करें, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से मसूड़ों में घाव बन जाते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से अपने दंत चिकित्सक के पास अपना चेकअप जरूर कराएं, नियमित रूप से जांच जरूर करवाएं। इसके अलावा मसूड़ों से अगर ऐसा लगता है कि खून आ रहा है या थोड़ा ठंडा पानी वगैरह भी हमें लग रहा है या कुछ भी दिक्कत आपको थोड़ी सी भी पता चलती है तो उसके शुरुआती टाइम पे ही अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं और उसकी जांच नियमित रूप से जरूर करवाएं। इसके अलावा जो अपने दांत हैं उनमें छोटी छोटी जो और परेशानियां होती हैं जैसे कीड़ा लगना या मसूड़ों का घाव बन जाना जो घाव भरते नहीं है आगे, या फिर दांतों का कलर अपने नॉर्मल सफेद कलर से खराब होना, पीला होना, या मुंह से दुर्गंध का आना, ये सारी जो परेशानियां हैं ये भी कहीं ना कहीं पायरिया की बीमारी से कनेक्शन रखती हैं। इसलिए हमें पायरिया जैसी जो बीमारी है जो हमारे मसूड़ों को और हड्डियों को कम करती है उसको जल्दी से जल्दी अपने मुंह के अंदर से हटाना है। उसके लिए जो आपको नियमित तरीके बताए गए हैं उन उपायों को आप इस्तेमाल करें और अपने मुख को स्वच्छ रखें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी दांतों में पायरिया रोग के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर विशाल गुप्ता की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवेश्वर में देशकान। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षणों में।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे

0: फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2900 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8780 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के MSP बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। खरीफ फसलों की MSP वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन MSP बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
4: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा

0: निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई हैं। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम आसपास में होंगी कुछ दैनिक सूचनाएं, साथ ही हम जानकारी देंगे कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत।

सबसे पहले कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी और भाषा विज्ञान विद्यापीठ से छात्र विदेशी भाषा की पढ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, रशियन, फ्रेंच और जर्मन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कर छात्र प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। रशियन, फ्रेंच और जर्मन में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं। इंटरमीडिएट के प्राप्तांक से मेरिट तैयार की जाएगी। वहीं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कर चुके छात्र उसी विदेशी भाषा के डिप्लोमा पाठ्यक्रम और डिप्लोमा कर चुके छात्र एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शुभो के एन कपूर मेमोरियल सीनी प्रदेश स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 30 और 31 मई को केडी बाबू स्टेडियम के तरणताल में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए 16 मई दोपहर 3 बजे से एकलव्य स्पोर्ट्स में ट्रायल शुरू होंगी। ट्रायल में 2013 या उससे पूर्व जन्मे पुरुष और महिला खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। इस ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को आधार कार्ड की छायाप्रति और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का यूआईडी नंबर साथ लाना होगा। इसका रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे रहेगा। हम आपको पुनः बता दें, इस तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 30 और 31 मई को केडी बाबू स्टेडियम के तरणताल में किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला मुख्य परीक्षा 2025 के तहत अंग्रेजी विषय की परीक्षा 17 मई को होगी। ये परीक्षा प्रयागराज में सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक आयोजित होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नंबर के माध्यम से प्रवेश पत्र

साथियों, प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में इस शैक्षिक सत्र से बच्चों को मोबाइल फोन की स्क्रीन से दूर करके किताबों और अखबारों की दुनिया से जोड़ने की तैयारी और तेज की जाएगी। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर स्कूलों में पठन संस्कृति को मजबूत बनाने, दैनिक समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित करने और पुस्तकालय गतिविधियों को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने के लिए कहा है। ये केवल अभियान नहीं, प्रदेश के भविष्य को संवारने का साझा संकल्प है। स्कूलों में रीडिंग आवर्स को शैक्षिक कैलेंडर का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। सभी विद्यालय तय समय सारिणी के अनुसार पठन कार्यक्रम चलाएंगे और पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराएंगे, ताकि विद्यार्थियों को पुनरावृत्ति और स्व अध्ययन का पर्याप्त समय मिल सके। विद्यालयों में अखबारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रार्थना सभा में प्रमुख खबरों और संपादकीय लेखों पर चर्चा भी कराई जाएगी। इससे भाषा कौशल, शब्द भंडार, तार्किक सोच, सामाजिक जागरूकता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की क्षमता विकसित होगी। स्कूलों और पुस्तकालयों में स्थानीय लेखकों, साहित्य लेखकों और वरिष्ठ पाठकों के साथ साथ लेखक संवाद कार्यक्रम भी होंगे। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और विद्यालय पुस्तकालयों को भी इस अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की पुस्तकालयों में पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। बुके नहीं, बुक अभियान के तहत पुरस्कार समारोह में स्मृति चिन्ह की जगह पुस्तकें भेंट करने पर जोर रहेगा। सभी स्कूलों में रीडिंग क्लब बनाए जाएंगे और हर सप्ताह एक पीरियड सब कुछ छोड़कर पढ़ें गतिविधि के लिए तय होगा, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी पसंद की किताबें पढ़ेंगे। इसके अलावा हर महीने पठन प्रतियोगिता, उत्सव और लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। प्राथमिक स्तर पर 20 से अधिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 30 से अधिक पुस्तकें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुपर 20 और सुपर 30 के रीडर्स के रूप में सम्मानित भी किया जाएगा और सत्र के अंत में सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ने वाले छात्र छात्रा को चैंपियन रीडर ऑफ द ईयर घोषित किया जाएगा।

चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगरदुम जगरदुम चिकिचकचो।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोता

और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

चित्र। थाना भोगांव मैनपुरी से दिनांक 4 अप्रैल 2026 से लापता है। अर्जुन की उम्र 27 वर्ष, कद 5 फुट और रंग के हुआ है। गुमशुदगी के समय अर्जुन ने लाल टी शर्ट, पैंट और चप्पल पहनी हुई थी। अर्जुन के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना भोगांव मैनपुरी के पते पर सूचित करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार शिवानी पत्नी रितेश निवासी नगला चुन्नी थाना करहल जनपद मैनपुरी से दिनांक 4 अप्रैल सन 2026 से लापता है। शिवानी की उम्र 22 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच और रंग सांवला है। गुमशुदगी के समय शिवानी ने सूट और सलवार पहनी हुई थी। शिवानी के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना करहल मैनपुरी के पते पर सूचित करें। और एक अन्य सूचना के अनुसार शीला पुत्री राम महेश निवासी दलेल नगर थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी से दिनांक 9 अप्रैल सन 2026 से लापता है। शीला की उम्र 19 वर्ष, कद 5 फुट, चेहरा गोल और रंग सांवला है। शीला के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना बरनाहल मैनपुरी के पते पर सूचित करें। श्रोताओं, आपका एक छोटा सा प्रयास किसी बिछड़े हुए को उसके परिवार से मिलवा सकता है। और खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओ, 15 वर्ष बाद भारत सरकार देश की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना करा रही है, जिसमें देश के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बेझिझक अपने वास्तविक आंकड़े दर्ज कराने चाहिए। जनगणना में एकत्रित की गई जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है और इन आंकड़ों का उपयोग सरकारें जन कल्याण की विभिन्न योजनाएं बनाने में करती हैं। उत्तर प्रदेश में ये जनगणना दो चरणों में होगी। 22 मई से 20 जून तक पहले चरण में मकान गणना और फरवरी 2027 में दूसरे चरण में जनगणना। देश के नागरिक प्रथम चरण की मकान गणना में सवालों के स्वतः पोर्टल पर जवाब देकर 7 से 21 मई तक स्व जनगणना कर अपना योगदान दे सकते हैं और प्रगणक के मांगने पर स्व जनगणना आईटी नंबर दें। इसमें खास बात का आपको ध्यान रखना होगा कि धोखाधड़ी से भी सतर्क रहें। इस जनगणना के दौरान कोई दस्तावेज या फोन पर ओटीपी नहीं मांगा जाता है, अतः जनगणना के नाम पर किसी को भी ये जानकारी उपलब्ध ना कराएं।

शुद्ध मोटापा से मधुमेह, खराटे, युवतियों में मासिक धर्म अनियमित होने के साथ साथ ही फैटी लीवर की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एसएम मेडिकल कॉलेज में मोटापे के साथ साथ इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों पर स्टडी की गई। मरीजों को 3 महीने तक हर सप्ताह इंजेक्शन दिया गया। इससे 10% तक वजन कम हो गया। खराटे की समस्या और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर से मासिक धर्म अनियमित होने की समस्या भी ठीक हो गई। ये स्टडी इसी वर्ष जर्नल ऑफ मिड टर्म में प्रकाशित हुई। मधुमेह रोगियों में शुगर का स्तर नियंत्रित रखने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन सप्ताह में एक बार लेना होता है। मरीज को दवाएं और इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे वजन भी कम होता है। ये इंजेक्शन 72 सप्ताह तक लिया जाए तो व्यक्ति का 20% तक वजन कम हो सकता है। इसके साथ ही जीवन शैली में बदलाव, चिकनाईयुक्त भोजन नहीं लेने और नियमित व्यायाम करने से इंजेक्शन बंद करने के बाद वजन बढ़ने से भी रोका जा सकता है। तो इस तरह ये इंजेक्शन एसएन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है।

साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। छात्रों के पास उच्च शिक्षण संस्थानों और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के तमाम मौके इस समय हैं। आप रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं या कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, फैशन की दुनिया आपको लुभाती है या फिर प्रबंधन के क्षेत्र में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आपके पास ढेरों अवसर हैं। सही संस्थान और सही कोर्स का चयन कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के बाद बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के 12वीं के परिणाम भी आ गए। इंटर के बाद अधिकांश छात्रों के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि अब क्या करें। उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी पहले ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म भर चुके हैं और उसकी परीक्षाएं भी चल रही हैं। वहीं कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो किसी कारणवश सीयूईटी के लिए आवेदन नहीं कर पाए, तो ऐसे छात्रों के लिए मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश का मौका है। मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के तमाम पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। वहीं कानून की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एलिट परीक्षा के फॉर्म अगस्त के आसपास मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप तकनीकी क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में प्रवेश का मौका है। इस संस्थान के छात्रों ने ही वंदे भारत ट्रेन डिजाइन की है, तो ये भारत के लिए एक गौरव की बात है। फैशन की दुनिया में छाने को बेकरार छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और होटल व्यवसाय में भविष्य संवारने के इच्छुक छात्रों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि पूसा के पंजीकरण 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसी तरह देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत युवाओं के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए भी एक अच्छा विकल्प है। इससे देश सेवा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। एनडीए के लिए साल में 2 बार आवेदन दिए जाते हैं और एनडीए के लिए पंजीकरण 20 मई से 9 जून तक होते रहेंगे। श्रोताओं, छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर आज आगरा किला पर उनका यशोगान गूंजेगा। आगरा किला के सामने स्थित श्री हनुमान मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र के नासिक से छत्रपति संभाजी महाराज की 13 फीट ऊंची घुड़सवारी की मुद्रा वाली प्रतिमा बुधवार देर रात आगरा पहुंच गई।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी

0: के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी,

0: बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति से।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी

0: का अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-डे मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangkhetkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 88th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term

0: decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war on trade. The Times of India writes, deal maker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयत सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केटकेओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलम उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकतदार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स @20 इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निजाम में इसलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया।

0: जनाब शर्मा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक्किद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर मुमालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिजा के तकर्रात, म्यूनिसिपल तकर्रात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रात घपलों से मुतालिक मामलों को सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को खत्म कर दिया है जिनका सबूतदोशी के बाद टीएमसी हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने जरई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। जरई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलों नकल की जा सकती है। जिला इंतजामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वजीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि जरई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर जरूरी तौर पर रोका गया या हिरासत किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से जरई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दतकार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अबू जहबी का दौरा करेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वजीर आजम का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तावुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुत्तहिद अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहिद अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहिद अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल जरूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमू मकदार

0: 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहिदा अरब इमारात गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का 7वां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबू धाबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आजम के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए हर जरूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निकार की ये रिपोर्ट।
2: भदोही जिले में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद जिलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिली, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली झालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारतीय महकमाए मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ 2 रोजा मुजाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुजाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूदात एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम मुआहिदे पर मबनी है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तावुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तावुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया।

0: कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुतालिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। सीबीएसई 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुतालिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इंकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है, सीबीएसई की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 144 मेंबरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की, इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफे पर शाये किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुतालिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाये की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर अशिया की दरामद कम करके गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गिजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के दो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीताजलि।

साथियों, कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत आपने सुना जहर फिल्म से। स्वर्था श्रेया घोषाल का, गीतकार थे सईद कादरी, संगीतकार थे अनु मलिक।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे सईद कादरी की शब्द रचना। स्वर्थ राहत फतेह अली खान का फिल्म थी कलयुग। फिल्म संगीत के कार्यक्रम की तंजली का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा है।

साथियों, कार्यक्रम का ये गीत है गजनी फिल्म से। स्वर है बेनी दयान और श्रेया घोषाल के। गीतकार है प्रसून जोशी, संगीतकार है ए आर रहमान।

श्रोताओ अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है LLC कारगिल, स्वर है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, बोल है जावेद अख्तर की, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम की तंजली अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
1: भगवान बुद्ध की मां पर निर्माण स्थली कुशीनगर में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाव ऊ तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव है। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है।
2: भगवान तथागत बुद्ध का सर्वकालिक महत्व है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। और संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने आकर्षक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर माथा कुंवर स्तूप पर आकर संपन्न हुई। जनपद कुशीनगर में नगर पंचायत फाजिलनगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गयी। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सुनीता शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह को 713 मतों से पराजित किया। यह सीट उनके पति शत्रुमर्दन प्रताप शाही के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जिस पर भाजपा ने उनकी पत्नी सुनीता शाही को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कुशीनगर जिले में मतगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया विगत 7 मई से शुरू हो गई है, जो 21 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रगणक एवं जनगणना कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3: पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, जिसमें आप सभी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जनसूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें।
1: कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर वी के मिश्र का विगत 6 मई को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय मिश्र कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से सन 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक

0: निर्वाचित हुए थे। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पडरौना के खिड़किया शमशान घाट पर किया गया, जहाँ भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
1: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
2: सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विशेष जोर दे रही है। शहर के अंदर एक सीमित दूरी तक के लिए ई बसों के संचालन की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज ने मध्यम और लंबी दूरी के लिए ई बसों के संचालन की कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत गोरखपुर के दो प्रमुख स्टेशनों से 20 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या बनारस सोनौली सहित अलग अलग महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ेगी। रोडवेज ने गोरखपुर से विभिन्न रूटों के लिए ई बसों का ट्रायल कर दिया है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार 9 बसें वाराणसी और 3 बसें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के संचालन के लिए राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के बाद अब रोडवेज अगले 10 दिनों में बसों के विधिवत संचालन की समय सारणी भी जारी कर देगा। ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन निगम इसका लाभ यात्रियों को कम किराए के रूप में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2-लेन ब्रिज का लोकार्पण फीता काटकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है। विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में चारों ओर 4-लेन 6-लेन की कनेक्टिविटी है। यहाँ एम्स बन गया है। खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, आयुष विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ताल, कई होटल सहित अनेक सुविधाओं का यहाँ विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर 2-लेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। सीएम ने GDA के अफसरों से कहा कि वाटर बॉडी को रामगढ़ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
3: गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है। हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है।
2: पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की जयंती 10 मई रविवार को उनके अनुयायियों की ओर से धूमधाम से मनाई गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित ध्यान केंद्र पर किया गया। अनुयायियों ने सबसे पहले गुरु के भजन गाए और फिर पुष्पांजलि आरती कर गुरु को याद किया। गुरु युक्तेश्वर गिरी से लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर गुरु की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। गोरखपुर जिले में ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के बेतिया हाता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल स्थित बालाजी मंदिर के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत आपने सुना फिल्म ज्वेल थीफ से, स्वाती लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। मशहूर सुल्तानपुरी की शब्द रचना को संगीत से सजाया था एसटी परमन ने। और अब लीजिए सुनिए गाइड फिल्म से मोहम्मद रफी को। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं एसटी परमन।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे नीरज की शब्द रचना, स्वर थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, फिल्म थी गैम्बलर। और अब लीजिए सुनिए फिल्म तीसरी मंजर से आशा भोसले और मोहम्मद रफी को, गीतकार हैं बजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं प्रेम तिवारी के गाए कुछ टुक गीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम तिवारी के गाए कुछ लोक गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सर सरिता।

साथियों, सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे जयदीप साहनी की शब्द रचना। स्वर्था रूप कुमार राठौर का फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी। और अब लीजिए सुनिए फिल्म जब वी मेट से उस्ताद राशिद खान को। गीतकार है इरशाद कामिल, संगीतकार है संदेश शांडिल्य।

अरमान मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मनोज मुंतशिर की शब्द रचना स्वर्था पलक मुचाल का फिल्म थी एमएस धोनी।

जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है राहत फतेह अली खान और कृष्णा के, बोल है जावेद अख्तर की, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने। फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

सदा महत्वाकांक्षा मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन सच्ची विजय तब मिलती है जब वो अपने भय, अहंकार और असंतुष्ट इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख ले। स्वयं को जीतना सबसे कठिन और महान युद्ध है। शक्ति, साम्राज्य और प्रसिद्धि क्षणिक है, जबकि चरित्र, विवेक और आत्मसंयम ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। इसलिए आप भी सपने देखें और आगे बढ़ते रहें।

आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं अकील अहमद खां का राग तानसेनी बिलावल में ख्याल गायन। विलंबित रचना झप ताल में, द्रुत रचना तीन ताल में और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तो प्रस्तुत है अकील अहमद खां का राग तानसेनी बिलावल में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अकील अहमद खां का राग तानसेनी बिलावल में ख्याल गायन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम आज के कलाकार का।

कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मुंबई, जिसे सपनों का शहर सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, यह शहर अटूट इच्छा शक्ति, अथक परिश्रम और बॉलीवुड के ग्लैमर का प्रतीक है, जो हर साल लाखों लोगों को बड़े सपने सच करने के लिए आकर्षित करता है। यह शहर सभी के लिए काम सफलता के द्वार खोलता है। कभी ना सोने वाला यह शहर मुंबई की जीवन शैली को और तेज कर देता है और यहाँ के लोगों को एक चकाचौंध भरी जिंदगी से भर देता है। आज के कलाकार कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी ही पर्सनालिटी की बात करेंगे, एक ऐसे निर्माता जिन्होंने सिने जगत में अपना एक परचम लहराया। लेकिन सबसे पहले चलते हैं उन्हीं के फिल्म का ये गीत सुनने के लिए।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं सिने जगत के प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या की, जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले हिंदी सिनेमा में कई पारिवारिक और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। वे मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या के पिता थे। राजकुमार बड़जात्या राजश्री प्रोडक्शन के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या के पुत्र थे। उन्होंने 1960 और 80 के दशक के दौरान कई फिल्मों में सह निर्माता के रूप में काम किया। राजकुमार बड़जात्या ने सुधा बड़जात्या से शादी की थी और राजश्री प्रोडक्शन को राजकुमार बड़जात्या के पिता ताराचंद बड़जात्या ने स्थापित किया। ताराचंद ने राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले तपस्या फिल्म बनाई, जिसे साल 1975 में नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा चितचोर और सारांश फिल्में भी बनाई। राजकुमार बड़जात्या भारतीय फिल्म उद्योग के एक दिग्गज निर्माता और राजश्री प्रोडक्शन

0: के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका फिल्मी सफर पारिवारिक, पारंपरिक और साफ सुथरी मनोरंजक फिल्मों के लिए जाना जाता है। राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक मूल्यों पर आधारित फिल्मों की विरासत को आगे बढ़ाया। आगे आपको बताएंगे कि इनकी कौन कौन सी फिल्में थीं जो ब्लॉकबस्टर थीं। फिलहाल एक और गीत।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्माता राजकुमार परजात्या की। गीत से पहले हम बात कर रहे थे इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह और प्रेम रतन धन पायो जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया इन्होंने। अपने बेटे निर्देशक सूरज परजात्या के साथ मिलकर बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी। फिल्मों का अंदाज उनकी फिल्में भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली, प्रेम और परंपरा को हमेशा दिखाती थी। जहां मैंने प्यार किया एक्टर सलमान खान की डेब्यू फिल्म रही, मैंने प्यार किया राजकुमार परजात्या की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए परजात्या को फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। यह साल 1989 में आई थी। इसके बाद हम आपके कौन, ये फिल्म थी राजकुमार परजात्या की बेहतरीन फिल्मों में से एक। साल 1994 में आई इस फिल्म के लिए पारिवारिक ड्रामे को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस फिल्म में सलमान खान के साथ माधुरी दीक्षित और मोहनीश बहल जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके बाद आई 1999 में हम साथ साथ हैं। मल्टी स्टार इस फिल्म के लिए राजकुमार परजात्या को कई पुरस्कार मिले। यह फिल्म साल 1999 में आने के साथ ही इस फिल्म में भी सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, करिश्मा कपूर, मोहनीश बहल जैसे कई बड़े और मशहूर कलाकार शामिल हुए। उसके बाद आई विवाह। लंबे समय बाद राजकुमार परजात्या ने शाहिद कपूर और अमृता राव के साथ मिलकर फिल्म विवाह बनाई। यह फिल्म साल 2006 में आई और दर्शकों ने फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया। 2015 में प्रेम रतन धन पायो सलमान खान के साथ ही राजकुमार परजात्या साल 2015 में फिल्म प्रेम रतन धन पायो लेकर आए। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सोनू कपूर, सौरभ भास्कर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म साल की हिट फिल्मों में से एक रही।

श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या की। राजकुमार बड़जात्या ने अपने बेटे निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ मिलकर बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी। फिल्मों का अंदाज, उनकी फिल्में भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली, प्रेम और परंपराओं का एक ऐसा जोड़ था जो मिसाल बन गया। उनके प्रोडक्शन वेंचर की आखिरी फिल्म थी हम चार, जो 15 फरवरी 2019 को रिलीज हुई। 21 फरवरी 2019 को मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके द्वारा निर्मित फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा में पारिवारिक मनोरंजन के लिए स्वर्ण मानक मानी जाती हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के कलाकार में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं, तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ केस सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी का सितम बहुत तेज है, इस वक्त गर्मी से बचाव उतना ही जरूरी भी है। तो चलिए आज कार्यक्रम की शुरुआत ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में इस विषय से कर लेते हैं, ताकि हम कुछ चीजों को समझ पाए, अमल कर पाए और अपने आप को बचा पाए। गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप और उच्च तापमान में शरीर को ठंडा रखना बेहद जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान या ग्रीष्म ऋतु चर्या का पालन करना भी बेहद आवश्यक है। आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार इस मौसम में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन। अब इसको दूर करने के लिए, पाचन शक्ति को हल्का बनाए रखने के लिए संतुलित आहार ही स्वास्थ्य रक्षा का आधार है। ग्रीष्म ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार में अगर बात की जाए तो भरपूर पानी और तरल पदार्थ, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, बेल का शरबत और छाछ का सेवन आप कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखता है। जल समृद्ध फल और सब्जियां अपने आहार में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा और अंगूर जैसे फलों को शामिल कर आप इससे निजात पा सकते हैं, यानी कि आपकी जो डिहाइड्रेशन की समस्या है वो काफ़ी आपको उसमें राहत देगी। जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ऐसे फलों को आपको सेवन करना चाहिए। गर्मी में जो पाचन होता है, हमारा जो डाइजेशन होता है, वो अग्नि कमजोर हो जाती है, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें। उबली हुई सब्जियां, दाल, चावल, दलिया और सलाद का सेवन करें। दही और छाछ, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, दही और छाछ न केवल पेट को ठंडा रखते हैं बल्कि पाचन में भी सुधार करते हैं। शीतल और कड़वे खाद्य पदार्थ, आयुर्वेद के अनुसार करेला, लौकी, तोरई और पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं और रक्त को शुद्ध भी करती हैं। साथ ही आप शहद और मिश्री चीनी की जगह पर प्राकृतिक मिठास के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। मिश्री शहद का उपयोग करें, जो शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करते हैं। अब सवाल उठता है कि आप ऐसा क्या ना करें, क्या ना खाएं, क्या परहेज करें जिससे आप इन सब चीज़ों से बच सकें। तो सबसे पहले तली भुनी मसालेदार और जंक फूड से आपको बचना है, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। बहुत अधिक चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर की जो पानी की कमी है, यानी कि डिहाइड्रेशन की जो समस्या है, उसे और बढ़ा देते हैं। फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या सोडा कोल्ड ड्रिंक से बचें, ये आपके पाचन पर बुरा असर डाल सकते हैं। सुबह जल्दी और देर शाम को जो ताज़ा भोजन होता है वही करें, बासी भोजन बिल्कुल ना करें। दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। इन आहार संबंधी बदलावों को अपनाकर आप ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों जैसे हीट स्ट्रोक, पेट खराब होने की समस्या, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। तो क्या करना है, अब से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। चलिए फिलहाल अब बातें बहुत हुई, चलते हैं थोड़ा सा गीत संगीत की तरफ।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम में गीत से पहले हमने चर्चा की गर्मी के ऊपर, और अब बात कर लेते हैं वैश्विक मजबूती के वर्ष पर। वर्ष 2026 में वैश्विक आर्थिक मजबूती और स्थिरता के लिए शांति, सहयोग और आपसी विश्वास सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और ध्रुवीय विश्व में आर्थिक प्रगति केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशों के बीच साझेदारी और रणनीतिक विश्वास पर निर्भर करती है। 2026 में आर्थिक मजबूती के लिए मुख्य कारक शांति और स्थिरता की अगर भूमिका की बात की जाए, तो 2026 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अशांत है और निवेशक व व्यापार स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दे रहे हैं, ना कि अस्थिरता को। संघर्षों से मुक्ति और शांति दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। अगर हम बात करें सहयोग आधारित अर्थव्यवस्था यानी कि कोऑपरेशन लेड इकोनॉमी की, तो 2026 में ताकत ही सहयोग है, स्ट्रेंथ इज कोऑपरेशन का नैरेटिव अब प्रबल है।
1: शाम, तुझे पता है

जहाँ ताकत ही सहयोग है का नैरेटिव प्रबल है, देश अब व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के बजाय साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म, नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड और तकनीकी साझेदारी के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। अगर हम आपसी विश्वास और कूटनीति की बात करें तो भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत जैसे देश ब्रिज पावर की भूमिका निभाते हुए अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच संतुलित कूटनीति यानी कि बैलेंस डिप्लोमेसी के द्वारा आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित कर रहे हैं। अवसर और चुनौतियां भारत के लिए 2026 में भारत में एआई, फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में उभर रहा है। भारत की कूटनीति इसे वैश्विक व्यापार में एक विश्वसनीय भागीदार बनाती है। अगर इसके क्षेत्रीय सहयोग की बात की जाए तो भारत, वियतनाम और भारत फ्रांस जैसे देशों के साथ विशेष वैश्विक

भारत की कूटनीति इसे वैश्विक व्यापार में एक विश्वसनीय भागीदार बनाती है। अगर इसके क्षेत्रीय सहयोग की बात की जाए तो भारत वियतनाम और भारत फ्रांस जैसे देशों के साथ विशेष वैश्विक सामरिक साझेदारी और व्यापार समझौते 2026 में आर्थिक मजबूती के प्रमुख स्तंभ हैं। 2026 में व्यापारिक तनाव यानी कि ट्रेड टेंशन्स और उच्च ऋण बोझ, भू आर्थिक टकराव, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन वैश्विक विकास के जोखिम बने हुए हैं। तो 2026 हमें यह दिखाता है कि आर्थिक सुधार और विकास के लिए देशों का समावेशी शासन और पारदर्शी संस्थानों को अपनाना होगा। शांति और विश्वास का एजेंडा ही सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर, समृद्धि की ओर ले जाने वाला मार्ग हो सकता है।

श्रोताओ, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज के लिए बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT

0: ईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
0: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी,
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी

के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए।

0: बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।

0: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
1: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
0: आजा खेलते हैं।
1: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
2: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
1: अच्छा वो क्या?
2: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
1: हाँ
3: दूसरा क्या?
2: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
0: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: तुसी फौज में हो ताया जी?
1: हां पुत्र।
0: छुट्टी आए हो? तुसी फौज विच की कर दे हो?
1: हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी।
0: आपके पास फौजी वर्दी है?
1: हां।
0: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
1: बिल्कुल। मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
0: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
1: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए

0: इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोंपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर

0: पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
2: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
2: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
0: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

हर दिल जो प्यार करेगा। इस फिल्म में अब सुनते हैं उदित नारायण अलका याग्निक और साथी को, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना अनु मलिक की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म कुछ कुछ होता है से। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, मनप्रीत अख्तर की। समीर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

कुछ कुछ होता है फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी

0: प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारकू में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रूपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागृति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागृति टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Foreign ministers of BRICS member countries will also call on Prime Minister Narendra Modi this afternoon. The theme for India's BRICS chairship this year is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Meanwhile, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Indonesian counterpart Sugiono on the sidelines of the meeting this morning. In a social media post, Dr. Jaishankar said they reviewed the progress of the Comprehensive Strategic India-Indonesia Partnership and the cooperation with the Association of Southeast Asian Nations. Congress MLA V.D. Satheeshan will be the new Chief Minister of Kerala. The Congress today announced the name of Mr. Satheeshan during a press conference in New Delhi. Union Home Minister Amit Shah today said the National Disaster Response Force, NDRF, has earned the trust of 140 crore people across the country within a short span of 20 years. The Home Minister said this while addressing the President's Colour Award ceremony of the NDRF in Ghaziabad. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next phase of India-Africa collaboration will focus on higher value products and integrated supply chains across sectors such as agriculture, digital infrastructure, healthcare, clean energy, manufacturing and technology. Mr. Goyal was addressing the curtain raiser for the India-Africa Business Dialogue and Exhibition and the India-Africa Forum Summit in New Delhi yesterday. The minister also expressed confidence that the India-Africa Business Dialogue and Exhibition to be held in New Delhi from the 29th to the 31st of this month alongside the 4th India-Africa Forum Summit will be a success. The Enforcement Directorate, ED, is conducting an investigation in the case of the Guard Technologies Private Limited and others and is carrying out searches under the provisions of Foreign Exchange Management Act at premises belonging to 14 individuals and entities. In its statement, the ED said the investigation was initiated on the basis of information received that the company, the Guard Technologies, has been collecting funds from individuals through payment aggregators for online gaming activities. The bilateral talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. In his opening remarks, President Xi called for China and the US to be partners, not rivals. In his opening remarks, US President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. In IPL cricket, Punjab Kings will take on Mumbai Indians in Dharamshala this evening at 7:30 p.m. Yesterday, Royal Challengers Bengaluru defeated Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्तबानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुनक्कदा तब्दीली हिंद के नवे साल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे पास 7 मेट्रो शहर है। हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमनो अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वजीर आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और जरई तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अजला में बैक वक्त तरक्की हो रही है।
2: भारत का पहला MRO वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चलन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये।
1: गाजियाबाद में मुनक्कदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज NDRF की खिदमत के लिए जो अलामत दी गई है वो NDRF के साथ SDRF पंचायत से लेकर रियासत तक पूरी रियासती मशीनरी, NCC, NSS और हजारों की तादाद में खिदमत में लगे हुए लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि NDRF के जवानों को देखकर लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मरकजी काबिना ने 2026-27 के लिए मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम से कम सहारा कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने

0: नई दिल्ली में काबिनेट की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खरीफ की फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कम अज कम सहारा कीमत में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और जरई तनु की हौसला अफजाई होगी बल्कि खुशहाल किसान मजबूत हिंदुस्तान के अज्म को भी तकवीत मिलेगी। रियासत भर के किसानों ने खरीफ के फसलों के लिए एमएसपी में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। मगरबी एशियाई तनाजा से पैदा होने वाले तनाई के आलमी बुहरान के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने ईंधन की बचत के इकदाम को तेज कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अलामती कीमतों में इजाफे की वजह से हालिया घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले के साइज में नुमाया कमी की। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने काफिले के साइज नेस्ट से कम कर दिया है। इस तनाजुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से वजीर आजम की कॉल में शामिल होने की अपील की। वजीर आला ने उन पर जोर कि वो ईंधन की खपत को कम करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक आला सतही मीटिंग में हिदायत दी कि वजीर आला और वुजरा वगैरह के बेड़े में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। दरअसल असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने असेंबली की पार्लिमानी कमेटियों के पहले से तयशुदा तमाम मुतालती दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी तौसी शुदा काबिना की पहली मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने किफायत शारी तवानाई के तहफुज और जिम्मेदाराना वर्क कल्चर को फरोग देने के लिए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नजर ईंधन की बचत न सिर्फ एक मुआशी जरूरत है बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। वजीर आला ने हिदायत दी कि सेक्रेटरेट और डायरेक्टरेट में एयर कंडीशनर के दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रखा जाए, कुदरती रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बिजली का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जाए। डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर के इजाफे का ऐलान किया। तरमीम शुदा कीमतें आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गुजश्ता 24 घंटों में बारिश आंधी और बिजली गिरने के हादसात में तकरीबन 89 अफराद हलाक हो गए। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कल 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नतायज का ऐलान किया। तलबा सरकारी वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर दर्ज करके अपने नतायज दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
2: आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑनियन मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, समय हो चला है महिला श्रोताओं के कार्यक्रम घर संसार का, तो सुनते हैं कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में और मैं आपकी सखी दिव्या। सखियों, कभी आपने सुबह सुबह अपने आंगन में रखी किसी पौधे को ध्यान से देखा है? उसकी हरी पत्तियाँ, ताज़ी हवा और मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू मन को शांति देती है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, क्या आने वाली पीढ़ियाँ भी इस ताजगी को महसूस कर पाएंगी? क्या हमारे बच्चे भी खुली हवा में उतनी ही सहज सांस ले पाएंगे जितनी हमने ली? आज हरित जीवन शैली यानी ग्रीन लाइफस्टाइल केवल एक फैशन या अभियान नहीं रह गया, ये हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य की ज़रूरत बन चुका है। और जब बात परिवार की हो तो सबसे पहले तस्वीर जो सामने आती है वो होती है

माँ की। एक माँ जो घर के बजट भी संभालती है, रसोई भी संभालती है और बच्चों को संस्कार भी देती है। आपने ध्यान दिया होगा, घर में अक्सर माँ ही कहती है, बेटा खाना उतना ही लेना जितना खा सको, पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दो, बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना। शायद उस समय बच्चों को ये बातें छोटी लगें, लेकिन सच तो ये है कि ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर धरती को बचाने का बड़ा काम करती हैं। बहनों, हर जीवन शैली की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती, उसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। जब हम रसोई के बचे हुए कचरे से खाद बनाते हैं, जब प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले अपनाते हैं, जब बच्चों को पौधों में पानी डालना सिखाते हैं, तब हम सिर्फ घर नहीं संभाल रहे होते, हम आने वाले कल को संवार रहे होते हैं। याद कीजिए, हमारी दादी नानी के समय में चीज़ों को कितना संतुलित उपयोग होता था। पुरानी साड़ी से थैले बन जाते थे, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, त्योहारों में प्राकृतिक सजावट होती थी। तब शायद हरित जीवन शैली शब्द नहीं था, लेकिन जीवन पूरी तरह प्रकृति के करीब था। आज आधुनिकता की तेज़ रफ्तार में हम सुविधा तो पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और इसका सबसे असर जो पड़ रहा है वो हमारे परिवार पर ही पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी, बीमारियां, प्रदूषण और बच्चों का प्रकृति से कटाव। लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलाव अभी भी संभव है, और इस बदलाव की शुरुआत घर की महिलाएं सबसे बेहतर तरीके से कर सकती हैं। सुबह की चाय के साथ अगर बालकनी में दो पौधे लगा दिए जाएं, रसोई में पानी का कम से कम अपव्यय हो, बच्चों को जन्मदिन पर खिलौनों के साथ पौधे भी उपहार में दिए जाएं, तो यकीन मानिए धीरे धीरे पूरा परिवार प्रकृति से जुड़ने लगेगा। और सच कहें तो हरियाली केवल बाहर के पेड़ों में नहीं होती, हरियाली रिश्तों में भी होती है। जब परिवार साथ बैठकर प्रकृति की चिंता करता है तो बच्चों में संवेदनशीलता आती है और घर में अपनापन बढ़ता है। बहनों, आज समय हमसे यही कह रहा है कि धरती केवल उपयोग के लिए नहीं है, उसका संरक्षण करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर धरती स्वस्थ रहेगी तभी हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। एक पौधा केवल पेड़ नहीं बनता, वो आने वाली पीढ़ियों की सांस भी बनता है। तो आइए आज से हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने घर को, अपने परिवार को और अपनी धरती को थोड़ा हरा भरा बनाएं। सखियों, अभी जैसा हमने कहा कि माँ जो होती है ना, वो हर चीज़ का ध्यान रखती है, लेकिन क्या सिर्फ माँ की जिम्मेदारी हर चीज़ का ध्यान रखना? सखियों, आप में से भी कई सखियाँ ऐसी हैं जो माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, बहू हैं, सास भी हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए? ऐसा नहीं होता कि घर में कोई भी ज़रूरी चीज़ जो करनी है उसमें सबका तालमेल हो, तभी घर घर जैसा लगेगा और सब खुशी खुशी रहेंगे? ये बात मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी, या कहानी समझ लीजिए। एक दिन झिलमिल ना अपने स्कूल से लौट कर आई। उसने माँ से पूछा, माँ खाने में क्या बना है? माँ ने बोला, लौकी बनी है और आलू गोभी। इस पर झिलमिल ने बोला, माँ क्या आप रोज़ रोज़ ये लौकी और आलू गोभी बना देती हैं, दोनों ही सब्जियाँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक बार को आलू गोभी तो मैं फिर भी खा लूँगी, लेकिन लौकी लौकी नहीं खा पाऊँगी। इस बात को सुनकर माँ का मन थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन माँ ने तब कुछ नहीं कहा। फिर माँ ने उससे बोला, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारी पसंद का खाना नहीं बना, तुम ये बताओ कि तुम शाम को क्या खाओगी? तो झिलमिल ने सोचा और बोला कि शाम को छोले चावल खा लेंगे। माँ ने बोला, छोले तो गलाने पड़ते हैं और उसके लिए कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं, अभी तो समय नहीं है, कुछ और बताओ। उसने कहा, तो राजमा? माँ ने कहा, उसमें भी उतना ही समय लगता है। झिलमिल बोलती रही, माँ ने बताया किसी ना किसी सब्जी को बनने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ समय भी लगता है, तब जाके खाना बनता है। आखिर में बात कढ़ी चावल पर टिकी कि कढ़ी चावल बनेगा जिसके लिए दही भी बाज़ार से आएगा। रोज़ रोज़ होने वाली चीज़ें जैसे खाना बनाने तक में भी तालमेल की ज़रूरत होती है, जिससे रोज़ खाना ऐसा बने जिसमें कुछ आपकी पसंद का हो और कुछ बच्चों की पसंद का। तो इतनी छोटी सी बात के लिए भी ज़रूरी है कि परिवार में तालमेल हो। तो घर चलाने के लिए ज़रूरी है कि माता पिता, बच्चे और घर के सभी लोग तालमेल बना कर रखें, तभी घर घर जैसा लगता है। सब कुछ एक इंसान पर छोड़ देना दबाव बनाता है। सखियों, इसलिए ज़रूरी है कि आप काम बांटना सीखें, तभी ज़िंदगी सुगम रहेगी और सबके घर के प्रति जिम्मेदारी रहेगी और घर सकुशल चलेगा और प्यार भी बना रहेगा, जो कि बेहद ज़रूरी है। और इस प्यार का एहसास कराने

सखियों, अब वो महीना आ चुका है जब बच्चे जो है ना वो घर पर रहकर मस्ती करते हैं, पर क्या सारी छुट्टियां मस्ती में बिताना सही है? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। छुट्टियों में ना बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास

0: कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं अनुराधा तुली की वार्ता, गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग।
1: बहनों, आप हम सब जहाँ एक गृहिणी हैं वहाँ माँ भी हैं। बच्चों का लालन पालन एक चुनौती से कम नहीं। छुट्टियाँ शुरू होते ही हमारी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। बहनों, जहाँ गर्मी की छुट्टी का बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वही ये छुट्टियाँ हम बहनों के लिए धैर्य की परीक्षा से कम नहीं होती। सारा दिन बच्चों की धमा चौंकड़ी और खाने पीने की नई नई फरमाइशें। ऐसे में बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में जितना व्यस्त रखा जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए इन गर्मी की छुट्टियों में उन्हें उनकी रुचि के अनुसार हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवाई जा सकती हैं। तब वे व्यस्त भी रहेंगे और उनमें रचनात्मकता का विकास भी होगा। बहनों, ज़्यादातर बच्चे गर्मी की छुट्टियों में सारा समय टीवी पर कार्टून देखकर या फिर फोन व लैपटॉप पर वीडियो गेम्स खेलकर बिताते हैं। खासकर 4 से 14 वर्ष के बच्चों में वीडियो गेम्स का क्रेज इस कदर पाया गया है कि उन्हें घर से बाहर खुले मैदान व बगीचे में खेलना बेहद कष्टदायी लगता है। लगातार टीवी, कंप्यूटर व फोन पर गेम खेलकर समय बिताने से बच्चा ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो सकता है। बच्चे का संपूर्ण विकास उसकी शारीरिक एवं मानसिक सक्रियता पर ही निर्भर करता है। जब बच्चे शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर सक्रिय रहते हैं, तब वे पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस प्रकार रोचक तरीके से बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान उनकी जानकारी बढ़ाने वाले खेल खिलौनों में व्यस्त रखती हैं और उसे रचनात्मक तरीके से कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। बहनों, छुट्टियों में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे का पढ़ाई से संपर्क न छूटने पाए। पढ़ाई को दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं। उसे पास की किसी लाइब्रेरी में लेकर जाएं एवं रुचि अनुसार किताबों का चयन कर उसकी क्षमता को विकसित करें। यदि आपके बच्चे को टीवी का अधिक शौक है, उसे विभिन्न चैनलों पर दिखाए जाने वाले एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाएं। बच्चों को अंग्रेजी कार्टून आदि देखने के लिए भी प्रेरित करें, जिससे अंग्रेजी भाषा पर उसकी पकड़ भी मजबूत होगी। बहनों, इसके साथ साथ बच्चों के दोस्तों को बुलाकर एक छोटी सी डांस पार्टी का इंतजाम करें। इस पार्टी में आप शरबत और कुछ स्नैक्स आदि भी रख सकती हैं। बच्चों की पसंद का गाना बजाएं और उन्हें डांस पार्टी का मजा लेने दें। इससे मौज मस्ती भी हो जाएगी और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। बहनों, गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर बच्चे किताब को हाथ नहीं लगाना चाहते। वे मानकर चलते हैं कि छुट्टियों में भला पढ़ाई का क्या काम। ऐसे में आप कंप्यूटर पर अलग अलग तरीके से नई नई चीजें सिखाकर बच्चे की पढ़ाई का प्रभाव बनाए रख सकती हैं, जैसे इंटरनेट पर मैथमेटिकल पजल्स, साइंस ट्यूटोरियल इत्यादि। यदि आप गार्डन में हैं तो फूलों, पेड़ों की संरचना, उनके भागों आदि के बारे में बताएं। किचन में हैं तो उसे खाने की अलग अलग वस्तुओं से शरीर को मिलने वाले पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी दें और किस खाद्य पदार्थ के सेवन से क्या लाभ मिलता है यह भी बताएं। हम पानी को कैसे प्राप्त करते हैं, उसका चक्र कैसा होता है आदि जानकारी उसे बातों ही बातों में दें। अगर आप रात में कहीं बाहर हैं तो आकाशगंगा, तारों तथा पृथ्वी के चक्र आदि के बारे में बच्चों को बताएं। यही सब चीजें जब वह अपने पाठ्यक्रम में पाएगा तो उस विषय को आसानी से समझ सकेगा और स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। बहनों, छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों को कहानियां लिखने की जिम्मेदारी दें और अच्छी कहानी लिखने पर इनाम देने का वादा भी करें। इस तरह एक तरफ तो बच्चों की लेखन शैली व भाषा में सुधार होगा, वहीं दूसरी तरफ उसमें भावनाओं को व्यक्त करने की कला भी विकसित होगी। कहानियों के जरिए कई बार बच्चों के मन का डर या कोई ऐसी कमजोरी सामने आ सकती है और आप समय रहते ही उसका समाधान भी कर सकती हैं। छुट्टियों में बच्चों को किसी नज़दीकी पार्क या गार्डन में ज़रूर लेकर जाएं। पार्क में उन्हें मिट्टी, बॉल व अन्य झूलों से खेलने दें। यदि बच्चा सुबह जाने से कतराए तो शाम में उसे पार्क लेकर ज़रूर जाएं। उन्हें खेलने के लिए रस्सी, हुला हुप व अन्य आउटडोर खेल दें। साइकिलिंग व तैराकी आदि को भी उसकी दिनचर्या में शामिल करें। बहनों, बागवानी से हर किसी को खुशी मिलती है। इसके माध्यम से आप बच्चे को विज्ञान व प्रकृति से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। जब बच्चा रोज अपने लगाए हुए पौधों को बड़ा होता देखेगा तो वह जीवन के बहुत अहम सबक भी खुद ही सीख जाएगा। बच्चे के हाथ से कुछ फलदार पौधे भी लगवाएं ताकि जब उसमें फल आए तो वह अपने प्रयास के परिणाम को अनुभव कर सके। धीरे धीरे बागवानी उसका शौक बन जाएगा। वह पर्यावरण को

0: हरा भरा रखने का महत्व भी समझ लेगा। बहनों, यदि छुट्टियों में आपको कहीं बाहर घूमने जाने की योजना है तो उस दौरान बच्चे को एक मज़ेदार एक्टिविटी पूरा करने की जिम्मेदारी दें। बच्चों को सफर के दौरान एक पिक्चर बुक बनाने के लिए कहें। इस तरह घूमते वक्त बच्चा उन लम्हों को कैमरे में कैद करने में व्यस्त रहेगा और लौटकर घर आने के बाद वह एक सप्ताह तक अपने ट्रैवल की यादों को संजोने में व्यस्त रहेगा। रोजमर्रा के कामों में थोड़ी थोड़ी मौज मस्ती को शामिल करने से आप अपने बच्चे की छुट्टी को मज़ेदार बना सकती हैं। इसके लिए चलते फिरते सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जा सकते हैं। अंताक्षरी भी एक अच्छा विकल्प है। ऐसा करने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। बहनों, बच्चों की छुट्टियों को उन्हें जड़ों से जोड़ने के मौके के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा करने के लिए खाली वक्त में कामकाजी महिलाएं बच्चों को दादा नानी के किस्से सुना सकती हैं। अपने बचपन की किस्से कहानियां भी उन्हें रोमांचित करेंगी। इतना ही नहीं, बच्चों को इतिहास और पौराणिक कथाएं सुनाने और पढ़ने में भी व्यस्त किया जा सकता है। समर कैंप कामकाजी माओं के लिए बच्चों को व्यस्त रखने का एक अच्छा विकल्प है। बच्चे की हॉबी के मुताबिक आप बच्चे को डे केयर समर कैंप में भेज सकती हैं। पर हाँ, समर कैंप का चुनाव करते वक्त थोड़ी सी मुस्तैदी भी ज़रूरत है। वहाँ बच्चे की सुरक्षा को अनदेखा ना करें। समय समय पर बच्चे से कैंप की गतिविधियों के बारे में पूछना ना भूलें। बहनों, बच्चों को जिम्मेदार बनाना हर माँ की ख्वाहिश होती है। इन छुट्टियों में इस ख्वाहिश को पूरा करने की और आप कदम बढ़ा सकती हैं। बच्चों को उसकी उम्र के मुताबिक काम दीजिए और काम पूरा होने पर पुरस्कार। ऐसा करने से बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास आएगा, साथ ही वह व्यस्त भी रहेगा। बहनों, छुट्टियों में पढ़ाई लिखाई का टेंशन नहीं होता। ऐसे में अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी कमियों और अच्छाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। इस कार्य में स्वयं के अलावा मित्रों, गुरुजनों एवं परिवारजनों की मदद ले सकते हैं। छुट्टियों का उपयोग व्यक्तित्व विकास के लिए किया जा सकता है। छुट्टियां आपके परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए एक बढ़िया समय है। यह आपके शौक और जुनून को पूरा करने का एक मौका है। अलग अलग अवकाशों पर अलग अलग योजना बनाकर और उसमें से ज्यादातर योजनाओं को उसी अनुरूप सफल बनाना एक अच्छा विचार है। प्रतिस्पर्धा के आधुनिक युग में तो समय की महत्ता और भी बढ़ गई है। आज समय गंवाने का अर्थ है प्रगति की राह में स्वयं को पीछे धकेलना। बहनों, इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग आप ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स को पूरा करने में भी कर सकती हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स नॉलेज और स्किल को बढ़ाते ही हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करते हैं। गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग व्यक्तित्व विकास के लिए भी किया जा सकता है। अच्छे भविष्य के लिए अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ जरूरी है। अंग्रेजी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, तो इस झिझक को तोड़ने का आसान तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना। इसके अलावा आप अपने शौक के अनुसार एरोबिक्स, स्केटिंग, भांगड़ा, संगीत, कोरियोग्राफी, मोमबत्ती बनाना, क्ले मॉडलिंग, कढ़ाई करना, फैब्रिक पेंटिंग, योग जैसे कई कोर्सेज में भाग ले सकती हैं और गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग सीखकर एवं सिखाकर कर सकती हैं।
1: तो सखियों, इससे हमने सीखा कि हम गर्मियों की छुट्टियों का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों पूरी तरीके से हो। तो सखियों, इसी के साथ हम लेते हैं एक विराम और मिलते हैं अंतराल के उस पार।

सखियों, फिर से स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम घर संसार में। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आजकल हम में से कई लोगों की कलाई पर सजी रहती है, स्मार्ट वॉच। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ समय देखने का ज़रिया नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है? दोस्तों, सुबह उठते ही हम जल्दी में होते हैं, चाय बनानी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस के लिए तैयार होना है। इस भागदौड़ में सेहत का ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ स्मार्ट वॉच काम आती है। ये आपको पूरे दिन याद दिलाती है कि कब पानी पीना है, कब थोड़ा टहल लेना है और कब बैठे बैठे काम करने से ब्रेक लेना है। इसका हार्ट रेट मॉनिटर आपको बताता है कि आपका दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा है, फिर चाहे वो तनाव के कारण हो या एक्सरसाइज के दौरान। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बड़ा उपयोग है। हमें

सेहत के प्रति जागरूक रखना। कल्पना कीजिए, आप दिन में बस 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखते हैं। ये वॉच आपको बताएगी कि शाम तक आपने कितने कदम चल चुके हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ा बदलाव लाती हैं। और जब बात खेलकूद या फिर वर्कआउट की आती है, तो स्मार्ट वॉच आपकी निजी ट्रेनर बन जाती है। चाहे आप दौड़ रहे हों, साइकिल चला रहे हों या स्विमिंग कर रहे हों, ये आपकी दूरी, स्पीड और कैलोरी बर्न हर चीज़ का हिसाब रखती है। आपको पता है, कई मॉडल्स आपकी नींद के पैटर्न को भी ट्रैक करते हैं, यानी रात में कितनी नींद आई, कितनी बार आप जगे, ये सब पता चलता है। फिर सुबह एक रिपोर्ट मिलती है कि नींद अच्छी आई या फिर थोड़ी कम आई। इससे आप अगली रात अपनी आदतों में सुधार ला सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्मार्ट वॉच सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप रात के समय दौड़ने जाते हैं, तो इसमें एक LED लाइट होती है जो आपको रास्ता दिखा सकती है। और अगर कभी मुसीबत में हो, तो कई वॉचेस में एक SOS फीचर भी होता है। बस एक बटन दबाइए और आपकी लोकेशन आपके घर वालों या दोस्तों के पास पहुंच जाएगी। ये खासकर महिलाओं और बुजुर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब सोचिए, क्या सिर्फ समय देखने के लिए आप ये सब चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट वॉच एक साथी है जो आपको प्रेरित करता है, ट्रैक करता है और सुरक्षित रखता है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुशासन लाती है। पहले हम कहते थे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब वॉच कहती है, आज ही से शुरू कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सखियों, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है, तो आप इसके बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि ये गैजेट नहीं बल्कि आपकी सेहत और सुरक्षा की एक छोटी सी गारंटी है। और अगर हाँ, आपके पास पहले से स्मार्ट वॉच है, तो आप इसके फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए, हो सकता है वे आपको कुछ नया सिखाए। तो चलिए, आज से हम अपनी इस छोटी सी कलाई की सहेली को अपने दिन का हिस्सा बनाते हैं, सेहतमंद रहते हैं। और हाँ, पानी पीना मत भूलिए, आपकी वॉच शायद इसके बारे में आपको याद दिला रही होगी। सखियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर, जो है होम डेकोर। होम डेकोर में हम बात करेंगे फॉल सीलिंग के बारे में, जिससे हम अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। घर को सजाना तो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फॉल सीलिंग थोड़े कम खर्च और ज़्यादा गंदगी ना हो, इससे बचाने के लिए बेहद अच्छा उपाय है। फॉल सीलिंग क्या होती है? ये एक सीलिंग होती है जो आपके कमरे की मुख्य छत के नीचे लगाई जाती है। ये एक सेकेंडरी सीलिंग का काम करती है। इसके कई फायदे हैं। ये सिर्फ एक शोपीस नहीं, ये आपको कई चीज़ों से बचाती भी है। आपके घर की सादी छत को फॉल सीलिंग एक कलाकृति बना देती है। LED लाइट्स और कोव लाइटिंग के साथ ये कमरे को एक भव्य लुक देती है। गर्मी में भी राहत देती है। गर्मी में ये एक्स्ट्रा सीलिंग जो होती है, वो एक इंसुलेटर का काम करती है, जिससे कमरा ठंडा रहता है और AC का बिल भी कम आता है। दूसरा, ये साउंड प्रूफिंग का काम भी करती है। अगर आपके घर में ज़्यादा आवाज़ आती है, तो ये उसमें भी आपको सहायता करती है। घर में अगर बिजली के तार, AC की पाइप, नेटवर्क केबल, ये सब फॉल सीलिंग के अंदर छिपा दिए जाते हैं, जिससे कमरा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरा घर इस लायक है कि इसमें फॉल सीलिंग लगाई जाए? फॉल सीलिंग हर घर में लगाई जा सकती है। अगर आप नया घर ले रहे हैं, तो बिल्डर से घर लेने के बाद फॉल सीलिंग लगवाना सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे LED और पंखे की फिटिंग पहले से प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पुराना घर है और आप इसमें रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं, तो भी आप फॉल सीलिंग अपने घर में लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, दीवारें और प्लास्टर अच्छी हालत में हो। बड़ा फ्लैट हो या छोटे कमरे, हर जगह फॉल सीलिंग लगाई जा सकती है। अगर छोटे कमरे हैं, तो हल्के रंग की सादी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बड़े कमरे हैं, तो आप डिज़ाइनर ग्रेड या मल्टी लेवल फॉल सीलिंग ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, फॉल सीलिंग तो अच्छा तरीका है अपने घर को सुंदर बनाने का, लेकिन इसमें कितना बजट आएगा? आप साधारण POP की फॉल सीलिंग लेते हैं, तो प्रति वर्ग 110 से 160 प्रति वर्ग फुट ले सकते हैं। और अगर आप जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग लेते हैं, तो इसमें 90 से 110 प्रति वर्ग फुट फॉल सीलिंग का खर्च आएगा, और फिनिशिंग के लिए अलग से। और अगर आप डिज़ाइनर या मल्टी लेवल फॉल सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो 250 से 300 प्रति वर्ग फुट तक का खर्चा आ सकता है। इसका इस्तेमाल आप लिविंग रूम में कर सकते हैं, बेडरूम में कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं और डाइनिंग एरिया में। बस किचन में एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि फॉल सीलिंग खराब हो सकती है, इसलिए आपके यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए।

अभी हमारी महिला श्रोता सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। श्रोताओं, अब समय हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई चंद गजलें।

राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई गजलों का आनंद अभी आप ले रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके उपरांत दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the U.S. to be partners, not rivals. In his opening remarks, U.S. President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The U.S. President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The U.S. President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7th seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last eight. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last eight. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision, SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नव नियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

0: रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ AIR News हिंदी को फॉलो

0: शुरू कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित अजय पोहनकर का गायन। पहले सुनते हैं सिंध भैरवी।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पंडित अजय पोहनकर को। अभी आप सुन रहे थे इनका गाया राग सिंधु भैरवी। अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग मिश्रपा।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर को। इसके साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, अब समय हो चला है पुरानी फिल्मों से गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

एक गली मुस्काई इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा है ओपी नैयर ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना मेरे सनम फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम था अनपढ़। राजा मेहंदी अली खान की रचना को संगीत से संवारा था मदन मोहन ने। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म पाकीज़ा से। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है कमल अमरोही ने, संगीत से सवारा है गुलाम मोहम्मद ने।

ताजमहल फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी को। साहिर लुधियानवी की रचना को संगीत से संवारा था रोशन ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मुगले आजम फिल्म का गीत, शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीत रचना नौशाद की।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना उमराव चांद फिल्म का गीत। शहरयार की रचना को संगीतबद्ध किया था खय्याम ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में बाजार फिल्म का गीत। शब्द रचना मीर ताकी मीर की, संगीत रचना खय्याम की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है इजाजत। गुलजार के लिखे गीत को संगीत से संवारा है आर डी वर्मन ने।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन की आखिरी प्रस्तुति में अभी आपने सुना इजाजत फिल्म का गीत। गीत को गाया था आशा भोसले ने, गीत लिखा था गुलजार ने, संगीतबद्ध किया था आरडी वर्मन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। समय है रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में ये सुनते हैं भेंट वार्ता डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। वार्ताकार डॉक्टर बी के अग्रवाल से नीरज जैन की बातचीत।
1: रेडियो डॉक्टर मित्रों, इस कार्यक्रम में आज फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बी के अग्रवाल जो कि वरिष्ठ फिजिशियन हैं, और आज हमारी बातचीत का विषय है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कारण, लक्षण और उपचार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और इस मौसम में अक्सर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की शिकायत हो जाती है, लोग परेशान होते हैं। तो आज हमारी बातचीत में हमने इसी विषय को चुना है। अपने स्टूडियो में जो डॉक्टर बी के अग्रवाल जी उपस्थित हैं उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर अग्रवाल जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो इस मौसम में विशेष रूप से कौन कौन सी परेशानियां होती हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से संबंधित, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ये बिल्कुल सही वक्त है हमारे इस प्रोग्राम का। अब जो पानी जिस तरीके से जैसे ही बरसना शुरू होता है, वातावरण का टेम्परेचर कम होता है, जैसा कि हम पिछले 1996 यानी 1996 से देख रहे हैं कि कई दशकों से सिर्फ एक भयानक बीमारी जो कि जिसको हम डेंगू फीवर बोलते हैं, जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, तो ये जो डेंगू फीवर है ये दिन पे दिन, साल पे साल ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक तो इस मौसम में इस टाइप की बीमारी होती है जैसे डेंगू। दूसरा, जहां तक चिकनगुनिया का सवाल है, ये भी पनपता है और ये लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3-4 महीने हैं ये बड़े घातक हैं इसके।
1: अच्छा,
2: क्यों? क्योंकि इसका जो वायरस होता है वो इसी नमी में बहुत तेजी से पनपता है, चिकनगुनिया, डेंगू। अब जहां तक मलेरिया की बात है, मलेरिया भी इसी उसमें पानी की वजह से होता है, जैसे ही मच्छर पनपता है और मलेरिया की इंसिडेंस भी बढ़ जाती है। तो ये जो 3-4 महीने हैं जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं वो मच्छरों के द्वारा फैलती हैं, वो बहुत बढ़ जाती
1: है। यानी कि ये तीनों बीमारियां जो है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये मच्छरों के द्वारा फैलती हैं।
2: जी जी। अच्छा। ये जो डेंगू है
1: जी,
2: ये डेंगू एक वायरल डिजीज है।
1: अच्छा।
2: एक अरबो वायरस फैमिली होती है उसका, ये आरएनए वायरस है। ये जो आरएनए वायरस है एक तरीके का मच्छर होता है, उसको बोलते हैं ईडस।
1: जी।
2: ईडस मच्छर जब किसी भी इंसान को काटेगा तो उस कीटाणु का

0: लार्वा वो जब दूसरे में आएगा तो वो मैन टू मैन ट्रांसमिशन है।
1: अच्छा,
0: मतलब
1: अच्छा।
0: एक आदमी को मच्छर ने काटा और उसको दूसरे ने काटा जिसमें बीमारी है, तो वो दूसरे को फैलाएगा।
1: अच्छा, अच्छा
0: यानी
1: अच्छा।
0: कि उस मच्छर के द्वारा वो वायरस फैलता है। तो अच्छा। ये डेंगू है, सेम ऐसी चिकनगुनिया
1: जी,
0: उसका भी इसी तरीके से फैलाव होता है। मच्छर जो मलेरिया का है वो दूसरा होता है,
1: अच्छा अच्छा
0: तो वो एनाफिलीज बोलते हैं।
1: जी,
0: ये जितनी भी मादा जो मच्छर होते हैं उनके द्वारा ये फैलता है। एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन के टाइम पे काटता है,
1: अच्छा
0: साफ पानी में पनपता है, और मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदे पानी में एनाफिलीज जो होता है वो पनपता है।
1: जी,
0: तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, मलेरिया का मच्छर नाइट में भी काट सकता है, दिन में भी काट सकता है, लेकिन डेंगू का मच्छर वो सिर्फ दिन में काटता है।
1: अच्छा अच्छा
0: तो ये
1: अच्छा
0: इसमें दो में डिफरेंस है।
1: अच्छा अच्छा तो यानी कि हमको सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मच्छरों से बचाव रखते हैं
0: जी जी
1: तो इन
0: बिल्कुल
1: परेशानी
0: बिल्कुल
1: से बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल, आज के प्रोग्राम का आप यही सत्य बस सिर्फ मान लीजिए कि अगर हमने मच्छरों से जितना ज़्यादा बचाव कर लिया, चाहे
1: जी
0: मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, चाहे मच्छरदानी यूज़ करें, चाहे हम मच्छर को न पनप दें, मतलब उसका जन्म ही नहीं हो,
1: जी जी
0: कैसे हम पानी को नहीं भरने दें
1: जी
0: अपने आसपास, जैसे कि मैंने बताया कि डेंगू का मच्छर है साफ पानी में पनपता है,
1: जी
0: तो हम पानी नहीं भरने दें।
1: जी जी जी
0: स्पेशली इस मौसम में अब लोग अपने यहाँ कूलर चलाते हैं,
1: जी
0: पानी नहीं भरें, कोशिश करें कि पानी का जमाव नहीं हो घर में,
1: जी जी
0: बाहर जो पानी पड़ रहा है आपके घर के बाहर जो साफ पानी भर जाता है उसको नहीं भरने दें। तो
1: जी
0: जितना भी हम पानी को नहीं जमा होने देंगे तो वो मच्छर नहीं पनपेगा।
1: अच्छा अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: अच्छा, प्लस दूसरा ये कि पानी जहाँ भर भी रहा है तो इस तरीके से कुछ भी यूज करें कि चाहे तो मिट्टी का तेल डाल के लेयर बना दें,
1: जी
0: चाहे कुछ और यूज करें, तो जिससे कि वो मच्छर का ब्रीडिंग ना हो,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: मच्छर भी तो 1 से 1,000 होते हैं ना,
1: जी हाँ
0: तो
1: जी हाँ
0: वो
1: जी
0: जो ब्रीडिंग होगी तो अगर नहीं होगी तो हमने रोक लिया।
1: जी
0: और ऐसा नहीं है कि ये हर साल होता है, हर साल नहीं होता।
1: अच्छा,
0: अगर अगर इसमें जरा भी कहीं पनपना शुरू हो जाता है, धीमे धीमे तेजी से इसकी ब्रीड बढ़ती है, तो अगर हम नहीं पनपने दे देंगे तो इससे बचेंगे।
1: यानी कि हमको पानी जमा नहीं होने देना
0: जी
1: है।
0: जी
1: और विशेष रूप से इन दिनों में जो हम लोग कूलर चलाते हैं तो कूलर में कोशिश करें कि हर दूसरे तीसरे दिन पानी बदला जाए, उसको पूरे कूलर को साफ करके पूरा सुखा कर तब पानी भरा जाए।
0: मैं तो यही कहूंगा कि इस टाइम इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि पानी के बिना कूलर चलाइए,
1: बिल्कुल
0: पानी भरने ही नहीं दे।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: अगर
1: अच्छा
0: हम पानी भरेंगे ही नहीं तो उसमें मच्छर कहां से पैदा होगा।
1: बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बात है
0: मेरा
1: आपकी।
0: तो अपना मैं तो अपना यही सजेशन दूंगा,
1: बिल्कुल
0: मेरी
1: बिल्कुल
0: अपनी मानना यह है कि इतनी ह्यूमिडिटी है आप सिर्फ हवा से काम चला सकते हैं,
1: जी
0: तो
1: हाँ जी
0: इसलिए
1: हाँ
0: यह
1: जी,
0: है कि इसमें कूलर में पानी का ना यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर
1: तो
0: है।
1: ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में, जैसे मलेरिया की बात करते हैं अगर हम पहले,
0: जी
1: तो क्या कारण और क्या कारण हो सकते हैं मलेरिया के?
0: देखिए, इसमें है क्या कि एक तो किसी इंसान को अगर मलेरिया होता है तो वो सिर्फ मच्छर के काटने से होता है,
1: जी
0: कोई दूसरा कारण होता ही नहीं है।
1: अच्छा
0: ये प्लाज्मोडियम, बस मलेरिया में क्या है कि मलेरिया की 4 वैरायटी होती हैं,
1: जी
0: जो इसका कीटाणु है, जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम बोलते हैं इस फैमिली को, वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, ये मेन है
1: अच्छा
0: दो। अब मुसीबत क्या है अपने हिंदुस्तान में या कहीं और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, कि जो हमारा ठीक मलेरिया है यानी खतरनाक नहीं है जो, उसको वाइवेक्स हम बोलते हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन जो फैल्सीपेरम पहले कम होता था वो फैल्सीपेरम मलेरिया आज के टाइम पे उसकी उतनी ही मात्रा हो गई जितना वाइवेक्स।
1: जी
0: वाइवेक्स को हम ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेनाइन मलेरिया, बेनाइन मतलब शांत वाला, ज्यादा
1: अच्छा
0: नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठंड करेगा, बुखार आएगा, दवाई ले लेंगे, दवाई भी कारगर होती है। लेकिन जो फैल्सीपेरम मलेरिया है, लक्षण का पता नहीं, कितना तेज बुखार करे, कितनी ब्लीडिंग करे, कितना प्लेटलेट को कम कर दे, कितना और भी बॉडी में लिवर, तिल्ली, लिवर को नुकसान पहुंचाए,
1: जी
0: ब्रेन फीवर हो जाता है उससे, मतलब सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं, वो
1: जी
0: भी उससे हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि जो फैल्सीपेरम मलेरिया के मरीज हैं वो काफी बढ़ गए हैं, ये एक
1: अच्छा,
0: चिंताजनक बात है।
1: निश्चित रूप से निश्चित रूप से।
0: फैल्सीपेरम मलेरिया पे जो हमारी आम क्लोरोक्विन दवाई होती है वो काम नहीं करती,
1: अच्छा
0: ये एक सबसे बड़ी विडंबना है इस मलेरिया के साथ। एक तरफ तो फैल्सीपेरम मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो हमारी आम दवाई क्लोरोक्विन काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में कई और बेटर मेडिसिन है वो उस फैल्सीपेरम मलेरिया पे काम करती हैं, तो तब जाके कहीं रोगी को हम ठीक कर पाते हैं।
1: यानी कहने का मतलब यह है कि मलेरिया को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको बुखार आ रहा है और आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है तो तुरंत अपने चिकित्सक से
0: जी
1: संपर्क
0: जी
1: करें।
0: बिल्कुल, किसी भी मलेरिया को कभी भी, किसी भी बुखार को
1: जी
0: कभी भी हल्के से ना लें, ओवर द काउंटर कोई ऐसी सिंपल मेडिसिन ना लें।

0: उसको बढ़ने ना दें शरीर में, अपने जो नजदीकी पढ़े लिखे चिकित्सक हैं आप उनको दिखाइए। आजकल हर चीज की बहुत कम पैसे में टेस्टिंग हो जाती है, जैसे सिंपल मलेरिया का पैरासाइट है जो सरकारी हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी है, वो डिस्पेंसरी पे टेस्ट होते हैं,
1: जी
0: मलेरिया का टेस्ट होता है। हमारी सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है मलेरिया पे, उसकी टेस्ट, तो उस प्रोग्राम के तहत मलेरिया की दवाई भी मिलती है और टेस्टिंग भी हो जाती है
1: जी अस्पताल जाकर या आपके आसपास में जो भी चिकित्सक
0: आसपास
1: हैं
0: में जो भी
1: उनसे
0: चिकित्सक
1: संपर्क
0: हैं
1: करके।
0: उनका, हाँ
1: जी
0: उसका
1: जी
0: उसका
1: जी
0: लाभ
1: जी
0: है।
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: अगर एक बार ये देख लिया
1: जी
0: चिकित्सक ने कि ये मलेरिया फैल्सिपरम है,
1: जी
0: वहां डिफरेंट दवाई है, ये मलेरिया वाइवेक्स है, ये जांच से ही पता लगेगा,
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल्कुल
0: अपना चिकित्सक के एक्सपीरियंस से।
1: जी
0: अब मुसीबत क्या है यहां पे, एक और मैं आपको बता दूं कि जो वाइवेक्स जिसको हम शांत मलेरिया कहते थे, वो शांत मलेरिया अब शांत मलेरिया नहीं है, वो भी अब डेंजरस टाइप का प्रेजेंटेशन हो गया उसका।
1: अच्छा
0: मतलब वो सिंपल वाइवेक्स मलेरिया भी खतरनाक मलेरिया हो गया, वो भी अपने एकदम रौद्र रूप में आ गया।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उसका इनिशियली अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो काफी कुछ बचाव मिलता है।
1: ये देखिए डॉक्टर साहब, हमारे पास इन बिटवीन एक फोन कॉल है और ये बेबर मैनपुरी से रामवीर सिंह हैं और ये कहते हैं कि आज के मौसम में आपने विषय चुना है वो बहुत ही उपयोगी है। और मेरे भतीजे को पिछले साल डेंगू हो गया था। पहले तो समझ में नहीं आया क्योंकि उसके सिर में और पेट में दर्द था। डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने कहा कि इसकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना है?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
1: जी
0: क्योंकि इस टाइम हमारी एक आम जनता, आप मान के चलिए आम जनता ही नहीं डॉक्टर भी,
1: जी
0: इस टाइम डेंगू के आने के भय की वजह से ही मतलब भयभीत है। हम लोग खुद डरे हुए हैं,
1: जी
0: डरे इसलिए हैं क्योंकि वायरल डिजीज है डेंगू का। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, जैसा इन्होंने कहा सर में दर्द,
1: जी
0: इनके बच्चे को डेंगू के 3 मेन लक्षण,
1: अच्छा
0: एक तो ये कि तेज बुखार किसी भी मेडिसिन से नहीं उतर रहा है,
1: जी
0: तेज शरीर में दर्द।
1: जी
0: तीसरा जो मेन लक्षण है उसका, वो है आंखों के पीछे और सर में दर्द।
1: अच्छा
0: आंखों के पीछे जो दर्द है वो एक आंखें लाल, आंखों के पीछे दर्द। खास बात यह है कि उसमें कहीं कोई बॉडी पे धब्बे रैशेस लाल लाल से छोटे छोटे चकत्ते से पड़ रहे हैं, या पेट में दर्द।
1: अच्छा
0: अब पेट में दर्द का ये डेंगू का ये सिम्टम है। डेंगू से क्या होता है कि एक तो ये बुखार, दूसरा जो डेंगू से शरीर की झिल्लियों के द्वारा फ्लूड रिसने लगता है,
1: अच्छा
0: यानी कि पेट में आंतों में फ्लूड रिसने लगा थोड़ा थोड़ा, फेफड़ों में इफ्यूजन बोलते हैं उसको, पानी आने लगा।
1: जी
0: ये जो लक्षण है ये और अपने सिम्टम पैदा करते हैं। फेफड़ों में पानी आने लगा, दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, पेट में पानी रिसने लगा, पेट में दर्द होने लगा, जैसा कि उन्होंने बताया।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: एक तो सर में दर्द और एक पेट में दर्द, बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। साथ में जब चेकअप कराया तो प्लेटलेट की मात्रा कम। अब ये तीनों लक्षण बिल्कुल डेंगू के हैं,
1: अच्छा
0: ये टिपिकल डेंगू है,
1: अच्छा अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: कि चिकनगुनिया में नहीं है। चिकनगुनिया में क्या है कि उसमें जोड़ों में दर्द होता है,
1: जी
0: बुखार है, जोड़ों में दर्द है, तो प्लेटलेट कम होती है। चलो हमने पहचान लिया कि जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पेन है, रैशेज हो रहे हैं, लाल लाल दाने निकल रहे हैं, चिकनगुनिया हो सकता है। लेकिन डेंगू में आंखों में जो लालपन और भयानक दर्द, पीछे बॉडी में बहुत दर्द, पैरों में बहुत दर्द, ये उसके लक्षण है। तो
1: जी
0: इनका बिल्कुल सही अनुमान है। एक तो मैंने ये बता दिया इसके माध्यम से कि लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसको पहचाने। दूसरा मलेरिया में क्या है, ठंड लगती है, टिपिकल पैटर्न होता है उसका, कुछ कुछ घंटों बाद तेजी से बुखार चढ़ता है, तेजी से उतर जाता है। तो अगर डेंगू के जो मैंने लक्षण बताए अगर ऐसा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब जहां तक आती है कि प्लेटलेट बढ़ाने का उपचार, जो
1: जी
0: इनका दूसरा सवाल था, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कोई भी मेडिसिन कारगर नहीं है। अगर कोई इंसान ये कहते हैं कि, कोई डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई हम प्लेटलेट बढ़ाने की दवाई दे रहे हैं, तो ये बहुत अधिक बहुत हद तक सत्य नहीं है। डेंगू वायरल डिजीज है, वायरस स्वतः ही अपने आप ही ठंडा होता है, स्वतः ही अपने आप ही शांत होता है।
1: जी
0: एक बात मैं बता दूं कि आज डेंगू के मच्छर ने काटा,
1: जी
0: 4 से लेके 10 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है,
1: अच्छा
0: तब 5वें दिन जाके इसके लक्षण आते हैं।
1: अच्छा यानी कि 4-5 दिन तक कुछ मालूम नहीं
0: कुछ नहीं
1: पड़ेगा।
0: होता, कोई
1: जी
0: प्रॉब्लम ही नहीं है, 5वें दिन जाके बुखार आना शुरू हुआ।
1: जी
0: अब 5वें दिन तेजी से बुखार आना शुरू हुआ तो 3-4 दिन बुखार की फेज चलती है,
1: जी हाँ
0: उसके बाद ये धीमे धीमे करके अपने आप ही शांत हो जाता है। तो कोई भी वायरल डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होती है, इसको बिगड़ने ना दें, पेन किलर नहीं लें। अगर थोड़ा बहुत प्लेटलेट की मात्रा कम है तो पेन किलर लेने से वो खतरा है, मुंह से ब्लड आने लगेगा,
1: अच्छा
0: गैस्ट्रिक अल्सर बन जाएंगे, लेटरिन के रास्ते ब्लड आने लगेगा, तो पेन किलर से बचें।
1: यानी कहने का मतलब यह है कि अपने आप कोई भी प्रयोग ना करें, कोई भी मेडिसिन न लें।
0: जी

0: विशेष रूप से, जो कि अक्सर हमारे यहाँ होता है
1: जी
0: कि
1: जी
0: गए
1: मैं
0: पास में
1: इसीलिए
0: गए
1: मैंने
0: किसी केमिस्ट से ले लिया,
1: जी
0: दवा ले ली, तो इससे बचें, बिल्कुल बचें।
1: जी
0: अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बुखार आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो जो भी आपके नज़दीक में जो चिकित्सक हैं उनसे आप परामर्श करें और उनकी राय के अनुसार दवा लें।
1: मैं एक इसमें बस जरा सा एडिशन, अगर तेज बुखार हो रहा है
0: जी
1: तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप पट्टी रखना शुरू कर दें,
0: जी
1: पैरों पे हाथों पे स्पंजिंग करें और सिंपल पैरासीटामोल टेबलेट,
0: जी
1: अगर बड़ा है तो 650 मिलीग्राम,
0: जी
1: अगर छोटा बच्चा है तो आधी गोली उसकी। तो
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: एक पैरासीटामोल एक ऐसी दवाई है जो कि आप दिन में 3-4 तक भी दे सकते हैं।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ये
0: जी
1: इसका, ये मैं अपने दर्शकों को, सुनने वालों को ये मैं
0: जी
1: बताना चाहूंगा कि पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और फोन कॉल है, और ये है कि चिकनगुनिया और डेंगू दोनों ही बीमारियां मच्छरों से होती हैं, तो
1: जी
0: दोनों में अंतर क्या है?
1: हाँ, मैंने ये बताया ना
0: ये
1: अभी।
0: राकेश सिंह है फिरोजाबाद से।
1: जी राकेश जी, देखिए अंतर सिर्फ इतना है कि डेंगू जितना भयानक है उतना चिकनगुनिया भयानक नहीं है।
0: जी
1: डेंगू, अगर हेमरेजिक डेंगू हो गया तो उसमें जानलेवा होता है, वो मृत्यु की संभावना अधिक होती है। चिकनगुनिया उतनी भयानक बीमारी नहीं है। नंबर दो, पहचानने के लिए मैंने बताया कि चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द अधिक होता है, उतना बुखार तो दोनों में लगभग बराबर होता है, प्लस दाने भी निकलते हैं। चिकनगुनिया में दाने कुछ ज्यादा निकलते हैं, डेंगू में दाने कुछ कम निकलते हैं।
0: जी
1: वायरल डिजीज है, दोनों अलग अलग टाइप का प्रेजेंटेशन है, लेकिन डेंगू का सीरियस प्रेजेंटेशन भी होता है जो कि
0: अच्छा
1: चिकनगुनिया में नहीं होता।
0: जी जी जी
1: चिकनगुनिया दुखी करता है लेकिन सीरियस प्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत साफ भाषा में दुखी करता है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, परेशान है, पता लगा 2 साल तक जोड़ों में दर्द हो रहा है। डेंगू अगर 5वां दिन निकल गया तो समझो ठीक हो गया, 5वें दिन के बाद अगर उसका कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ 4थे 5वें दिन, तो वो भयानक स्थिति तक जा सकता है, जिसको कि हम डेंगू डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। बीपी 50 रह गया,
0: अच्छा
1: 30 रह गया, एकदम शॉक में चला गया, ये चिकनगुनिया में नहीं होता। तो दोनों में ये लक्षण है मेन।
0: डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे हैं चिकनगुनिया के बारे में, और देखिए हमारे पास एक और फोन कॉल है। ये है भाई मनीष, शहीद नगर आगरा से, और ये कहते हैं कि मुझे पिछले साल अक्टूबर में चिकनगुनिया हुआ था, लेकिन आज भी मेरे हाथों के जोड़ों में दर्द होता है, क्या अभी भी मेरे अंदर चिकनगुनिया के लक्षण मौजूद हैं?
1: मैंने ये बताया था कि चिकनगुनिया का जो वायरस है
0: जी
1: वो वायरस, जैसे डेंगू का मैंने बताया कि फेफड़ों की झिल्ली से पानी रिस रहा है,
0: जी
1: पेट की झिल्ली से पानी रिस रहा है, ऐसे ही चिकनगुनिया में जो जोड़ों की झिल्लियाँ होती हैं, दो जॉइंट एक दूसरे के ऊपर चलेंगे तो बीच में कोई झिल्ली होगी ना,
0: जी
1: उस झिल्ली में हल्का सा इन्फ्लेमेशन कर देती है, सूजन।
0: अच्छा
1: उस झिल्ली में सूजन की वजह से उस चिकनगुनिया वाले मरीज को जोड़ों में दर्द रहता है।
0: जी
1: अब चिकनगुनिया का जो जॉइंट का जो दर्द है वो अक्सर हल्का फुल्का पेन किलर से करीब करीब 90% लोगों को स्वतः ही चला जाता है कुछ ही
0: जी
1: दिनों में,
0: जी
1: कुछ
0: जी जी
1: हफ्ते में।
0: जी
1: लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि ये चिकनगुनिया ऐसी तो बीमारी है नहीं जो 50 साल पर पुरानी है,
0: जी बिल्कुल
1: या अब इसका आउटब्रेक ज्यादा हो रहा है,
0: जी हाँ जी हाँ
1: तो अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जो जॉइंट पेन है ये किसी किसी को 2-2 3-3 साल तक भी रहता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हल्के फुल्के जो पेन की दवाइयाँ होती हैं उनको लेने से, प्लस कुछ ऐसी जॉइंट की ताकत की मेडिसिन होती हैं उनको लेने से ये काफ़ी कुछ आरामदायक होता है और स्वतः ही ठीक हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, देखिए हमारे पास एक और फोन कॉल है, और इसी से मिला जुला है, और ये कहते हैं कि क्या कुछ देशी दवा भी इसकी है, क्योंकि कई बार लोग राय देते हैं कि बकरी का दूध या पपीता
1: जी
0: या पपीते का जब इस तरह का ले लें तो उससे कुछ फायदा होता
1: हाँ,
0: है, आप क्या
1: ये
0: कहेंगे?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
0: जी
1: मैं इसमें दो जवाब दे रहा हूं।
0: जी
1: एक तो ये कि चिकनगुनिया का जो दर्द है,
0: जी
1: अगर आप डॉक्टर बी के अग्रवाल की बात मानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि चिकनगुनिया में दर्द के लिए देसी दवाइयां नहीं लेनी है,
0: अच्छा
1: किसी भी कीमत पे नहीं लेनी है।
0: जी
1: देसी दवाइयों का सेवन करने से, ज्यादातर उन दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं और वो आगे आपको डिपेंडेंसी बना देते हैं, आपकी उसमें आदत आ जाती है और उसके भयानक साइड इफेक्ट होते हैं, उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं, शुगर हो जाती है, जॉइंट वीक हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, शरीर फूल जाता है। तो ये सारा का सारा उन देसी दवाइयां, सो कॉल्ड देसी,
0: जी जी जी
1: होता
0: जी
1: उनमें स्टेरॉयड है उन दवाइयों में,
0: जी हाँ
1: मैं देसी जो अपनी पुराने वैद्यों की जो पिसी हुई मेडिसिन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मैं उन दवाइयों की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं वो मेडिसिन नहीं जानता,
0: जी
1: लेकिन जो मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग यूज करते हैं वो स्टेरॉइड्स की मेडिसिन यूज करते हैं, पेन किलर देते हैं, उसको नहीं लेनी है चिकनगुनिया में, नंबर
0: जी
1: एक। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि ये जो बकरी

0: का दूध और ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, पपीते के पत्ते, हाँ, प्लेटलेट के लिए ये देखा गया है कि आजकल पपीते के पत्ते के जूस की कैप्सूल आने लगे हैं,
1: अच्छा
0: उसके कैप्सूल भी एलोपैथिक मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं।
1: जी,
0: तो वो कुछ हद तक कीवी, बकरी का दूध, पपीते के पत्ते, तो इनमें ये कहा जाता है कि इनमें कुछ बोन को, प्लेटलेट को स्टिमुलेट करने वाले पदार्थ होते हैं,
1: अच्छा
0: तो उनसे कुछ हद तक प्लेटलेट ऊपर जाती है।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: जैसा कि मैंने बताया कि ये वायरल डिजीज है, स्वतः ही ठीक हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट की मात्रा स्वतः ही बढ़ने लगती है।
1: जी
0: आप
1: जी जी
0: बीमारी को ठीक करिए, अपने आप प्लेटलेट बढ़ने लगती है।
1: डॉक्टर साहब, एक और फोन कॉल है, ये रेवती लाल टूंडला से, और ये कहते हैं कि चिकनगुनिया के डॉक्टर बताते हैं कि जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से खून बाहर से हम चढ़ा देते हैं, तो क्या इस तरह से प्लेटलेट्स भी बाहर से मिल जाती हैं क्या?
0: शॉर्ट में मैं बता दूं,
1: जी
0: जैसा कि आपने पूछा है, ये मेरे ख्याल में अगली बार पूरा एक प्लेटलेट प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है,
1: जी
0: इसमें बहुत भ्रांतियां भी हैं।
1: जी
0: शॉर्ट में बता दूं कि प्लेटलेट की मात्रा हर वायरल बुखार में कम हो सकती है। जैसे मलेरिया में प्लेटलेट कम हो जाती है,
1: जी
0: जिसको हम थ्रम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, इस प्लेटलेट के कम होने। अब अगर मान के चलिए कि रेवतीलाल जी, कि आपके घर में किसी को या आपके जानने पहचानने को प्लेटलेट की मात्रा आई 50,000। नॉर्मल जो प्लेटलेट की संख्या होती है वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होती है।
1: जी
0: अब 50,000 प्लेटलेट आई, तो मेरे पास जो रोगी आते हैं वो, डॉक्टर साहब इसकी तो प्लेटें कम हो गई, प्लेटलेट तो पूरा बोल नहीं
1: जी
0: पाते,
1: जी जी
0: प्लेटें
1: जी
0: कम हो गई। तो वो जो प्लेटें कम हो गई, वो 50,000 को वो एकदम तेजी से परेशान होने लगते हैं।
1: जी हाँ
0: इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किताबें कहती हैं, मेरा अनुभव कहता है, जब तक कि प्लेटलेट की संख्या 10,000 से नीचे ना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: नंबर एक,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कोई भी प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता 10,000 से नीचे पे होती है।
1: जी
0: 10,000 से ऊपर अगर आपकी प्लेटलेट, मान लो 20,000 है, मान लो 25,000 है, अगर कोई ब्लड आने के, ब्लड रिसने के शरीर में लक्षण है, जैसे मुंह से खून आ रहा है, जैसे पेशाब के रास्ते से खून आ रहा है, जैसे लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है, तो वहां जहां ब्लड के सिम्टम है,
1: जी
0: जहां ब्लड प्रेशर कम है, जहां ऐसा लग रहा है कि हमारा मरीज हमें उसकी लाइफ को बचाना है, वहां पे तो आप प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उस 10,000 से ऊपर जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
1: वहां पे
0: मेरे
1: कुछ
0: कई मेरे पेशेंट ऐसे
1: जी जी
0: रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: प्लेटलेट आज 16,000 है, मैंने सिंपल ट्रीटमेंट लिख के उनको घर भेज दिया, तीसरे दिन आए, मैंने कहा अपनी प्लेटलेट कराते हुए ले आना, सिंपल पेशेंट की और मेरी दोनों की तसल्ली के लिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है,
1: जी जी
0: उनको
1: जी
0: कोई दिक्कत नहीं है, बुखार आया था वो भी ठीक हो गया, अब घबरा रहे हैं प्लेटलेट प्लेटलेट, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप 3 दिन बाद आएंगे, पता लगा प्लेटलेट हो गई 1,16,000, हैप्पी। कि
1: बिल्कुल
0: आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटलेट से, अब बहुत सारे लोग, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डराने का काम करते हैं, अरे आपकी प्लेटलेट तो 24,000 रहेगी, आपको भर्ती होना है और आपको तुरंत प्रॉब्लम है, तुरंत आप प्लेटलेट चढ़वाइए।
1: हाँ डॉक्टर साहब,
0: मैंने बता
1: आपकी
0: दिया
1: बात, डॉक्टर साहब आपकी बात
0: जी,
1: बिल्कुल सही है।
0: तो मेरा अपना मानना यह है कि जितने भी, ज्यादातर चिकित्सक गण अच्छे ही हैं,
1: जी जी
0: हाँ कुछ इधर उधर के जगह पे ऐसा सुनने को मिला है, तो बट मैं उनको यही कहूंगा कि ऐसा करने से उनको रोकना चाहिए। और दूसरा, आपको समझना चाहिए कि आपको जरूरत नहीं है, आप सेकंड ओपिनियन लो,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप
1: बिल्कुल
0: अपने जो दूसरे जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलो, आप उनसे
1: बिल्कुल
0: पूछो कि हाँ जरूरत है या नहीं है,
1: जी
0: अगर
1: जी जी
0: जरूरत है तो हो सकता है जरूरत भी हो।
1: डॉक्टर साहब, हमारे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज है, और ये भाई राम खिलौने हैं एटा से, और ये कहते हैं कि मुझे पिछले साल चिकनगुनिया हो गया था और मैं काफ़ी समय तक पीड़ित रहा, तो मुझे अपने खान पान में क्या लेना चाहिए कि इससे दोबारा मुझे परेशानी ना हो?
0: राम खिलावन जी, ये बात बिल्कुल अच्छी है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी चिकनगुनिया नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाला मौसम वही है, हो
1: जी
0: सकता है, तो इसलिए जो है आपको खाने पीने में टोटल बैलेंस डाइट लीजिए।
1: जी
0: बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आप हरी सब्जियों का सेवन करिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रोटीन डाइट आप ज़्यादा लीजिए, जिसमें अपना उबला हुआ जो दालें हैं भिगो भिगो के आप सवेरे यूज़ कर सकते हैं, जिनको स्प्राउट्स बोलते हैं, वो आप लीजिए। आप अगर गांव में रहते हैं तो दूध आपकी मात्रा में अच्छा खासा होता है, तो दूध आप ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करने से आपकी बॉडी का इम्यूनिटी रहता है, इम्यूनिटी मेंटेन रहता है, तो
1: बिल्कुल
0: अगर
1: बिल्कुल
0: चिकनगुनिया होगा भी तो आपको हरा नहीं पाएगा वो, तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए आप
1: बिल्कुल
0: ऐसा खाना पीना लीजिए।
1: और विशेष रूप से इस मौसम में तला

0: और बासा खाना इसको अवॉइड करना चाहिए।
1: मैं खाने की तो बात तो है ही, जो मैं जब मैं कहीं शहरों के बाहर से निकलता हूँ तो पान बीड़ी की सिगरेट की दुकानें ज़्यादा होती हैं, और बाकी अब मठा वठा तो कहीं मिलता नहीं है, तो वैसी दुकानों को मैं कम देखता हूँ। तो लेकिन इन सब चीज़ों से भी बचें,
0: बिल्कुल
1: ये बॉडी की आपकी इम्यूनिटी पावर को वीक करते हैं, और स्पेशली इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं करें,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि ये अब
0: बिल्कुल
1: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया वाला टाइम आने वाला है।
0: डॉक्टर साहब, ये व्हाट्सएप पर एक और हमारे श्रोता हैं, ये अनिरुद्ध सिंह हैं शुकहाबाद से, और ये पूछते हैं कि क्या चिकनगुनिया का कोई घरेलू उपचार भी है और इसमें कोई किसी व्यायाम से भी लाभ हो सकता है क्या?
1: ये अनुरुद्ध जी, एक तो ये कि आपका अगर व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहता है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: अगर आपका बॉडी का इम्यूनिटी मेंटेन रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए एक तो ये, दूसरा इनका जो सवाल था कि एक तो ये व्यायाम करने से,
0: और ये कोई घरेलू उपचार भी होता है
1: देखिए
0: क्या?
1: ये

0: करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहता है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: अगर आपका बॉडी का इम्यूनिटी मेंटेन रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए एक तो ये, दूसरा इनका जो सवाल था कि एक तो ये व्यायाम करने से,
1: और ये कोई घरेलू उपचार भी होता है
0: देखिए
1: क्या?
0: ये घरेलू उपचार जो मैंने बताया कि जैसे बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं,
1: जी
0: कुछ अपनी जो देसी देसी कहूँ, जो अपनी जो एक पुरानी जो पद्धति है जिनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप काढ़ा बना के, शायद वो पूछना चाह रहे हैं
1: जी
0: कि वो
1: जी
0: हम किसी का काढ़ा बना के पिए या वो पिए, तो उन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो कोई नुकसानदायक तो नहीं है।
1: जी
0: और उनसे अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो उनसे बचते भी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मेन मेन वही है कि आप मच्छर को बचाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपकी बॉडी में अगर हो गया तो मैंने देखा है कि 90% चिकनगुनिया सेल्फ लिमिटिंग अपने आप ठीक हो जाता है। एक
1: जी
0: दो दिन उन्होंने पैरासीटामोल की टेबलेट लिया और उसके बाद फिर दूसरे दिन, अरे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 महीने बाद उनको पता लगा जॉइंट पेन हो रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उनको पता लगा कि अरे ये तो हमें जो थोड़ा सा बुखार आया था चिकनगुनिया का, उसकी वजह से जॉइंट पेन है।
1: जी
0: तो ऐसा भी होता है
1: जी
0: कि आज हल्का सा बुखार आया, एक दो दिन रहा और फिर 3 महीने बाद 2 महीने बाद जॉइंट पेन से परेशान हो गए।
1: डॉक्टर साहब, इसी से संबंधित मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि हमारे एक परिचित हैं तो उनको भी ये दिक्कत है कि 2 साल पहले उनको चिकनगुनिया हुआ था,
0: जी
1: लेकिन आज भी वो अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और वो सीधे से चल भी नहीं पाते, और तमाम डॉक्टर्स को वो दिखा चुके हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।
0: ये बिल्कुल सही बात है। मैंने
1: जी
0: आपको बताया कि जैसे कि 100 चिकनगुनिया के पेशेंट हैं,
1: जी
0: रोगी हैं,
1: जी
0: उनमें से 90 लगभग 90-95% को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता।
1: जी
0: लेकिन चिकनगुनिया का जो वायरस है जो जोड़ों पे अटैक करता है, जिसको कि पॉलीआर्थ्रेल्जिया बोलते हैं उस बीमारी को, यानी कि सारे जोड़ों में दर्द होता है, खासकर नी पेन जो जॉइंट का जो
1: जी
0: होता है
1: जी
0: वो
1: जी
0: ज़्यादा दुखदाई होता है,
1: जी
0: रिस्ट पेन होता है वो दुखदाई होता है, तो वो काफ़ी सालों तक, देख रहा हूँ मैं जब चिकनगुनिया एक बार हुआ था तब के पेशेंट जॉइंट पेन के, मैं आज भी देखता हूँ
1: बिल्कुल
0: बेचारे
1: बिल्कुल
0: वो ठंड में दुखी हो जाते हैं कि अरे ठंड में जॉइंट पेन बढ़ गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की कैल्शियम की दवाइयाँ, डाइट को अपनी को प्रोटीन रिच डाइट को लेने की ज़रूरत है, पेन किलर को जितना हो अवॉइड करें,
1: जी
0: कोशिश करें कि प्लेन पैरासीटामोल या ट्रामाडोल टाइप की जो मेडिसिन होती है उससे पेन को शांत करें,
1: जी
0: और धीमे धीमे करके स्वतः ही चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल और मैं ले रहा हूँ। ये सुषमा जी हैं दयालबाग से, और ये कह रही हैं पिछले साल काफी लोगों को चिकनगुनिया हुआ, क्या कारण है कि अचानक इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है?
0: हाँ ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब मैंने स्टार्ट किया था
1: जी
0: एक ये प्रोग्राम तो आपने मेरे से सवाल पूछा था ये, तो मैंने तब भी ये कहा था कि 1996 से जैसे डेंगू हुआ ऐसे ही चिकनगुनिया, बहुत सारी मेडिकल साइंस इस कारण को जानने में लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो वायरस का जो स्ट्रेन है
1: जी
0: चिकनगुनिया और डेंगू का, ये स्ट्रेन साल दर साल चेंज हो जा रहा है,
1: जी जी
0: यानी कि
1: उनका पैटर्न
0: आप
1: चेंज हो रहा है। जी
0: अगर बहुत ही अच्छे से आप समझना मेरी बात को, जरा से शॉर्ट में बता दूंगा कि अगर एक बार वायरल होता है तो दूसरी बार वो वायरस आपके शरीर में उतना खतरनाक लक्षण नहीं पैदा करेगा।
1: जी
0: ये वायरस की खास बात है, यानी कि अपने आप ही बॉडी में इम्यूनिटी एंटीबॉडी डेवलप हो गई, उससे नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को डेंगू हुआ तो फिर डेंगू उतना खतरनाक नहीं होगा।
1: जी
0: लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है कि डेंगू के जो 4 स्ट्रेन देखे गए हैं, एक बार डेंगू हुआ डेंगू 1 से, दूसरी बार हुआ डेंगू 2 स्ट्रेन से, तीसरी बार हुआ डेंगू 3 स्ट्रेन से, तो जो पुराना डेंगू था कोई फर्क नहीं, अब तो ये नया स्ट्रेन आ गया वायरस का।
1: यानी कि हर बार जो नया ट्रेंड आ गया।
0: यस,
1: या
0: वायरस भी अपने आप को एडेप्ट कर रहा है,
1: जी
0: उसको मेडिकल साइंस नहीं समझ पा रही है कि वायरस अपने आप को एडेप्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक चेंजेस।
1: जी
0: तो वो जो चीज है, जो ट्रांसमिशन है उसका, वो कई कई सालों से ऐसा देखने में मिल रहा है कि दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एक डेंगू के वैक्सीन के बारे में बता दूं कि जैसे डेंगू का वैक्सीन है, मेडिकल साइंस इसको डेवलप करने में लगी हुई है,
1: जी
0: लगातार सोच रहे हैं हम लोग कि डेंगू का वैक्सीन बन जाए, और लकीली हम इसमें सफल हो गए और हिंदुस्तान में, इंडिया में ये डेंगू का वैक्सीन आगे कुछ ही महीना या साल के बाद अवेलेबल हो जाएगा
1: ये बहुत ही अच्छी बात
0: उसकी।
1: है और ये
0: जी
1: बहुत ही राहत की बात होगी।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और कुछ कहना चाहेंगे, और कोई मैसेज देना चाहेंगे इस परेशानी के बारे में, मलेरिया के बारे में, डेंगू के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में?
0: देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर से पनपने वाली बीमारी है।
1: जी
0: मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कूलर में पानी मत भरिए, आप अपने आसपास में पानी मत भरने दीजिए। अगर दूसरे के

0: यहां पानी भर रहा है तो उसको आप पानी को भरने से रोकिए,
1: बिल्कुल
0: आप दूसरे को भी जगाइए,
1: बिल्कुल
0: आप आसपास के जो ड्रेनेज सिस्टम है आप उस ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर रखिए। ड्रेनेज सिस्टम से मेरा मतलब है मैं अपने पेशेंट को बोलता हूं कि आप मत पानी भरने दीजिए, अपनी नाली साफ कराइए, आप पड़ोसी की नाली साफ कराइए,
1: जी
0: नहीं तो आपके घर पे पानी चोक होगा, आपके घर में पानी भरेगा। तो वो अगर हम पानी भरने से रोक लेते हैं तो उससे क्या होगा, मच्छर नहीं पनपेगा।
1: बिल्कुल
0: जैसे हम कहते हैं कि गर्मियों में खाने पीने की वस्तुएं खराब ना हो तो रखी हुई हम चीजें ना खाएं, हम
1: जी
0: ये नहीं खाएं तो भाई ये नहीं होगा। तो गर्मियों में आप मान के चलिए कि मैं पिछले करीब 6-7 साल पहले इतने डायरिया डिसेंट्री डिहाइड्रेशन के पेशेंट देखता था, धीमे धीमे आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को इतनी जागरूकता आई है कि अब वो हाथ धो के खाना खाने लगे,
1: बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल
0: वो गंदी चीजें नहीं खाते, अब वो बाहर रखी हुई चीजें नहीं खाते, खाना खराब अगर रखा है बासी हो गया नहीं खाते। उससे
1: जी
0: क्या हुआ, उससे हमने अपनी आंतों में होने वाली बीमारियों को बचा लिया। ऐसे ही है, अगर हम पानी के ड्रेनेज को ठीक रखेंगे
1: मच्छरों को
0: और
1: नहीं पनपने
0: नहीं
1: देंगे।
0: पनपने देंगे, प्लस कोशिश ये करिए, एक मैंने जो अपना जो अनुभव है वो मैं आपको बताता हूं कि फुल बाजू के कपड़े पहन के इन 3-4 महीने में सोइए, पूरे बाजू के कपड़े, पूरा पजामा, अगर आप पूरा पजामा पहन के सोएं, कोशिश करिए कि मच्छर की जितनी भी मारने की दवाइयां होती हैं सबको इस्तेमाल करिए इन 3-4 महीने में, क्यों इन 3-4 महीने में ही मच्छर पनपते हैं।
1: जी
0: टेम्परेचर कम हुआ, गर्मियों में मच्छर नहीं होते इतने, इन
1: बिल्कुल
0: तीन चार
1: बिल्कुल
0: महीनों में मच्छर भी होते हैं, इधर पानी भी भर रहा है, तो वो धीमे धीमे करके वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और उससे क्या होगा कि मच्छर एक तो काटे नहीं,
1: जी।
0: एक मच्छर हो ही नहीं, दूसरा पानी नहीं भरने दे।
1: तो डॉक्टर बीके अग्रवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने हमारे श्रोताओं को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में, उनके कारणों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में और उनके उपचार के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी और सटीक जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब से कुछ देर बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा, इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता

0: रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर तो आमतौर पर व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटिफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है।
0: जी,
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत की आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी,
1: मेरे बचपन की तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर, दूसरा था इंजीनियर की। ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया। बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा,
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ली, एंड फिर मैंने

0: करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग, तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का, लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता है, ये बात होती है।
1: सो ब्यूटिफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी एज अ यंग पर्सन, मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया, एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स एसएसबी देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ एसएसबी। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: जी दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओ नाइस, अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल, ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी।
0: वाह।
1: और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: Oh, that's so amazing. In fact, मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही उसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूं ये एक और चीज बताना।

0: देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है।
1: जी
0: सो दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए।
0: जी
1: लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
1: जी
0: एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है। सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेज में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है। अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है।
0: जी
1: तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ खुद क्या सीखा है? मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं?
0: जी लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी। एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा, वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल। और तीसरी चीज है आपकी टीम। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी।
1: दैट्स अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई आपने ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस रही है। बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं।

0: कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं। आप रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी, बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूं वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी, रिपब्लिक डे परेड,
0: हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं

0: हर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब
1: ओके
0: आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार है आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: हाँ, कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी, और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का,
1: हाँ,
0: लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे, और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है,
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ,
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताऊं डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूं।
1: ओ माय गॉड।
0: तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली।
0: स्ट्रेंथ, वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे जा

0: रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
1: जी.
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
0: जी.
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो.
0: हाँ,
1: लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए. ये जिंदगी है.
0: बहुत सुंदर.
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए. अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है.
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो
0: जी,
1: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है. तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
0: जी.
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है.
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए?
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज शुरुआत में कहना चाहूंगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है
0: हाँ,
1: तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है।
0: ओके, आई गॉट द आंसर।
1: सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई

0: निजात नहीं है।
1: जी
0: उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही थी,
0: जी
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं।

0: सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
0: बिल्कुल
1: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
0: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं, तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
1: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है, जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
0: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
1: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
0: जी
1: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
0: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
0: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार। अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
1: धन्यवाद विनीता जी।

0: यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए, और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का, धन्यवाद, जय हिंद,
0: जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय

0: सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक में सरकारी खर्च में कटौती के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एक वर्ष तथा विदेश यात्रा न करने और शनिवार तथा रविवार को कार्य दिवस के रूप में बनाए रखने का भी निर्देश दिया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। आइए लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी एक और एक 11 विषय पर। साथ ही होगी वार्ता समाज में हर कोई है सम्मान और बराबरी का हकदार। वार्ताकार होंगी प्रेरणा वशिष्ठ। सेगमेंट क्वेस्ट वर्ड में जानिएगा जनहित याचिका के विषय में। सेगमेंट हेल्थ प्लस में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या है, इस विषय पर जानकारी लीजिएगा और जानिएगा टिप ऑफ द डे। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक शाम 6:00, जिसमें पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ विषय पर होगी चर्चा। साथ ही होगी भेंट वार्ता, जिसमें आप सुनेंगे स्वस्थ मृदा से ही संभव है स्वस्थ जीवन, इस विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से बात करेंगे श्री अनेंद्र सिंह। साथ ही जानिएगा मौसम का हाल और मंडी भाव, आनंद लीजिएगा लोक गीतों का।

हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा होगी श्रमिक परिवारों में बचत की आदत विषय पर। अन्य सेगमेंट होंगे देश दुनिया, आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, लीजिएगा सेहत टिप्स और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। श्रोताओं, शाम 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आधारित होगी हमारी आज की वार्ता, जिसका विषय होगा सरस्वती पत्रिका और हिंदी जागरण में उसकी भूमिका। वार्ताकार होंगी डॉक्टर संध्या द्विवेदी। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुन सकते हैं शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 8:00 कार्यक्रम शब्द गीत में, जिसमें आज का फिल्म संगीत आधारित होगा एक शब्द पर। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं

श्रोताओ, रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट्स। रात्रि 10:00 आनंद लीजिएगा काव्य गोष्ठी ग्रीष्म गोष्ठी का। प्रतिभागी कवि होंगे राधेश्याम मिश्र, सुशील सक्सेना सरित, शिव कुमार शर्मा, बहादुर सिंह निर्दोषी। संचालन होगा मंजूलता शर्मा का। तो याद रखिएगा, रात्रि 10:00 काव्य गोष्ठी ग्रीष्म गोष्ठी। और श्रोताओं, आप आनंद ले सकते हैं शास्त्रीय संगीत का रात्रि 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे विदुषी परवीन सुल्ताना से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगी राग गोरख कल्याण और राग रागेश्वरी। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना चार धाम फिल्म से अनुराधा पोडवाल और हरिहरन के स्वर में, उदय शंकर पाणी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है सुरेंद्र कोहली ने।

श्रोताओं, चार धाम फिल्म से ये भक्ति रचना आपने सुनी अनुराधा पोडवाल और हरिहरन के स्वर में। उदय शंकर पाणी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था सुरेंद्र कोहली ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में जय मां वैष्णो देवी फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी अनुराधा पोडवाल और सोनू निगम की आवाजों में। बोल लिखे थे भरत आचार्य ने, धुन बनाई थी अमर उत्पल ने। श्रोताओं, इन भक्त रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युव वाणी।

हौसलों की उड़ान लेकर, सपनों की पहचान लेकर, नई सोच, नई ऊर्जा और नए भारत की आवाज लेकर हम आ गए हैं आपके बीच युवानी कार्यक्रम के साथ। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल युवा साथियों, मैं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त अपूर्वा परिहार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम युवानी के साथ, जहाँ आज हम बात करेंगे एकता और टीम वर्क की मिसाल एक और एक ग्यारह के बारे में। साथ ही संगीत की मधुर धुनों के साथ हम करेंगे आपका मनोरंजन। इसके अलावा क्वेस्ट वर्ल्ड में हम चलेंगे ज्ञान और रोमांच की एक नई दुनिया में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी याचिका की जो सीधा आम जनता के न्याय और समाज के हित से जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं हम किस याचिका की बात कर रहे हैं? आप इसका जवाब ढूंढिए और साथ ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के हमारे कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि कई रोमांचक सेगमेंट्स आपके लिए तैयार हैं। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। दोस्तों, कहते हैं अकेला इंसान रास्ता बना सकता है, लेकिन मिलकर लोग इतिहास रच देते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल कंपटीशन हर दिन नई चुनौतियां लेकर आ रहा है, वहां सबसे बड़ी ताकत है एकता, सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच। इसी सोच को दर्शाता है हमारा आज का विषय एक और एक ग्यारह। और जब पूरा विश्व साल 2026 को वैश्विक मजबूती का वर्ष यानी ईयर ऑफ ग्लोबल स्ट्रेंथनिंग के रूप में देख रहा है, तब ये विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, एक और एक ग्यारह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का बहुत बड़ा संदेश है, जिसका मतलब है जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हर क्षेत्र में टीम वर्क की अहमियत बढ़ गई है, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो या देश की प्रगति। सफलता अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने से मिलती है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक अकेली बूंद जल्दी सूख जाती है, लेकिन कई बूंदें मिलकर समंदर बना देती हैं। ठीक वैसे ही एक अकेला व्यक्ति सीमित काम कर सकता है, लेकिन जब लोग साथ आते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती

आसान हो जाती है। साथियों, आज के युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। 2026 में जब दुनिया ग्लोबल स्ट्रेंथ और इंटरनेशनल पार्टनरशिप की बात कर रही है, तब भारत के युवाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हमें जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना होगा। अगर युवा मिलकर आगे बढ़ेंगे तो भारत सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा भी बनेगा। दोस्तों, हमने कई बार देखा होगा कि जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है तो लोग एकजुट होकर मदद के लिए आगे आते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो या कोई सामाजिक समस्या। एकता हमेशा सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक और एक 11 की ताकत साफ दिखाई देती है, जिनमें से सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड-19 महामारी। जब पूरा विश्व इस कठिन समय से गुजर रहा था, तब डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, सामाजिक संगठन और आम लोग सब ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। किसी ने जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया, किसी ने दवाइयां दी तो किसी ने अपने घरों में रहकर नियमों का पालन किया। दोस्तों, यही एकता और सहयोग था जिसने हमें उस मुश्किल समय से बाहर निकलने की ताकत दी। इसी तरह जब कहीं बाढ़, भूकंप या दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो लोग धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि कैसे युवा ब्लड डोनेशन कैंप्स, क्लीनलीनेस ड्राइव्स और सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर समाज में बड़ा बदलाव लाते हैं। दोस्तों, यही है एक और एक 11 की असली ताकत। जब लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए साथ खड़े होते हैं, क्योंकि एक और एक सिर्फ 2 नहीं बल्कि 11 बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो 2026 के वैश्विक मजबूती के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए।

0: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया में हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के सिर्फ इंसान समझा जाए तो हमारा समाज कैसा दिखेगा? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सिर्फ बराबरी और सम्मान। आज हम इसी सोच को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। साथियों, समाज में हर कोई सम्मान और बराबरी का हकदार है, लेकिन क्या हम सच में ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं या अभी भी हमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत है? तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसी विषय पर वार्ताकार प्रेरणा वशिष्ठ से इस वार्ता के जरिए।
1: समाज क्या है? समाज एक सामाजिक संगठन है जिसमें व्यक्तियों की समृद्ध और संबंध का सामूहिक अनुभव होता है। समाज में लोग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ नियमों और मूल्यों के आधार पर रहते हैं। समाज में व्यक्ति संबंध, कल्चरल डाइवर्सिटी और सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से आत्म पहचान बनाता है और यही समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का अधिकार भी है। आज हम बात करेंगे कि सम्मान और बराबरी का मूल क्या है। एक विविधता से भरी दुनिया में यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को पहचानें और उसे बनाए रखें, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो जहां सम्मान और समानता की भावना का आदान प्रदान हो। सोचिए एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति उनके परिचय से परे अपने आप को गौरव से समझे और समान व्यवहार का अधिकार रखे।

0: यह नजरिया एक न्यायिक और प्रगतिशील समाज की नींव को रखता है। सम्मान मूल रूप से हर व्यक्ति का आंतरिक मूल्य है और यह समाज में रह रहे हर व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाता है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हम उनकी मानवता को स्वीकृत करते हैं और साथ ही समाज में रचनात्मकता का मूल्य बढ़ाते हैं। समान व्यवहार दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपूर्वक और निरपेक्ष रूप से दर्शाता है। इसका अर्थ है कि सबको बिना भिन्नता का समान अवसर का अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है। एक न्यायिक समाज में सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं और सबको न्याय मिलता है। सम्मान और समान व्यवहार का अधिकार सिर्फ एक ख्याली कल्पना नहीं है, ये किसी भी समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने आप को सम्मानित और न्यायपूर्वक और व्यवहारित महसूस करते हैं तो वे अपने समुदाय में सकारात्मक रूप से योगदान देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इससे समाज में सहयोग बढ़ता है और समाज प्रगति करता है। लेकिन हमारी वास्तविकता यह है कि हमारी दुनिया हमेशा आदर्शों को प्रतीत नहीं करती। भेदभाव, पक्षपात और असमानता विभिन्न रूपों में बनी रहती है। यह है हमारा सामंजस्य कि हमें इन रुकावटों को चैलेंज करना है और उनको नष्ट करना है, एक ऐसे समाज की ओर बढ़ने के लिए जहां आदर्शों का उपभोग नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों में समाहित हो। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो शिक्षा हमारे दृष्टिकोण और भावनाओं को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। हमें बचपन से ही सहानुभूति और समझ का संस्कार देना आवश्यक है और आने वाली पीढ़ी को एक अधिक न्यायपूर्वक और समर्पणशील दुनिया की दिशा में मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। और इसके अलावा सरकार और संस्थाएं ऐसी नीतियां बनाएं और उन्हें लागू करें जो समान व्यवहार को बढ़ावा दें और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा करें। ढांचा ऐसा हो जो हर व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करे। इस तरह हम एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें सम्मान और समान अवसर सबके लिए मौजूद होंगे। अगर हम बात करें उस महत्वपूर्ण सेक्टर की जिसे व्यवसाय कहते हैं, तो व्यवसाय में ऐसी नीतियों को लागू करके एक मिसाल कायम करें जो विविधता और एकजुटता पर बल देती हो। जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनका योगदान इम्पोर्टेंट है और न्यायपूर्वक है तो वह एक नई ऊर्जा से और प्रगतिशील होते हुए कार्य करते हैं। यह सिर्फ व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि संस्था के पूर्ण सफलता और स्थिति का भी एक आधार बनता है। समुदायों का भी महत्व है। भिन्नता को गले मिलाने और बातचीत को बढ़ाने का समर्थन करना संकेत और गलतफहमियों को खत्म कर सकता है। खुले विचार के लिए स्थल बनाने से हमें स्थितियों को पार कर सकते हैं और विभिन्न जीवन के पथ पर खड़े हुए लोगों के बीच एक रिश्ता बना सकते हैं। अंत में आदर और सम्मान व्यवहार का अधिकार केवल एक ऊंचा विचार नहीं बल्कि हमारी मानवता की मूल्य है। जैसे हम अपनी विविध दुनिया में चलते हैं, आइए याद रखें कि हमारा बल एकजुट है, समझ और सम्मान में छिपा हुआ है। हम समस्याओं का समाधान करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और हमारा ज्ञान और अनुभव आपस में साझा करते हैं, तो ही हम एक सच्चा, आदर्श और सम्मान भरा समाज बनाते हैं।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना वार्ताकार प्रेरणा वशिष्ठ को, जिन्होंने हमें बताया समाज में हर कोई है सम्मान और बराबरी का हकदार। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि ऐसी कौन सी याचिका है जो सीधा आम जनता के अधिकारों, न्याय और समाज के हित से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं जनहित याचिका की, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये याचिका है क्या। सरल शब्दों में समझें तो जब किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों का उल्लंघन होता है और वह खुद न्याय के लिए अदालत नहीं जा पाता, तब कोई भी नागरिक या संगठन समाज के हित में अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी को जनहित याचिका कहते हैं। साथियों, ये व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये आम जनता को न्याय पाने का अवसर देती है। चाहे वह पर्यावरण की सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज हो, या फिर गरीब और कमजोर वर्गों के अधिकार हो, इसने हर क्षेत्र में न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा

कि इसका दुरुपयोग भी न किया जाए। इसका उपयोग केवल समाज के वास्तविक हित और न्याय के लिए ही हो, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। दोस्तों, आज के समय में जब हम न्याय और अधिकारों की बात करते हैं तो जनहित याचिका एक बहुत बड़ा साधन बनकर सामने आती है। कई बार ऐसा होता है कि समाज के गरीब, कमजोर या वंचित लोग अपने अधिकारों के लिए खुद अदालत तक नहीं जा पाते। ऐसे में कोई भी जागरूक नागरिक या संस्था उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर सकती है। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोस्तों, इसके माध्यम से कई बड़े सामाजिक मुद्दों पर न्याय मिला है, चाहे वह पर्यावरण की सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर मानव अधिकारों की रक्षा हो। इसने समाज में न्याय और समानता को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन युवाओं, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना है। जनहित याचिका केवल वास्तविक जनहित और समाज की भलाई के लिए ही होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ या झूठे मामलों के लिए। दोस्तों, इसे सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं समझें, बल्कि यह हर जागरूक नागरिक को न्याय व्यवस्था से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। यह हमें सिखाता है, अगर हम सही के लिए आवाज उठाएं तो बदलाव जरूर संभव है। तो दोस्तों, ये हमने जाना जनहित याचिका के बारे में सेगमेंट क्वेस्ट वर्ल्ड में। अब बारी आती है हमारे अगले सेगमेंट हेल्थ प्लस की, जहां आज हम एक ऐसी गंभीर लेकिन कम जानी पहचानी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, यानी SMA। दोस्तों, SMA एक जेनेटिक बीमारी है जो शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित करती है। ये समस्या रीढ़ की हड्डी में मौजूद नर्व सेल्स के कमजोर होने से होती है। धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और व्यक्ति को चलने फिरने, उठने बैठने और कभी कभी सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है। दोस्तों, ये बीमारी मुख्य रूप से बच्चों में देखी जाती है, लेकिन इसके अलग अलग प्रकार होते हैं जो अलग अलग उम्र में भी सामने आ सकते हैं। दोस्तों, SMA का मुख्य कारण एक विशेष जीन में खराबी होना होता है, जिसके कारण शरीर जरूरी प्रोटीन नहीं बना पाता और नसें कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि SMA छुआछूत या संक्रमण से नहीं फैलती। ये एक आनुवंशिक स्थिति है जो जन्म से ही मौजूद होती है। दोस्तों, आज के समय में चिकित्सा विज्ञान ने काफी प्रगति की है और कुछ इलाज एवं थेरेपी के माध्यम से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे बचे रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका टाइमली हेल्थ चेकअप। अगर आपको किसी व्यक्ति, खासकर बच्चे में धीरे धीरे मांसपेशियों की कमजोरी, चलने में दिक्कत या शरीर का ढीला पड़ना दिखे तो उसे हल्के में ना लें और तुरंत चेकअप कराएं, क्योंकि समय पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। इसलिए स्वस्थ रहें और अपने आसपास वाले लोगों को भी स्वस्थ रखें। साथ ही आनंद लें इस गीत का।

साथियों, इसी के साथ समय आ गया है युवानी कार्यक्रम संपन्न करने का। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

राम राम किसान भाइयों, गांव और किसानों से जुड़े अपने कार्यक्रम ग्रामीण लोक में मैं अनुराधा अग्रवाल आपकी रेडियो साथी आप सभी का स्वागत करती हूं। और साथियों कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और खेत खलिहान के काम अच्छे से चल रहे होंगे। आइए साथियों इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारी प्रकृति से नहीं बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, खेती और आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। साथियों आज का समय आधुनिकता का समय है, नई नई सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े शहर खड़े हो रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, तकनीकियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं प्रकृति छूटती जा रही है। पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो भी मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर दिखाई देता है। कभी तो तेज गर्मी तो कभी अचानक बारिश, कभी सूखा तो कभी बाढ़। गांव हो या शहर, हर जगह प्रकृति का संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। और इन सब का सबसे बड़ा कारण है कि लगातार घटते पेड़ और बढ़ता प्रदूषण। साथियों कभी हमारे गांव की पहचान बड़े बड़े पीपल, नीम, बरगद और आम के पेड़ों से हुआ करती थी। भाई लोग दोपहर में जब आराम करने की उनके मन में विचार आता था तो उसी की छांव में बैठते थे, बच्चे पेड़ों के नीचे खेला करते थे और भी पक्षियों की चहचहाट से सुबह की शुरुआत होती थी, वातावरण में एक ठंडक सी बनी रहती थी। लेकिन आज विकास की दौड़ में पेड़ कटते जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, इमारतें ऊंची होती जा रही हैं, लेकिन हरियाली वो कम होती जा रही है। साथियों यहां हमें ये समझना होगा कि पेड़ केवल लकड़ी या फल देने का साधन नहीं है बल्कि ये धरती के प्राण है। हम जो सांस लेते हैं ना वे पेड़ों की ही देन है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। यही कारण है कि पेड़ों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। साथियों पेड़ हमको शुद्ध हवा देते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं, मिट्टी को कटने से बचाते हैं और वातावरण को ठंडा रखते हैं। भाई एक बड़ा पेड़ जो होता है साथियों कई एयर कंडीशन के बराबर हमको ठंडक देता है। आपने भी देखा होगा कि जहां पेड़ अधिक होते हैं वहां का वातावरण स्वच्छ और जीवन खुशहाल होता है। साथियों पेड़ों का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है बल्कि खेती और किसानों के जीवन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भाई पेड़ मिट्टी को कटने से बचाते हैं, बारिश

के पानी को जमीन में पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे हमारी भूमि का जल स्तर बना रहता है और इसके साथ ही तेज हवाओं से हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। और आज के किसान खेती के साथ साथ पेड़ लगाकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर रहे हैं। नीम, सहजन, शीशम, सागवान और फलदार पौधों किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। खासतौर से नीम का पेड़ तो भैया प्रकृति का अनमोल उपहार है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। साथियों, आज हम लोग एसी कूलर तो खरीद रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक ठंडक देने वाले पेड़ कम होते जा रहे हैं। साथ ही हम स्वच्छ पर्यावरण को भी खोते जा रहे हैं। इसी बात पे साथियों मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि काट रहे हैं पेड़ सभी फिर बारिश की आस क्यों, काट रहे हैं पेड़ सभी फिर बारिश की आस क्यों, प्रकृति से जब दूर हुए तो जीवन में विश्वास क्यों। साथियों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब इसका असर हमारी खेती, पानी, स्वास्थ्य और मौसम सब पर पड़ रहा है। और समाधान भैया एक ही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि साथियों जिस धरती पर पेड़ मुस्कुराते हैं वही जीवन खुशहाल कहलाता है। तो आइए साथियों संकल्प लें कि हम सब अधिक से अधिक पेड़ लगाकर अपनी धरती को हरा भरा बनाएं। आइए इसी के साथ आप सबको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं मधुर संगीत रविंद्र कुमार शर्मा की आवाज में।

0: साथियों, अक्सर कहा जाता है कि जैसी धरती की सेहत वैसी इंसान की ताकत, और ये बात बिल्कुल सही भी है। मिट्टी केवल धूल या जमीन नहीं, बल्कि ये हमारी अन्नदाता है। जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी से हमारा भोजन बनता है, और उसी भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी भेंट वार्ता का विषय क्या है। आज हमारी भेंट वार्ता का विषय है स्वस्थ मृदा से ही संभव है स्वस्थ जीवन, और वार्ताकार हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, और उनसे भेंट कर रहे हैं आनंद सिंह। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: किसान साथियों, अपने स्वास्थ्य की चिंता हम सब लोग करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य जो है हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन शायद ये हम में से कोई नहीं सोचता कि ये हमारे सेहत की शुरुआत होती कहाँ से है। क्या अस्पताल से होती है या दवाइयों से होती है? शायद हमने कभी नहीं सोचा। इसकी शुरुआत होती है हमारे पैरों के नीचे जो मिट्टी होती है उससे। अगर हमारे खेतों की मिट्टी स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रह सकता है। अन्नदाता जो किसान उत्पाद पैदा करके हम तक पहुँचाता है, वही उसी से हमारा स्वास्थ्य निर्धारित होता है। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है किसान साथियों, और इसको हम सबको समझने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
1: सत्येंद्र जी, देखो, हम जैसे हमने कहा कि अपनी सेहत के प्रति तो हम सब जागरूक हैं, लेकिन मिट्टी की सेहत, उसका भी हमारी यानी इंसानों की सेहत से ताल्लुक है, इसको शायद हम नहीं समझते। आप क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल जी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो मिट्टी है वो केवल एक धूल नहीं है या जमीन की ऊपरी परत नहीं है, वो जो भी हम फसलें उगाते हैं उनके, हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए वो भोजन है। उनके लिए पोषक तत्व वहीं से मिलते हैं, वहीं से उनको पानी मिलता है, और मिट्टी ही मुख्य स्रोत है। जो भी पोषक तत्व हैं उनका मिट्टी ही मुख्य स्रोत है,
1: चाहे वो सब्जी हो या अनाज हो, जो भी पैदा होता है उसी मिट्टी से ही होता है। तो मिट्टी की सेहत बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या वो सूक्ष्म तत्व होते हैं जो मिट्टी में होते हैं आमतौर पर?
2: सर, जैसा कि किसान भाई

0: जानते हैं कि मुख्य रूप से वो एक या दो तरह के ही पोषक तत्वों का अपनी फसल के अंदर प्रयोग करते हैं, लेकिन फसलों को अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और जो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमारे भोजन से ही हमें मिलते हैं और वो भोजन मिट्टी से ही हमें प्राप्त होता है। तो अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी और उसके अंदर संतुलित मात्रा के अंदर उनके पोषक तत्व रहेंगे तो ही हमें एक संतुलित भोजन हमें प्राप्त हो सकता
1: है। फसल जो है हमें बढ़िया अगर मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा भोजन जो मिलेगा वो भी पौष्टिक होगा और हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
0: जी,
1: कहा भी जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन।
0: जी सर,
1: मिट्टी जो है वो हमारी सेहत की निर्धारण करती है, लेकिन अगर किसान ये बात समझना चाहे कि उसके खेत की मिट्टी स्वस्थ है या नहीं तो वो कैसे जानेगा?
0: तो उसके लिए सर सबसे जरूरी किसान भाइयों के ये होता है कि वो सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाए, जिससे उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों का उसको ज्ञात होगा कि किस पोषक तत्वों की उसकी मिट्टी के अंदर कमी है, किसकी उसके अंदर अधिकता है, और उसी के अनुरूप वो फिर संतुलित मात्रा के अंदर उर्वरकों का प्रयोग करके अपनी मिट्टी की सेहत को बरकरार रख सकता है। उसके साथ साथ किसान भाइयों को ये जानना भी जरूरी है कि जो जैविक पदार्थ है उसकी मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा है, साथ में जो मिट्टी है उसकी संरचना कैसी है। तो इन सभी की जानकारी किसान भाइयों को तभी हो पाएगी जो वो अपनी मिट्टी की जांच
1: करवाएगा। आजकल सरकार का भी बड़ा एक कैंपेन चल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए गए हैं, तो उससे जो है किसान अपनी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, क्या ऐसा बोला जाता है कि हमने ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करके मिट्टी की सेहत को खराब कर दिया है, उसकी उर्वरता जो है वो कम हो गई है, उसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं?
0: इसमें अगर हम देखते हैं तो यही है कि एक तो जनसंख्या वृद्धि है और दूसरा किसान भाइयों को ये रहता है कि ज्यादा उत्पादन वो कैसे ले सकते हैं। उसी में क्या होता है कि ज्यादा उत्पादन के लिए किसानों को ये होता है कि ज्यादा खाद डालो, जिससे वो असंतुलित मात्रा के अंदर खादों का प्रयोग करते हैं। उस असंतुलन से क्या होता है कि मुख्य रूप से एक या दो खादों का ही वो प्रयोग करते हैं, बाकी जो पोषक तत्व हैं उनका वो प्रयोग नहीं करते। साथ के साथ आजकल ये भी देखने को मिलता है कि जो जीवांश कार्बन है मिट्टी का वो कम होता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण यही है कि जो जैविक खादें हैं उनका प्रयोग किसान भाई नहीं करते हैं।
1: जैविक खादों का प्रयोग कम हो गया है और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग
0: अधिक हो गया है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो आजकल बहुत सुनने को मिलता है हमारे खासतौर पर जो नॉर्थ इंडिया है उसमें पराली का जलाना, वो भी कहीं हमारी मिट्टी की सेहत को खराब करता है?
0: बिल्कुल सर, उससे यही होता है किसान भाइयों की जैसे जो भी आप फसल अवशेष खेत के अंदर जलाते हैं तो उससे आपके जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य खराब होता है, उसके अंदर उपलब्ध जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं और जो मिट्टी की जो ऊपर की संरचना है वो खराब होती है, क्योंकि कोई भी हम फसल अवशेष जलाते हैं या पराली हम जलाते हैं तो उससे मिट्टी का जो तापमान है वो भी बढ़ता है, उससे मिट्टी की सेहत तो खराब होती होती है, साथ में हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और जो कहीं ना कहीं हमारी खुद की स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
1: अब ये भी आपने बता दिया कि कारण क्या है उसके, तो जरूरी एहतियाती कदम भी बता दीजिए कि जिनसे हम अपने खेत की मिट्टी की सेहत को सुधार पाए।
0: जी सर, इसमें किसान भाइयों को सबसे जरूरी ये होता है कि वो रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों का प्रयोग अवश्य करें, जिसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, साथ के साथ अगर वो हरी खाद लगाएं तो उससे हमारी मिट्टी की संरचना भी बढ़ती है, जैविक जीवांश कार्बन है मिट्टी का उसमें भी सुधार होता है, जिससे जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी में जो पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है।
1: आपने हरी खाद की बात की, पहले जो है फसल चक्र अपनाया जाता था और उसमें आमतौर पर हम देखते थे कि बहुत सारा ढेंचा जो है किसान साथी उगाते थे, तो वो शायद अब प्रक्रिया धीरे धीरे ढीली पड़ गई और किसान साथी ज्यादा उत्पादन के चक्कर में शायद ऐसी जो फसल चक्र था या ऐसी जो हरी खाद जहां पर जिसको हम खेती में प्रयोग करते थे उस पे शायद हमने अपना ध्यान जो है हटा लिया, वो भी एक वजह आप मानते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मुख्य वजह है, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं एक ही तरह का फसल चक्र अपनाते हैं, केवल अनाज वाली फसलें ही, जैसे अगर हम बात करें खरीफ सीजन में वो धान लगाते हैं और रवि सीजन में ज्यादातर वो गेहूं लगाते हैं, तो एक तरह का जब फसल चक्र अपनाते हैं तो उससे मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता भी असंतुलित होती है, साथ के साथ जो हरी खाद का प्रयोग नहीं करते, या अगर हम बात करें कि फसल चक्र के अंदर अगर पहले दलहनी फसलों का प्रयोग करते थे तो उससे क्या होता था कि जो वातावरण की जो नाइट्रोजन थी वो भी अवशोषित होती थी मिट्टी के अंदर, हमारी मिट्टी की संरचना भी सुधरती थी। तो इसी तरीके से अगर किसान भाई हरी खाद का प्रयोग करें या फसल चक्र के अंदर दलहनी फसलों का प्रयोग करें तो उससे भी मिट्टी की स्वास्थ्य में सुधार होगा,
1: और साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि मिट्टी की जांच, और
0: मिट्टी की जांच के साथ साथ ये जो फसल अवशेष या जो पराली जो किसान भाई हैं वो न जलाएं, उसको मिट्टी के अंदर ही अगर मिलाएं तो उससे भी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा, उसमें जो जैविक पदार्थ की मात्रा है वो बढ़ेगी।
1: आजकल जो है एक सरकार

0: का एक पुश आया है कि जहां पर रासायनिक उर्वरक तो कम प्रयुक्त किए ही जाएं, डीएपी का जो प्रयोग है फसल में उसको भी कहीं ना कहीं नियंत्रित करने वाली बातें अब आ रही हैं सामने। वैश्विक परिदृश्य भी ऐसा बन चुका है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जी किसान भाइयों, जैसा कि हम देखते हैं या आप लोगों के अभ्यास में ये रहता है कि केवल दो ही खादों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, यूरिया या डीएपी। तो अगर हम बात करते हैं डीएपी खाद की, इसके लिए हमारा पूरा जो देश है वो निर्भर रहता है आयात के ऊपर, क्योंकि हम ये जो खाद है ये आयात करते हैं, जिससे हमारी जो देश की पूंजी है वो भी बाहर जाती है। और साथ के साथ अगर हम बात करें डीएपी खाद की, तो जो उसकी उपयोग दक्षता है तो वो भी 15 से 20% ही रहती है। अगर हम ये माने कि हमने 100 किलो खाद डाली है, तो 15 से 20 किलो ही हमारी जो फसल है वो
0: वो
1: उसका
0: फसल को प्रयोग
1: प्रयोग
0: में
1: कर
0: ले पा
1: पाती
0: रही
1: है।
0: है।
1: तो इसमें यही होता है कि आप अगर साथ में जैविक खादों का प्रयोग करेंगे, या ऐसे आप जैविक खाद हैं जो हमारे पहले जो हमने पोषक तत्व तो डाले हैं, जो खादें डाली हैं, उनको पौधों को उपलब्ध कराएं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: तो किसान साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मिट्टी जो है अगर सेहतमंद होगी हमारे खेत की, तो हमारा फसल उत्पाद सुरक्षित होगा, सेहतमंद होगा और हमारी जो सेहत है वो बेहतर रह पाएगी। किसान साथियों को डॉक्टर साहब कुछ संदेश जाते जाते जो देना चाहें आप।
1: तो किसान भाइयों के लिए मेरा यही संदेश है कि जो ये मिट्टी है, इसको केवल या धूल या जो जमीन की ऊपरी परत है केवल वो ना समझे, ये एक जीवित धरोहर है हमारे लिए। और हम अपनी मिट्टी की देखभाल करेंगे तो मिट्टी हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी सेहत की भी रक्षा करेगी। इसलिए सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वो संतुलित मात्रा के अंदर ही खादों का प्रयोग करें, एक संतुलित खेती अपनाएं, साथ में जो जैविक पदार्थ हैं, जैविक जो हमारे उर्वरक होते हैं, उनका भी रसायनों के साथ साथ प्रयोग करें और मिट्टी की स्वास्थ्य को बनाए रखें। उसी से हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं।
0: अगर मिट्टी स्वस्थ होगी, स्वस्थ मृदा से ही हमारा जीवन है वो स्वस्थ हो सकता है। इसी संदेश के साथ किसान साथियों आपसे लेते हैं विदा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस किसान साथियों के साथ हमारे स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार,
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने भेंट वार्ता सुनी, विषय था स्वस्थ मृदा से ही संभव है स्वस्थ जीवन, और इस विषय में बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से आनंद सिंह। आइए साथियों, अब समय है आपको किसी क्षेत्र में जो नई नई खोजें हो रही हैं उसके बारे में बताने का। तो किसी क्षेत्र में साथियों इस वक्त सोलर पावर्ड यूनिवर्सल इंसेक्ट ट्रैप की बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों को कीटों से बचाना काफी मुश्किल भरा काम है, लेकिन सोलर पावर यूनिवर्सल इंसेक्ट ट्रैप जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाला यंत्र है, ये दिन और रात दोनों समय में काम करता है। इसकी सहायता से हम बिना किसी रासायनिक दवा का प्रयोग करते हुए कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा रोबोटिक वीडर जो एक आधुनिक मशीन है, इसके माध्यम से हम सीधे लेजर की मदद से खेतों में जो मौजूद खरपतवार जो होती है उसको नष्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अब आपको ले चलते हैं आगरा मंडी की तरफ और जानते हैं कि आगरा मंडी में हमारी फसलों के क्या भाव हैं। तो आगरा मंडी में साबुत मसूर दाल 7,150 रुपये प्रति क्विंटल से 7,300 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में, वही मूंग के दाल के भाव 8,850 रुपये प्रति क्विंटल से 9,050 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में, करेले का भाव 2,400 से 2,700 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में, वहीं शिमला मिर्च का भाव 5,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेके 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में, खरबूजे के भाव रहा 1,500 से 1,800 रुपये प्रति क्विंटल। इसी के साथ साथियों, अब जान लेते हैं कि आगरा मंडल में आज का मौसम कैसा है। तो आगरा मंडल में जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि सुबह तो भी बादल छाए हुए थे, लेकिन 10 बजे के बाद धूप निकल आई, जिससे कि आगरा का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में धूप में तेजी आने की संभावना है, जिससे पारा बढ़ेगा और लू चल सकती है। ऐसे में साथियों अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आइए साथियों, एक बार फिर से आपको संगीत की दुनिया में ले चलते हैं और सुनाते हैं मनोरमा तिवारी के स्वर में ये गीत।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

श्रमिक बहनों और भाइयों, आप सभी को पूनम जैन का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथियों, हम सभी अक्सर एक कहावत बहुत सुनते हैं, खासकर अपने बुजुर्गों से। और कब सुनते हैं? जब हम फिजूल खर्ची करते हैं या बेमतलब और बिना जरूरत चीजों को खरीदते हैं। तो भाई, हमें अक्सर यही सुनने को मिलता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की आदत डालो। क्योंकि साथियों, यही थोड़ी थोड़ी बचत ही हमारे भविष्य में काम आती है। और भाई, ये बात जो है वो 100% सच भी है। और हम भारतीयों की तो खास तौर पर हमारे पुराने लोगों की तो ये एक जरूरी आदत ही थी। अगर भाई किसी को 1000 कमाना है तो वो 100-200 रुपए भविष्य के लिए जरूर ही अलग से रखते थे, क्योंकि यही जो छोटी सी रकम थी वो जुड़ जुड़ कर उनके भविष्य की सुरक्षा बनती थी। और परिवार में किसी भी मुसीबत के वक्त यही बचत हमारी आपकी सबकी ज़रूरतें पूरी करती थी और हमें समाज में अपमानित होने से भी बचाती थी। क्योंकि भाई देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे वो जानते थे कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, मतलब कि जितनी आपकी आमदनी है उसी के हिसाब से खर्च करो, ताकि दिखावा करने या दूसरों की होड़ करने के चक्कर में कभी भी दूसरों के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े। और साथियों, यही सीख वो अपने बच्चों को भी देते थे। और अगर हम कहें कि बचत करना भी एक तरह से हम भारतीयों के DNA में है तो गलत नहीं होगा। भाई तभी तो साथियों, कैसी भी दिक्कत रही हो, चाहे वैश्विक मंदी हो, कोविड जैसी महामारी का दौर हो, या किसी भी तरह की उथल पुथल हो, हम भारतीय काफ़ी हद तक आर्थिक संतुलन बनाए रख पा रहे हैं किसी भी मुश्किल में। और हमारे परिवारों, हमारे घरों की यही जो बचत है, ये हमें हर मुसीबत में सहारा भी देती आई है, हमें सुरक्षित रख पाई है। पर साथियों देखिए भाई, समय बदल रहा है तो और बदलावों के साथ साथ हमारी ये जो बचत की आदत है ना, ये भी कुछ कम होती जा रही है। सबके साथ होड़बाजी करने के चक्कर में, दिखावा करने के चक्कर में, और भैया दूसरे के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इस तरह की सोच की वजह से आज हम जितना कमाते हैं उतना खर्च भी कर देते हैं। और कई बार तो होता ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, फिर चाहे इसके लिए हमें उधारी लेनी पड़े या EMI बनवानी पड़े, लेकिन हम करते ज़रूर हैं। बिल्कुल यही आदत हमारे कई श्रमिक साथियों में भी है। साथियों भैया, सारा दिन जो कमाया शाम तक आते आते सब खत्म, या फिर महीना खत्म होने से पहले ही उनके पास किल्लत शुरू हो जाती है। फिर ऐसे में अगर दूसरे दिन काम ना मिला या फिर महीने की पगार कुछ दिनों के बाद मिली, समय पर ना मिली, तो बस फंस जाते हैं दूसरों से उधारी के चक्कर में। और ये जो सिलसिला है ना, अगर लंबा चलता है तो बस उधारी

का ब्याज चुकाते चुकाते ही मेहनत की सारी कमाई हो जाती है खत्म। भी अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? दुनिया भर के तनाव होंगे, परिवार में रात दिन की खिचखिच होगी और फिर उससे बचने के लिए नशे का सहारा लेंगे, यानी कि एक और नई मुसीबत में फंसेंगे। तो साथियों, भाई क्यों ही इस तरह की मुसीबतों में हमें फंसना है? अगर हम थोड़ा सा नियंत्रण करके अपनी आमदनी का हिसाब किताब रखेंगे तो परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, काम धंधों के लिए, शादी ब्याह के लिए हम थोड़ा थोड़ा बचाकर अच्छी तरह से उनकी पूरी व्यवस्था कर पाएंगे। और भाई देखिए, बात अब चल रही है बच्चों की भविष्य की, तो आज का जो हमारा सवाल है वो भी इसी से जुड़ा है। तो बताइए कि भाई हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए कौन सी एक छोटी बचत योजना इस समय चल रही है? भाई ये सुनते ही देखिए हमारे बहुत से जो साथी हैं वो तो शायद समझ भी गए होंगे, अगर नहीं तो फिर इस योजना के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हर महीने की छोटी छोटी बचत करके हम अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी दे सकते हैं और अचानक आने वाले खर्चों को भी झेल सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी छोटी बचत के लिए डाकघरों में, बैंकों में तमाम तरह की स्कीम चला रखी हैं, जिसमें हम मात्र 100 रुपये महीने की बचत से भी खाता शुरू कर सकते हैं। हाँ, बेशक ये जो 100 रुपये है ना, हमें आज बहुत कम लग रहे हों, बहुत छोटी रकम हो, लेकिन 2-3 साल में ब्याज सहित हमें जो कुछ 1000 रुपये मिलेंगे, भाई हो सकता है तब वो हमारे लिए बहुत कीमती बन जाए। तो साथियों, देर मत कीजिए, भाई देखिए अच्छी आदतों को आज से ही अपनाना बहुत बड़ी अक्लमंदी है, क्योंकि हमारी बचत करने की यही आदत हमारे परिवार की भविष्य की सुरक्षा है। इसीलिए बेशक थोड़ा है तो क्या हुआ, भाई जिंदगी के लिए बस हम सबको थोड़े की ही तो जरूरत है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम मजदूर मंडल में और आपके साथ मैं हूँ पूनम जैन। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे हमारी छोटी छोटी बचत किस तरह से हमारे भविष्य को सुरक्षित करती है और अपने बच्चों, खास तौर पर अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की एक बहुत ही बढ़िया योजना इस समय चल रही है और वो है सुकन्या समृद्धि योजना। और साथियों, यही है हमारे आज के सवाल का जवाब भी। तो चलिए आज ज्ञान सागर में क्यों ना इसी योजना के बारे में जाना जाए। तो इस छोटी बचत योजना यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए अपनी बच्चियों को हम सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। साथियों, इसमें 10 साल से कम उम्र की अपनी बेटी के लिए डाकघर या बैंक में हमें खाता खोलना है और कम से कम 250 रुपए सालाना से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना तक हम इसमें जमा कर सकते हैं और 21 साल की उम्र होते ही हम उसमें जमा रकम को ब्याज सहित निकाल भी सकते हैं और इस पर जो ब्याज दर है

वो भी 8% से अधिक होती है। और अच्छी बात यह है कि जो राशि हमें मिलती है उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता। और इस तरह से बेटी के 21 वर्ष पूरा होने पर हम इस राशि का इस्तेमाल उसकी उच्च शिक्षा पर, उसकी शादी पर खर्च कर सकते हैं और अपनी बेटी के भविष्य के प्रति चिंता मुक्त हो सकते हैं। पर साथियों, इसमें जरूरी यह है कि कम से कम हमें 15 साल तक तो पैसे जमा करने ही करने हैं। इसीलिए अगर बेटी की कम उम्र से ही ये योजना शुरू कर दें तो ज़्यादा फायदा होगा। और अच्छी बात ये भी है कि अगर 18 वर्ष की उम्र में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए हम 50% तक की राशि खाते से निकाल सकते हैं, ताकि जो उसकी पढ़ाई लिखाई है या उच्च शिक्षा जो भी ज़रूरत है वो बीच में ना रुक पाए और जो बची हुई राशि है वो इस योजना की अवधि पूरी होने पर हमें ब्याज सहित मिल जाती है। तो भाई देखा साथियों कि किस तरह से छोटी सी सालाना बचत करके हम अपनी बेटी का भविष्य संवार सकते हैं। और भाई जब बेटी का भविष्य संवरेगा तो वो भी तो बस यही गा उठेगी।

साथियों, अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे बचत की आदतों पर और छोटी बचत योजना पर, क्योंकि बचत करने की हमारी अच्छी आदतें ही हमारा भविष्य सुरक्षित करती हैं। और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों को बचत संदेश दिया है, यानी कि पेट्रोल डीजल की बचत करने का आग्रह किया है। इसका संयम से और ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करने की सभी से अपील भी की है, ताकि आजकल चल रहे वैश्विक संघर्षों और गैस तेल की किल्लत में हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बाधित ना हो, और साथ ही साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी ज़्यादा खर्च ना हो। इसीलिए पेट्रोल के अलावा सोने की गैर ज़रूरी खरीदी से बचने और खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक खेती करने का आग्रह भी किया गया है। क्योंकि साथियों, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, हम विदेशों से भारी मात्रा में खरीदते हैं, जिसकी वजह से देश की काफ़ी रकम इसमें खर्च हो रही है। इसीलिए इस संकट के समय में हमारी हर तरह की बचत करने की जो जिम्मेदारी है वो और भी बढ़ जाती है। और खबरों के अनुसार साथियों, लगभग 40 देशों में तो ईंधन की राशनिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। वाहनों की आवाजाही घटाने, सरकारी और विदेश यात्राएं सीमित करने और वर्क फ्रॉम होम की कड़ी नीतियां काफ़ी देश लागू कर भी चुके हैं। और अब हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील करने का मतलब सिर्फ आर्थिक बचत करना ही नहीं है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना भी है, ताकि देश की प्रगति लगातार जारी रहे और देशवासियों पर वैश्विक संघर्षों का कम से कम प्रभाव पड़े। साथियों, हमारे देश की प्रगति के लिए युवाओं और महिलाओं का सशक्त होना और कुशल होना भी बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए हमारे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में कौशल विकास की पहुंच समाज के हर वर्ग तक सुनिश्चित करने की तैयारी है ना, वो भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के जरिए युवाओं, शहरी गरीब परिवारों, महिला समूहों, अल्पसंख्यक समुदायों और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी उनकी रुचि के अनुसार आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और साथियों, इस मिशन में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें कारागार सुधार सेवाओं यानी कि जेलों में बंद युवाओं को भी कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा, ताकि सभी लोग आत्मनिर्भर बन सकें और आधुनिक उद्योगों की मांग के हिसाब से अपने

नर को निखार सकें, तो भाई इन उपायों से निश्चित तौर पर परिवार, समाज के साथ साथ देश भी तो आगे बढ़ेगा ही ना। और साथियों, आजकल भाई जो जनगणना चल रही है उसके बारे में तो हम अपने कार्यक्रमों के जरिए आपको लगातार बता ही रहे हैं। अब आधुनिक तरीके से होने वाली जनगणना में 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा भी दी जा रही है, यानी कि मोबाइल के जरिए ऑनलाइन

7 मई से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा भी दी जा रही है, यानी कि मोबाइल के जरिए ऑनलाइन जनगणना फॉर्म में पूछे जाने वाले लगभग 33 सवालों के जवाब हम खुद ही भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है ना, सिर्फ घर के मुखिया को ही भरना है, यानी बाकी सदस्यों को नहीं। और मान लीजिए कि भाई स्वगणना में कोई गलती हो जाए तो 22 मई से घर घर सर्वे शुरू होगा, जिसमें कि हमारी सूचनाओं, हमारी गलतियों का सुधार भी होगा, सत्यापन भी किया जाएगा। इसीलिए किसी को भी ना तो घबराने की ज़रूरत है ना डरने की, बस निश्चिंत होकर स्वगणना के इस अभियान में शामिल हो जाइए। और साथियों भाई, अब बारी है इस भीषण गर्मी में अपनाने वाले ज़रूरी सेहत टिप्स की। तो भाई, धनिया और पुदीने की चटनी और आम के पने का रोज़ सेवन करें, यानी कि रोज़ इसे रोज़ के भोजन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये पेट की गर्मी को भी शांत रखता है, पाचन भी दुरुस्त रखता है और लू से भी बचाता है। और हमारी सबकी मिली जुली कोशिशों से ही भाई ये ज़िंदगी चलती है ना। तो सुनिए इसी से जुड़ा ये गीत।

0: किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज एमएसवी हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
2: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
3: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के महासचिव एडापड्डी के पलनीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530

0: cooperation over confrontation despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:10 हुए हैं श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम विविधा का। कार्यक्रम विविधा में आज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती की पूर्व संध्या पर आधारित है हमारी आज की वार्ता, जिसका विषय है सरस्वती पत्रिका और हिंदी जागरण में उसकी भूमिका। वार्ताकार हैं डॉक्टर संध्या द्विवेदी। तो आइए सुनते हैं वार्ता।
2: 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इस काल को हम हिंदी नवजागरण के नाम से जानते हैं। यह वह समय था जब समाज में नई चेतना, राष्ट्रीयता, शिक्षा और सुधार के विचार विकसित हो रहे थे। इस नवजागरण में साहित्य और पत्रकारिता ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी संदर्भ में सरस्वती पत्रिका का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। सन 1900 में इलाहाबाद से प्रकाशित सरस्वती पत्रिका हिंदी की पहली प्रभावशाली साहित्यिक पत्रिकाओं में से एक थी। प्रारंभ में संपादन का भार एक समिति को सौंपा गया था, जिसमें 5 लोग थे। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू जगन्नाथ दास और किशोरीलाल गोस्वामी। प्रवेशांक के मुख पृष्ठ पर 5 चित्र थे। सबसे पहले वीणा वादनी सरस्वती का चित्र था, ऊपर बाईं ओर सूरदास और दाईं ओर तुलसीदास तथा नीचे बाईं ओर राजा शिव प्रसाद सितारेहीन और बाबू हरिश्चंद्र के चित्र थे। एक साल बीतते ही यह स्पष्ट हो गया कि संपादक मंडल से काम नहीं चलेगा, तो जनवरी 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास उसके संपादक हो गए। 1902 ईस्वी के आखिर में बाबू श्याम सुंदर दास ने आगे से संपादन करने में असमर्थता जताई और उन्होंने सरस्वती प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष से नए संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सुझाया। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास आ जाता है। तब इस पत्रिका ने हिंदी साहित्य और समाज को एक नई दिशा दी। द्विवेदी जी के संपादन काल को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के रूप में जाना जाता है। सरस्वती का संपादक बनने के साथ ही उसे ज्ञान के सभी अनुशासनों का खुला मंच तो बनाया ही, यह भी सुनिश्चित किया कि प्रकाशन के पूर्व हर रचना की भाषा व्याकरण की दृष्टि से शास्त्र सम्मत हो। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा प्रचार प्रसार के साथ साथ उसके सही मूल्यांकन के प्रति साहित्यकारों एवं पाठकों को हमेशा सजग करने की कोशिश की। उन्होंने भाषा को न सिर्फ सरस, सुगम एवं सुबोध बनाने का प्रयास किया, बल्कि उसके परिमार्जन के साथ साथ शब्द चयन, पद रचना, वाक्य विन्यास की दृष्टि से भी भाषा को व्याकरण अनुशासित करने का भी पुरजोर प्रयत्न किया। वास्तव में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा परिष्कार के क्षेत्र में जो कार्य किया वह अनूठा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों तरफ दिखाई पड़ती, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का संपादन लगभग 18 वर्षों तक किया। पूरे समय तक उन्होंने सरस्वती की भाषा संस्कार, साहित्य संस्कार और हिंदी भाषी जाति के मानस संस्कार का प्रतीक बनाया। हिंदी की अनिश्चितता को स्थिरता प्रदान करने एवं गद्य पद्य की भाषा में एक रूपता लाने में सरस्वती पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका

0: रही। इसके साथ ही सरस्वती पत्रिका ने सामाजिक सुधारों को भी प्रमुखता से उठाया। जातिपात, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी समस्याओं पर गंभीर विमर्श प्रस्तुत किया गया। इस पत्रिका के माध्यम से समाज को जागरूक करने का एक व्यापक अभियान चलाया गया। यह केवल साहित्यिक पत्रिका नहीं थी बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी थी। भारतीय नारियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार को ध्यान में रखकर सरस्वती में महिला परिषद का गीत छपा। इसमें महिलाओं को आह्वान किया गया कि वे शिक्षित हों, जिसके फलस्वरूप परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ने में मदद मिल सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती में न केवल स्त्री जागरण के लेख ही प्रकाशित हो रहे थे बल्कि उनके प्रयास से सरस्वती के लेखक अन्य देशों में हुए नारी जागरण से भी पाठकों को परिचित करा रहे थे। राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी सरस्वती की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे जनमानस में विकसित हो रही थी। सरस्वती ने अपने लेखों, कविताओं और निबंधों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को प्रबल किया और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ नए रचनाकारों को भाषा का महत्व समझाया व गद्य और पद्य के लिए राह निर्मित की। हरियोध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरकांत त्रिपाठी निराला जैसे रचनाकारों की कृतियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। इन लेखकों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और नवजागरण की चेतना को व्यापक बनाया। हिंदी नवजागरण के अंतर्गत सरस्वती ने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया। इसने साहित्य को जीवन से जोड़ा और उसे उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी नवजागरण का केंद्रीय पुरुष कहा जा सकता है। वे अपने समय और परिवेश की घटनाओं को अत्यंत सजगता से देखते, समझते और परखते हैं। नवजागरण के असंख्य मुद्दों में द्विवेदी जी ने किसानों की दशा और उनकी आर्थिक, सामाजिक समस्याओं और राष्ट्रीयता को चिंतन के केंद्र में रखा। 1914 में सरस्वती पत्रिका देश की बात शीर्षक से उन्होंने एक निबंध लिखा, जिसमें उन्होंने दिखाया कि देश का मतलब है देश में रहने वाले आदमी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में द्विवेदी और सरस्वती की वैशिष्ट्य को रेखांकित करते हुए लिखा है, यदि द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती के पुराने अंक उठाकर किसी भी नई पुराने पत्रिका के अंकों से मिलाया जाए तो ज्ञात होगा कि पुराने होने पर भी इन अंकों में सीखने समझने के लिए अन्य पत्रिकाओं की अपेक्षा कहीं अधिक सामग्री है। सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। वह हिंदी नवजागरण का मुख पत्र थी और हिंदी भाषी जनता की सर्वमान जातीय पत्रिका थी। ऐसे साहित्य की जो रूढ़िवादी रीतियों का नाश करके नवीन सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप रचा जा रहा था। द्विवेदी जी ने सरस्वती के लिए नए लेखक, नए पाठक ही नहीं तैयार किए अपितु प्रगतिशील विचारधारा के बाबूराव, विष्णु पराड़कर और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार भी तैयार किए, जिन्हें देश की सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का संपूर्ण ज्ञान था। कहा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका हिंदी नवजागरण की अग्रदूत थी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आपने सुनी वार्ता सरस्वती पत्रिका और हिंदी जागरण में उसकी भूमिका। वार्ताकार थी डॉक्टर संध्या द्विवेदी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 हो चुके हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की

0: सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
3: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवा कर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
4: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के

0: कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
1: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ड का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल का यूज, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
2: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
3: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को, दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 2,71,093 सीटों के सापेक्ष 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण।

0: लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: ये मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं। वक्त हो चुका है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी बातें। श्रोताओं, मेरे देश की माटी, ये मिट्टी केवल धूल नहीं बल्कि हमारे वीर सैनिकों के बलिदान, किसानों की मेहनत और महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों की पहचान है। जिस धरती ने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उसके प्रति सम्मान प्रकट करना हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, आज का भारत तेजी से बदल रहा है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, खेल और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा देश नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक ओर युवा शक्ति डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रही हो, वहीं दूसरी ओर हमें अपनी संस्कृति, पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखना है।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओं, मेरी माटी मेरा देश केवल एक अभियान नहीं बल्कि देशभक्ति, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आज के समय में जब पूरा विश्व आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तब हमें अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां हमारे लिए चुनौती बनी हुई हैं। और श्रोताओं, आज की सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण संरक्षण। बढ़ता

प्रदूषण, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग हमें चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाला समय, भविष्य संकट में पड़ सकता है। तो आइए हम सभी संकल्प लें, एक पेड़ माँ के नाम, धरती माँ का बढ़े सम्मान। और श्रोताओं, बात जब पर्यावरण संरक्षण की है तो हम स्वच्छता को कैसे भूल सकते हैं। स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। यदि हर व्यक्ति अपने घर और अपने घर के आसपास सफाई रखे तो हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। स्वच्छ भारत का सपना हम सबको मिलकर साकार करना है। देश केवल भूमि नहीं बल्कि हमारी पहचान है।

0: दे जरा। कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद स्वागत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में। श्रोताओं, आज भारत डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और नई तकनीक ने देश को एक नई दिशा दी है। भारत का युवा आज स्टार्टअप, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। युवा शक्ति देश की ताकत है, इसी से भारत की पहचान है।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

अगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

श्रोताओ, आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता हुआ नजर आता है। हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर अपने देश के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का समर्थन करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, तभी तो हम अपने देश को मजबूत बना पाएंगे। वोकल फॉर लोकल केवल नारा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। श्रोताओं, देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों भावनाओं का संगम है। जहां मिट्टी का सम्मान होता है वहां संस्कृति जीवित रहती है। युवा बदलेंगे भारत का भविष्य। स्वच्छता, सुरक्षा और संस्कार, यही नए भारत की पहचान है।

भावना को और भी ज्यादा मजबूत किया है। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, देश का सम्मान करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे और भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। तो श्रोताओं, इन्हीं चंद बातों के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत, जिसमें आप सुनेंगे एक ही शब्द से फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत कुछ कुछ होता है फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम
1: कोई दुआ न। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: श्रोताओ, सरफरोश फिल्म से ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और आमिर खान की आवाजों में। बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। कार्यक्रम में ये अब सुनते हैं बप्पी लाहिरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर का गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में वक्त की आवाज फिल्म से।

0: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
1: बड़ा है।
0: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
1: टरका,
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है।
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा,
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: इंटीरियर
0: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके दैट्स इट।

सुना हम तुम फिल्म से अलका याग्निक और शान की आवाजों में। प्रसून जोशी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दिलीप सेन समीर सेन के संगीत निर्देशन में समीर का गीत, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में कोहराम फिल्म से।

श्रोताओं, कोहराम फिल्म से ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में। बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी दिलीप सेन समीर सेन ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही शब्द गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, एक बार फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का और सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत पहली फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज में, शब्द रचना गुलजार की, संगीत एम एम करीम का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम में ये अब सुनते हैं यादें फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और हेमा सरदेशाई की आवाजों में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में यादें फिल्म से ये गीत आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई की आवाजों में। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में। आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।
1: रात्रि के 8:45 होने को हैं।

0: विदेशी बोलों में अब इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
4: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा,

0: पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।

0: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
0: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर वी डी सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुज खोले जाने पर जोर दिया। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजित नारायणन ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इक्तसादी मजाहिमत को बढ़ाने और मजीद शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफद के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को बढ़ाने और आलमी जुनूब की उमंगों को आवाज़ देने की गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग नई दिल्ली में इन दिनों जारी ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग से अलग मुनक़िद हुई। इससे कल ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निज़ाम में मरकजी हैसियत ही हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत ही को उजागर करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दिनों जारी तनाज़ात इक्तिसादी गैर यकीनी की सूरत हाल और तिजारत, टेक्नोलॉजी और आबोहवा से मुतालिक चैलेंजेस आलमी मंजरनामे को शक्ल सूरत दे रहे हैं और इस नौ की तवक्कुआत बढ़ रही हैं कि ब्रिक्स इस सिलसिले में एक तामीरी और इस्तेहकाम अता करने वाला किरदार अदा करे। इस मीटिंग का मौजू है मजाहिमत, इख्तराआत, तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर, इंसानियत को अव्वलियत देने और ब्रिक्स के अवाम मरकूज होने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन से इस मौजू के लिए तहरीक मिली है। कल दूसरे दिन ब्रिक्स मेंबरान और शरीक ममालिक एक इजलास में हिस्सा लेंगे जिसका मौजू है ब्रिक्स एट द रेट 20, मजाहिमत, इख्तराआत, तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर सतही निज़ाम में इस्लाहात के मौजू पर इजलास होगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात एशिया की तेजी के साथ बढ़ती हुई इक्तसादी शराकत दारियों में से एक को मजीद तौसी देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आला सतही तबादला ख्याल की गरज से कल अबू धाबी पहुंच रहे हैं। इस तबादला ख्याल में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के तहफ्फुज और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इक्तसादी मसरूफियात में तेजी के साथ होती हुई पेशरफ्त के माबैन हो रहा है। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की तिजारत माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर के निशाने से तजावुज कर चुकी है। ये 2022 के जामे इक्तिसादी शराकत दारी के मुआहिदे या CEPA के तहत मुकर्रा हदफ को मुकर्रा वक्त से 5 साल पहले ही हासिल करना है। इस साल के अवाइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने 2032 तक बाहमी तजारत के निशाने को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर मुकर्रर किया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी इक्तिसादी शराकत दारी के लिए मुसलसल कोशा हैं। जुमे के रोज़ होने वाली बातचीत में तवानाई के तहफ्फुज पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। UAE में भारत की तरफ से होने वाली बरामदात 36.63 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई है, जिसके सबब मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में भारत की जानिब से होने वाली बरामदात का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि खुद किफालत और मिलकर काम करने की पहल दोनों ही कलीदी नौयत की खुद मुख्तारी हासिल करने और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मुस्तकबिल में तैयार रहने की गरज से लाजमी हैसियत रखते हैं। जनाब सिंह ने नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे एडिशन के इफ्तिताही इजलास के दौरान एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। वजीर मौसूफ ने खुद किफालत को न सिर्फ एक इक्तसादी हदफ बल्कि एक कलीदी जरूरत भी करार दिया। उन्होंने वजाहत

0: की कि अगर कोई मुल्क अहम तरीन दिफाई सलाहियतों के लिए दूसरों पर ज़्यादा ही मुनहसर हो तो वह बहरान के दौर में जद पजीर रहता है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत अपने कौमी निज़ाम के अंदरून अहम नौयत के दिफाई निज़ाम को वज़ा करे, तैयार करे, बनाए, बरकरार रखे और इन्हें अपग्रेड करता रहे ताकि वो कलीदी नौयत की खुद मुख्तारी हासिल कर सके। महकमा दिफा के वजीर मुमलिकत संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर को एक तारीखी कामयाबी करार दिया जिसने भारत की मुल्क में ही तैयार हथियारों और निज़ामों को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज़ और तालमेल पर मबनी ऑपरेशन अंजाम देने की सलाहियतों का मुजाहरा किया। भारत के चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि राय दहिंदगान की फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी SIR मरहला 3 शुरू किया जाएगा। इसे 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मरहलेवार मुनक़िद किया जाएगा। इस मरहले में जो रियासतें शामिल हैं उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जिन इलाकों का इस मरहले में अहाता किया गया है उनमें दिल्ली का कौमी राजधानी खत्ता, चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली, नीज, दमन और दीव शामिल हैं। SIR मरहले 3 के दौरान 3,94,000 से ज़्यादा तादाद में बूथ लेवल अफसरान 36,73,00,000 वोटरान से घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे। अपनी मालूमात अस खुद फराहम करने के मरहले के दौरान सियासी पार्टियों के जरिए मुकर्रर करदा 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही वोटर फहरिस्तों के SIR में मरहला 3 में पूरे मुल्क का अहाता किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं हैं। इन 3 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मरदमशुमारी के मरहला 2 की तकमील और बालाई इलाकों या बर्फबारी वाले इलाकों में मौसम पर गौर करने के बाद इन 3 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए SIR के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वोटर फहरिस्त की नज़रसानी के अमल में ये एक अहम कदम है। इसका मकसद मुल्क भर में अपडेटेड और दुरुस्त इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करना है। केरलम में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने आज थिरुवनंतपुरम में मुनक़िदा मीटिंग में VD सथीसन को अपने लीडर के तौर पर बाकायदा मुंतखब किया। बताया जाता है कि पार्टी के एक और सीनियर लीडर रमेश चेनीथाला पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। मजीद तफसील थिरुवनंतपुरम के हमारे नामा निगार से।
1: केरलम में सीनियर कांग्रेस लीडर VD सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें रियासत में नई सरकार तश्कील देने का अपना दावा पेश किया। इससे कबल आज नई दिल्ली में कांग्रेस की कौमी क़यादत ने कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया था। 4 मई को इंतखाबी नतीज के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से ज़्यादा तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में जारी तबादले ख्याल के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि हलफबरदारी की तकरीब पीर के रोज़ होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम्पलूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: तमिलनाडु में AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानी सामी ने आज रियासती गवर्नर विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और SP विलुमनी के ज़ेर क़्यादत AIADMK के अरकान कानून साज असम्बली में फूट पड़ने से मुतालिक एक उज़्रदारी पेश की। साबिक वज़ीर आला ने गवर्नर से अपील की कि वो इस मामले को स्पीकर JCD प्रभाकर के साथ उठाएं। मामला ये है कि SP विलुमनी के ज़ेर क़्यादत धड़े में AIADMK के 25 अराकीन कानून साज असम्बली ने TV के सरकार को वोट दिया जो कि TV के सरकार के खिलाफ वोट न देने के OC मैनियन के जरिए जारी की गई व्हिप की खिलाफ वर्जी है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर से जाए वकूअ पर पहुंचकर सर्वे करें। उन्होंने उनसे ये भी कहा है कि वो हर 3 घंटे में मुआवजे की सूरत हाल के बारे में भी अपडेट फराहम करें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ तुंद हवा ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। पटना राजधानी समेत बहुत सी ट्रेनें पटरियों पर दरख्तों के गिरने और OHE वायर को नुकसान पहुंचने के बाइस मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकीं। बारिश के साथ साथ गर्दोगुबार के तूफान ने फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। तेज़ हवाओं ने मकानों की छतों को उड़ा दिया, बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका और बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी में खलल डाला। बहुत बड़ी तादाद में मकानात तबाह हो गए और बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बहुत से लोग जिन्होंने दरख्तों के नीचे पनाह ली थी इस खराब मौसम का शिकार हो गए। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर और वाराणसी शामिल हैं।

0: प्रयागराज में 21 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि भदोही में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9 अफराद, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद ने अपनी जानें गंवाईं। 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान,
1: ये आकाशवाणी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने कशीदगी के बावजूद महाज आराई के बजाय तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर तआवुन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इत्तफाक किया कि आबनाए हुरमुज को हर हाल में खुला ही रहना चाहिए ताकि तवानाई की आज़ादाना आमदोरफ्त में मदद मिल सके। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनाब ट्रंप की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात खुश आइंद रही। मीटिंग के बाद वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने महाजाराई के बजाय तआवुन को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, एक दूसरे का शरीक होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों में इख्तिलाफात से ज्यादा मुश्तरक मफादात पाए जाते हैं और उन्होंने बाहमी ताल्लुकात में एक नए बाब की जरूरत को उजागर किया। अमरीका के सदर 3 दौरे पर चीन गए हुए हैं। चीन के इस दौरे पर उनके हमराह अमेरिका के कुछ बड़े कारोबारी लीडरान भी हैं, जिनमें निविडा के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक शामिल हैं। इधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रियूबियो ने आज चीन को मुतनबह किया है कि ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल एक फाश गलती होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदर ट्रंप और सदर जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी ताइवान के तई अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 से मुतालिक पेपर लीक के मामले में मुबैना खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में 2 मजीद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में मुल्क भर में 14 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। एजेंसी ने बताया कि 2 मुश्तबा अफराद की पहचान अहलिया नगर के धनंजय लोखंडे और पुणे की मनीषा वाघमारे के तौर पर हुई है। CBI ने बताया कि इस सिलसिले में कल 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए तमाम 5 मुलजमीन को दिल्ली में आज एक अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने उन्हें पूछताछ की गरज से 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दे दिया। दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान मुहिम का आगाज करेगी। ये मुहिम वजीर आजम की अपील के मुताबिक शुरू की जा रही है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि मुहिम के तहत लाजमी खिदमात के अलावा दिल्ली सरकार के तमाम दफ्तर हफ्ते में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
2: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे। ऑफिस टाइम को थोड़ा हमने सेग्रीगेट किया है ताकि सड़कों पे वाहन ट्रैफिक कम हो। हमने दिल्ली सरकार का अपना ऑफिशियल टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का किया है और इसके अनुसार ही दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसेज काम करेंगे।
1: एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के अजीत नारायणन ने गुजरात के गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमुई खेल में अपनी काबिले जिक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। एशिया के चंद बेहतरीन वेटलिफ्टरों से मुकाबला आराई करते हुए अजीत ने गैर मामूली मजबूती का मुजाहरा किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का 3रा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर VD सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हमनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुज खोले जाने पर जोर दिया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Countrywide.
4: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्री वाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शीश कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शीश कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
5: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाला है केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरे 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और AI बेस्ड ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी DG मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
4: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
5: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ERG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है। और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगी।
4: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे?
5: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है, हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारे

0: एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICAR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं जहाँ पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो
1: जी
0: उनका प्रोबेबिलिस्टिक जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा और इनके क्रॉप है तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है।
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाया गया है। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया, ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा, ERG डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शेष, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज जो शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर जो है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है, इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी

0: देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इन केस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है। 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है, हमारे जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है। उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसमिनेट करते हैं, और डिसमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलेबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फिर वो उनका गांव के जो लोग हैं, जो किसान, उनको फर्दर डिसमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल सखे फिर उसका गाँव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था, कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे, तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे, लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे।
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है, हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं, और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखने चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट के भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि एक विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

0: आप आगरा से यहाँ पर काव्य की वर्षा करेंगे। बहादुर सिंह जी निर्दोषी सिरसागंज से हैं और डॉक्टर शिव सागर जी आगरा से। मैं स्वयं डॉक्टर मंजुलता शर्मा कवियों को यहाँ प्रस्तुत करने के इस गुरुतर दायित्व का निर्वाह करने जा रही हूँ। यदि कहा जाए तो कुछ ऐसा है कि अपनी खुशबू पे जो फूलों को बदगुमानी है वो नहीं जानते अल्लाह की मेहरबानी है।
1: बहुत
0: तो
1: अच्छा।
0: ऐसे ही श्रेष्ठ कवि डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, वो यहाँ आए और अपनी काव्य रचना से हमारे श्रोताओं को आनंदित करें।
1: सर्वप्रथम ग्रीष्म परीक्षण। भीषण धूप दोपहरी के कारण सूखत पोखर ताल क्यारी, भीषण धूप दोपहरी के कारण सूखत पोखर ताल क्यारी, हर क्षण आग ही आग झरे फल फूल लदी झुल से फुलवारी, ज्यो ज्यो सूर्य चढ़े नभ में त्यों और बड़े जलती चिनगारी, पशु पक्षी सब अति व्याकुल है हैरान दिखे सिगरे नर नारी, पशु पक्षी सब अति व्याकुल है हैरान दिखे सिगरे नर नारी। और एक क्षण ब्रजभाषा का और देखें श्रृंगार का, कि भूलो भई हम सो इतनी अखियान बसाई लियो ठगिनी, भूलो भई हम सो इतनी अखियान बसाई लियो ठगिनी, और देह अदे

अंतर मन अमृत घट पीता, बंधन मुक्त कराने वाले, बंधन मुक्त कराने वाले, नटखट मदन।

0: वाले।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर। डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी को अभी आप सुन रहे थे, बहुत मधुर कंठ से आपने प्रस्तुति दी। अब मैं जिस कवि को इस क्रम में आमंत्रित करने जा रही हूँ, सुशील सरित जी, जिन्होंने संपूर्ण देश में अपने गीतों की माधुर्य से हमारे श्रोताओं के अंतःस्थल को सदैव छुआ है। उनके हर गीत में कुछ ऐसी कशिश है कि जैसे गुमशुदा की खबर सी छपी जिंदगी, गुमशुदा की खबर सी छपी जिंदगी, एक हारे जुए में खपी जिंदगी, नेह की छांव को ढूंढते ढूंढते वैशाख की दोपहर सी तपी जिंदगी, वैशाख की दोपहर सी तपी जिंदगी। तो आए भाई सुशील सरित, और गर्मी की ऋतु में कुछ वर्षा करें अपने गीतों की।
2: धन्यवाद मंजू जी, आपने वैशाख की बात की तो बस उसका एक चित्रण देख लीजिए। कहता हूं कि आसमान से नदी बह रही आग
1: क्या
2: की,
1: बात है,
2: आसमान से
3: नदी बह
2: नदी
3: रही,
2: बह रही आग की, लू की लपटें या फुफकारे नाक की।
3: वाह
2: क्यों रूठे हो मान भी जाओ बादल जी,
1: क्या बात है,
2: क्यों रूठे हो मान भी जाओ बादल जी, इतने नखरे नहीं दिखाओ बादल जी।
1: क्या बात है,
4: क्या बात है।
2: कहता हूं कि प्यास चैन के सारे सपने लूट रही, प्यास चैन के सारे सपने लूट रही, संयम की हर डोर हाथ से छूट
1: छूट
2: रही।
1: रही,
2: प्यास चैन के सारे सपने लूट रही, संयम की हर डोर हाथ से छूट रही, बहुत हुआ अब मत तरसाओ बादल
1: बादल
2: जी,
1: जी। वाह
2: बहुत हुआ अब मत तरसाओ बादल जी, इतने नखरे नहीं दिखाओ बादल
1: बादल जी,
2: जी।
1: क्या बात है,
2: बन देखिएगा कि दिन के सारे पहर दोपहर में बदले,
1: क्या बात है,
2: दिन के
3: क्या बात,
1: सारे
3: क्या
2: सारे
3: बात,
2: पहर दोपहर में बदले, किए उमस ने आतंकित मुखड़े उजले।
1: वाह
2: दिन के सारे पहर दोपहर में बदले, किए उमस ने आतंकित मुखड़े उजले, खुद पर मत यूं दाग लगाओ बादल जी,
1: क्या बात
2: खुद
1: है,
2: पर मत यूं दाग लगाओ बादल जी, इतने नखरे नहीं दिखाओ बादल
1: क्या
2: जी।
1: वाह,
2: बन देखिएगा स्थिति क्या है कि धरती की छाती देखो है फटी फटी, धरती की छाती देखो है फटी फटी, नदी किनारों से फिरती है कटी कटी।
3: बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह,
2: धरती की छाती देखो है फटी फटी, नदी किनारों से फिरती है कटी कटी, कुछ तो अपनी रीत निभाओ बादल जी,
1: क्या बात है, बहुत
2: कुछ तो अपनी रीत निभाओ बादल जी,
3: बढ़िया,
2: इतने नखरे नहीं दिखाओ बादल
1: बहुत
2: जी।
1: बढ़िया, बहुत
2: और आखिरी बंद देखिएगा कि क्या तुमसे कुछ कहा किसी ने जो रूठे,
1: वाह
2: क्या तुमसे कुछ कहा किसी ने जो रूठे, ऐसे तो तुम नहीं कभी भी थे झूठे।
1: क्या बात है,
2: क्या तुमसे कुछ कहा किसी ने जो रूठे, ऐसे तो तुम नहीं कभी भी थे झूठे, अरे कहा सुना मत दिल में लाओ बादल
1: क्या
2: जी,
1: बात है, क्या बात है,
2: कहा सुना मत दिल में लाओ
1: बहुत
2: बादल
1: सुंदर,
2: जी, इतने नखरे नहीं दिखाओ बादल जी,
3: वाह
2: क्यों रूठे हो
1: बहुत,
2: मान भी जाओ बादल जी, इतने
1: बहुत खूब,
2: नखरे नहीं दिखाओ बादल
1: बहुत
2: जी।
1: सुंदर सुशील भाई, बहुत
3: बहुत
1: सुंदर,
2: एक गीत और प्रस्तुत कर रहा
1: स्वागत है,
2: हूं।
1: स्वागत,
2: सांझ सांझ हो रहा है मन सुबह की किरण तलाशते, सांझ सांझ हो रहा है मन सुबह की किरण तलाशते, हो न जाए ऊर्जा
1: क्या बात है,
2: हवन अहम की अगन दुलारते,
1: बहुत सुंदर,
2: हो न जाए ऊर्जा
3: बढ़िया बढ़िया बढ़िया,
2: हवन अहम की अगन दुलारते, जब से उपभोग मुखी गीत छाए चैतन्यता बुझी,
3: वाह
2: जब से उपभोग मुखी गीत छाए चैतन्यता बुझी, अंतर की ओर यात्रा अनचाहे मोड़ पर रुकी,
1: रुकी, क्या बात,
2: अंतर की ओर यात्रा अनचाहे मोड़ पर रुकी, भ्रमित हुई दृष्टि की छुअन, भ्रमित हुई दृष्टि की छुअन, सिंथेटिक वन निहारते,
1: क्या बात है, क्या बात कही है, क्या सुशील भाई, बढ़िया,
3: बहुत
2: भ्रमित
3: बढ़िया,
2: हुई दृष्टि की छुअन, सिंथेटिक वन निहारते, हो न जाए ऊर्जा हवन अहम की अगन दुला

0: आरती
1: बन देखिएगा
0: के फूल गंध बेचने लगे वैश्वीकरण की ओट में।
2: क्या बात है,
0: फूल गंध बेचने लगे वैश्वीकरण की ओट में। अब कहां वो बात है रही किसी भी लोहार चोट में, अब कहां वो बात है रही किसी भी लोहार चोट में। थक रहे हैं अब सभी सपन, थक रहे हैं अब सभी सपन, व्यर्थ आरती उतारते हो न जाए ऊर्जा हवन, अहम की अगन दुलारते। अंतिम बंद देखिएगा कि मौसम

0: करते, सांझ सांझ हो रहा है
1: बहुत अच्छा,
0: मन,
1: वाह वाह वाह,
0: सुबह की किरण तलाशते।
1: बहुत।
0: और इस गीत के बाद आमंत्रण दे रहा हूं उस व्यक्तित्व को जिन्होंने कविता के हर रंग को जिया है। और इस ग्रीष्म ऋतु में कविता और कलम कहां और किस ओर मुड़ती है और कौन से दृश्य प्रस्तुत करती है, ये मैं उन पर छोड़ता हूं, आदरणीय डॉक्टर मंजुलता शर्मा जी।
2: ग्रीष्म ऋतु को लक्ष्य करके तीन दृश्य, तीन क्षण और छोटी छोटी दो रचनाएं हैं, वही प्रस्तुत है। सर्वप्रथम ग्रीष्म ऋतु पर, भोर छोटी रोज होती जा रही है, भोर छोटी रोज होती जा रही है, लग रहा है ग्रीष्म ऋतु अब आ रही है। भोर छोटी रोज होती जा रही है, लग रहा है ग्रीष्म ऋतु अब आ रही है। आम पर यह बौर कैसा छा रहा है, आम पर यह बौर कैसा छा रहा है, और महुआ महकता सा जा रहा है,
1: बढ़िया बढ़िया,
2: और महुआ महकता सा जा रहा है। और अब पलाशों की दहकती देह से यह, अब पलाशों की दहकती देह से यह, नीम का भी पेड़ कुछ बौर आ गया है। अब पलाशों की दहकती देह से यह,
1: बहुत अच्छा,
2: नीम का भी पेड़ कुछ बौर आ गया है। अब कुहकती कोयलें शर्मा रही हैं, लग रहा है ग्रीष्म ऋतु अब आ रही है, लग रहा है ग्रीष्म ऋतु अब आ रही है। एक दृश्य देखिए कि आज अम्मा ने बनाई खीर पूरी, आज अम्मा ने बनाई खीर पूरी, दिन बहुत बीते हुई अब आस पूरी, दिन बहुत बीते हुई अब आस पूरी, खाएंगे सब साथ मिल उत्सव मनाकर, बात थी केवल यही आधी अधूरी, बात थी केवल यही आधी अधूरी, आज गिरवी चूड़ियां घर आ गई हैं, आज गिरवी चूड़ियां घर आ गई हैं, लग रहा है ग्रीष्म ऋतु अब आ रही है। बालियां गेहूं की सोना बन गई हैं, बालियां गेहूं की सोना बन गई हैं, देख कर कलुआ की आंखें भर रही हैं, देख कर कलुआ की आंखें भर रही हैं, लू थपेड़े सह रहा असहाय बनकर, लू थपेड़े सह रहा असहाय बनकर, खेत की धरती उसे क्यों छल रही है, खेत की धरती उसे क्यों छल रही है, फसल साहूकार के घर जा रही है, फसल साहूकार के घर जा रही है, लग रहा है ग्रीष्म ऋतु अब आ रही है। भोर छोटी रोज होती जा रही है, लग रहा है ग्रीष्म ऋतु अब आ रही है। एक छोटा सा बंद है यमुना के लिए, जिसके प्रदूषण किया चर्चा सारे देश में है। आज यमुना के प्रदूषित घाट पथरीले संभल कर पांव रखना, आज यमुना के प्रदूषित घाट पथरीले संभल कर पांव रखना, पांव के नीचे खिसकती रेत पल पल, पांव के नीचे खिसकती रेत पल पल, रो रही अपनी व्यथा है शब्द कल कल, रो रही अपनी व्यथा है शब्द।

0: कलकल, पत्थरों के बीच में दुर्गंध भारी, पत्थरों के बीच में दुर्गंध
1: क्या
0: भारी,
1: बात,
0: मत नहाओ तुम यहां पर देह मलमल,
1: क्या
0: मत
1: बात,
0: नहाओ
1: वाह,
0: तुम यहां पर देह मलमल, क्योंकि गड्ढों से निकलते हैं यहां पर सांप जहरीले, संभल कर पांव
1: वाह
0: रखना,
1: वाह जी,
0: क्योंकि गड्ढों से
1: क्या बात,
0: निकलते हैं
1: बहुत
0: यहां पर सांप जहरीले, संभल कर पांव रखना, आज यमुना के प्रदूषित घाट पथरीले, संभल कर पांव रखना।
1: बहुत
0: और घाट के ये वृक्ष अब टहनी पसारे, घाट के ये वृक्ष अब टहनी पसारे, सूखती सी पत्तियों से कर इशारे, कह रहे हैं श्वास अंतिम ले रहे हम,
1: बहुत
0: कह
1: बढ़िया,
0: रहे हैं श्वास अंतिम ले रहे हम, क्योंकि हम चिपके यहां यमुना किनारे, क्योंकि हम चिपके यहां यमुना किनारे, भूल कर भी याचमन करना नहीं है, भूल कर भी याचमन करना नहीं है, बन गए हम जहर के प्याले, संभल कर
1: वाह,
0: पांव रखना,
1: बहुत
0: बन
1: अच्छा भाई,
0: गए हम जहर के प्याले,
1: संभल कर
0: संभल कर
1: पाओ,
0: पांव रखना, आज यमुना के प्रदूषित घाट पथरीले, संभल कर पांव रखना।
1: बहुत अच्छा
0: अंतिम
1: भाई,
0: बंध है कि और अब भी रोक लो अपने दुखद इस आचरण को, और अब भी रोक लो अपने दुखद इस आचरण को, पुत्र बनकर मात यमुना का करो अभिषेक तुम तो, पुत्र बनकर मात यमुना का करो अभिषेक तुम तो, गोद कलुषित हो नहीं विश्वास फिर से है जगाना, गोद कलुषित हो नहीं विश्वास फिर से है जगाना, कृष्ण आकर आज फिर से विष रहित इसको बनाना,
1: बहुत बढ़िया भाई,
0: कृष्ण
1: वाह,
0: आकर
1: बहुत अच्छा,
0: आज फिर से
1: बहुत
0: विष
1: अच्छा,
0: रहित इसको बनाना, बांसुरी गर ना बजी तो, बांसुरी गर ना बजी तो बिखर जाएंगे तुम्हारे स्वप्न सचमकीले, संभल कर पांव रखना,
1: वाह
0: बांसुरी गर ना
1: वाह,
0: बजी तो बिखर जाएंगे तुम्हारे स्वप्न चमकीले, संभल कर पांव रखना, आज यमुना के प्रदूषित घाट पथरीले, संभल
1: संभल
0: कर
1: कर पाओ,
0: पांव रखना।
1: बहुत
0: अब इस रचना के बाद मैं इस क्रम में जिन कवि को यहाँ आमंत्रित करने जा रही हूँ, वो ऐसे वरिष्ठ कवि हैं जिन्होंने संपूर्ण देश में श्रोताओं के मध्य में अपने गीतों से एक श्रेष्ठ पहचान बनाई है। वो ना केवल नाम के शिव सागर हैं, अपितु श्रोताओं को समेट लेने में पारंगत हैं। उनके लिए चार पंक्तियां यदि कहूँ तो यही कहूंगी कि हर तपन मेघ की भूमिका बन गई, हर तपन मेघ की भूमिका बन गई, हर छुअन नेह की प्रेम का बन गई, आप माने ना माने मगर है सही, आप माने ना माने मगर है सही, हर चुभन गीत की साधिका बन गई,
1: वाह
0: हर
1: वाह,
0: चुभन
1: बहुत
0: गीत की साधिका बन गई। तो चुभन को गीतों में उतारने के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर शिव सागर जी को, वो आए और अपनी रचना यहाँ पर प्रस्तुत करें।
1: एक छंद गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, निवेदन किया है। हे धूल जब बन के बबूल का श्रृंगार करे, गमई गुलावन की गंध गरमाती है, पछुआ गरम होके नरम उंगलियों से बांस के बनों की जब बेणी गूंथ
0: क्या
1: जाती
0: बात,
1: है,
0: सुंदर है, बहुत सुंदर है,
1: सीने पे पसीने की शराब ढली देख
0: वाह,
1: कर कोई जब नलिनी सरोवर
0: क्या बात
1: नहाती
0: है,
1: है,
0: बहुत सुंदर।
1: सीने पे पसीने की शराब ढली देख कर कोई जब

0: याद
1: क्या बात है,
0: आती
1: बहुत
0: है।
1: सुंदर, बहुत
0: एक
1: सुंदर।
0: छंद है, आमन के बागन में बौर लदे फागुन में पल पल कोयलिया शोर जब मचाती है।
1: वाह
0: सीरी सी बयारन में रंग की फुहारन में मौसम की गोपिका गुलाल जब लगाती है। शरद जुन्हाई जब देखती है आईना को, सांझ की दुल्हन जब काजल लगाती है। नेह के बसंतन में फूल भरे पंथन में गंध गहराती तब तुम्हारी
1: याद
0: याद
1: आती
0: आती
1: है।
0: है।
1: वाह
0: एक किसान का चित्र है, जब वो हारा थका घर लौटता है।
1: वाह,
0: तीन टप्परों पे खपरेल छप्परों पे मोर पंख बांधे हुए शाम दबे पांव आती
1: अरे वाह,
0: है।
1: क्या दृश्य है, वाह
0: तीन
1: दबे पांव,
0: टप्परों
1: बहुत
0: पे
1: अच्छा, वाह
0: खपरेल छप्परों पे मोर पंख बांधे हुए शाम दबे पांव आती है। हारे थके हार से हरारे लौटते हैं गेह स्वामिनी।

बिछा के खरारी खाट, श्रम से गठीली बांह का लगा के तकिया थकान लेट जाती है। बिछा के खरारी खाट,

0: आती है।
1: ये छंदगी था। अब एक पन्हारन पर पढ़ रहा हूँ और पन्हारन कैसी है दो छंदों में। यौवन की तपती सी जेठ की दोपहरी में, सावन की शीतल फुहार पन्हारनी, शीश पर तो गागर का भार पन्हारनी है, नख शिखर

हारनी। एक और छंद है, घट छलका के चली, रस ढुलका के चली, ध्यान भंग करके अभंग पन हारनी।

0: की है। रूप जैसे केसर का रंग पनहारनी, काम को बढ़ा के चली होके खुद अकाम चली, काम को बढ़ा के चली होके खुद अकाम चली, घट संग जाती है निसंग पनहारनी।
1: इसी अनुक्रम में अब मैं जिन वरिष्ठ कवि को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ वह आदरणीय डॉक्टर बहादुर सिंह जी निर्दोषी हैं, जो कि अपनी कविता से बहुत ही जाने माने हैं, और उनके लिए यदि कुछ ना कहूँ तो बात बड़ी बेमानी होगी। इसलिए यही कहूंगी कि वो जो पढ़ेंगे वो क्या कहेंगे आप सुनेंगे। मैं सुधा में प्राण को नहला रहा हूँ, मैं सुधा में प्राण को नहला रहा हूँ, मैं कसकती चोट को सहला रहा हूँ, प्रश्न की आहट जरा तुम रोक तो लो, मैं सिसकते गीत को बहला रहा हूँ, मैं सिसकते गीत को बहला रहा हूँ। तो आइए निर्दोषी जी, जरा सुनाइए हमारे श्रोताओं को अपनी अच्छी काव्य सरिता में।
2: अभी आपने सामाजिक बिंब जो मंजूलता शर्मा ने इन बिंब बताशों को फोड़ा है, उनसे ये आभास हो गया कि ये गर्मी के कितने प्रकार हैं। आए इसी गर्मी के भीतरी भाव में उतर करके मैं यह देखने की चेष्टा कर रहा हूँ कि पूरब की शीतलता को पश्चिम की गर्मी शनै शनै उसका कितना क्षरण कर रही है। जोड़े कि ऐसी हवा चली पश्चिम की, सूख गए सारे संबोधन। ऐसी हवा चली पश्चिम की, सूख गए सारे संबोधन, और पुरवैया की नमी पी गए कैसे कैसे मधुर प्रलोभन। पुरवैया की नमी पी गए कैसे कैसे मधुर प्रलोभन, तो आजादी के अरुणोदय में जितनी खिली प्रगति की कलियां, आजादी के अरुणोदय में जितनी खिली प्रगति की कलियां, नहीं पहुंच पाई शुभता से उन्हें चूमने भ्रमरावलियां, नहीं पहुंच पाई शुभता से उन्हें चूमने भ्रमरावलियां, इतनी चढ़ी स्वार्थ की मदिरा मन तन से हो गए पराए, इतनी चढ़ी स्वार्थ की मदिरा मन तन से हो गए पराए, फलतः गंधिल गीत छोड़कर गाली सीख गई सब गलियां, फलतः गंधिल गीत छोड़कर गाली सीख गई सब गलियां, तो आशीषों में जहर भर गया, आशीषों में जहर भर गया, संयम का परिवार मर गया, आशीषों में जहर भर गया, संयम का परिवार मर गया, स्वामी होकर हम सेवक का करने लगे स्वयं अनुमोदन, ऐसी हवा चली पश्चिम की, सूख गए सारे संबोधन। आगे देखें कि भाषा की परिभाषा भूले भूल

0: गए अपने स्वरूप को, भाषा की परिभाषा भूले, भूल गए अपने स्वरूप को, और प्यास लिए हम लगे खोजने मरुथल में ही अंधकूप को, प्यास लिए हम लगे खोजने मरुथल में ही अंधकूप को, तो जिधर सूर डूबा करता है उधर समझ पूरब की लाली, जिधर सूर डूबा करता है उधर समझ पूरब की लाली, भूल गए हम पूरब बाली अपनी शाश्वत स्वर्ण धूप को। तो ध्यान रहे कि जब संस्कृत विकृत होती है, जब संस्कृत विकृत होती है, सीप नहीं जनती मोती है, जब संस्कृत विकृत होती है, सीप नहीं जनती मोती है, खुले आम है कायरता है, गाय हमारी उनका दोहन, ऐसी हवा चली पश्चिम की, सूख गए सारे संबोधन, तो नई जवानी पर अब क्या है, गर्म हवाओं की गर्मी है, नई जवानी पर अब क्या है, गर्म हवाओं की गर्मी है, और शिष्टता के आंगन में राज्य कर रही बेशर्मी है, और शिष्टता के आंगन में राज्य कर रही बेशर्मी है। अपरिग्रह का अर्थ परिग्रह का अब तो काला सोना है, अपरिग्रह का अर्थ परिग्रह का अब तो काला सोना है, और इसके अर्जन में ही अब तो हर तट पर ही हठ धर्मी है, इसके अर्जन में ही अब तो हर तट पर ही हठ धर्मी है। तो खेल खेल ये घृणित खिलौने, खेल खेल ये घृणित खिलौने, खेल खेल ये घृणित खिलौने, हम सब स्वयं हो गए बोने, तो पाप कर रहे हैं पुण्यों में, पाप कर रहे हैं पुण्यों में, कैसा खुलेआम संशोधन, ऐसी हवा चली पश्चिम की, सूख गाए सारे संबोधन। और अंतिम चरण देखें कि गर्म हवा से बचे नहीं तो बन जाएगी यही आंधी, गर्म हवा से बचे नहीं तो बन जाएगी यही आंधी, और भूल जाओगे निश्चित एक दिन किसने किसके राखी बांधी, गर्म हवा से बचे नहीं तो बन जाएगी यही आंधी, और भूल जाओगे निश्चित एक दिन किसने किसके राखी बांधी, और रो रो के इतिहास तुम्हारा अपने पन्ने धो बैठेगा, नहीं दिखाई देंगे तुमको शास्त्री और महात्मा गांधी, नहीं दिखाई देंगे तुमको शास्त्री और महात्मा गांधी, तो संस्कृत को संस्कृत रहने दो फिर से पुरवैया बहने दो, संस्कृत को संस्कृत रहने दो फिर से पुरवैया बहने दो, स्वाधीनता में जीना ही है जीवन का सफल प्रयोजन, और ऐसी हवा चली पश्चिम की, सूख गए सारे संबोधन, पुरवैया की नमी पी गए कैसे कैसे मधुर प्रलोभन।
1: बहुत सुंदर। तो सहृदय श्रोताओं, अभी आप जिन कवियों को सुन रहे थे उनमें थे अलीगंज एटा से पधारे हुए डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी, आगरा से डॉक्टर सुशील सरेत, और सिरसागंज से डॉक्टर बहादुर सिंह जी निर्दोषी, आगरा से डॉक्टर शिव सागर जी, और मैं स्वयं आगरा से डॉक्टर मंजुलता शर्मा। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे काव्य गोष्ठी ग्रीष्म गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे राधेश्याम मिश्र, सुशील सक्सेना सरित, शिव कुमार शर्मा, बहादुर सिंह निर्दोषी। संचालन मंजुलता शर्मा का था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, ये सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विदुषी परवीन सुल्ताना से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग गोरख कल्याण और राग रागेश्री। कार्यक्रम में ये सबसे पहले सुनते हैं राग गोरख कल्याण में ख्याल गायन। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, मुखड़े के बोल हैं चार दिनन का पासर। द्रुत ख्याल की बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, मुखड़े के बोल हैं सांवरे मेरे कहां। तो आइए सुनते हैं विदुषी परवीन सुल्ताना से राग गोरख कल्याण में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी परवीन सुल्ताना से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग गोरख कल्याण। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं विदुषी परवीन सुल्ताना से राग रागेश्री में ख्याल गायन। द्रुत ख्याल की बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, तो आइए सुनते हैं विदुषी परवीन सुल्ताना से राग रागेश्री में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी परवीन सुल्ताना से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग रागेश्री। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR

0: अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit.